0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: مرج البحرين يلتقيان
0: उसी ने दो दरिया रवां किए जो आपस में मिलते हैं.
1: بينهما برزخ لا يبغيان
0: मगर दोनों में एक आड़ है कि उससे तजावुज नहीं कर सकते.

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? इनमें नेक सीरत खूबसूरत औरतें हैं।

0: रात पोर्ट ऑफ स्पेन में खेले गए दो टेस्ट मैचों की सीरीज के दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को 8 विकेटों से हराकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। स्कोर ये रहा, वेस्टइंडीज 344 और 117 रन, पाकिस्तान 387 और 2 विकेटों के नुकसान पर 77 रन। अब्दुल्ला शफी को मैच जबकि बाबर आजम को सीरीज का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। और अब मौसम। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम ज्यादातर गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, बालाई और वस्ती पंजाब में तेज़ हवाएं चलने और कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश भी मतवक्के है। आसुर रिकॉर्ड किया गया बाज़ बड़े शहरों का दर्जा हरारत, इस्लामाबाद 23 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 31, कराची 29, पिशावर 27, कोयटा 24, गिलगित 20, मरी 16 और मुजफ्फराबाद 22 डिग्री सेंटीग्रेड। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के लिए महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक श्रीनगर, जम्मू, लेह, पुलवामा, अनंतनाग, शुपियां और बारामूला में मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद रहने, तेज़ हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आज सुबह रिकॉर्ड किया गया दर्जा हरारत श्रीनगर और अनंतनाग में 20 डिग्री सेंटीग्रेड, जम्मू 27, लेह 9, पुलवामा और शुपियां 19 जबकि बारामूला में 21 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। मज़ीद खबरों और तजियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट radio.gov.pk पर।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिशावर, कोयटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.101.
2: फॉर लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस आफ्टर एवरी वन आवर ट्यून इन टू FM 101, द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान।

0: आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान कौम की आवाज।
1: Back to back hit music on your favorite musical channel, Radio FM 101. Stay tuned.

0: 101 FM。
1: करो रिकॉर्ड हो रहा है ना।

0: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
1: A-level with zero tuition fee, 100% future, Bhagat International College, Twin Cities top A-level institute. Build on discipline, driven by academic excellence. Learn from the best faculty of Islamabad and Rawalpindi. Get merit stipends and financial support. Bhagat International College does not just teach, it builds leaders. Admissions open at Bhagat International College, Gulberg Greens, Islamabad. Call now
2: 0330-511-0099. 101 FM.
3: Live, all the way live from the federal capital city of Pakistan. This is FM 101.
4: This is FM 101.
5: Peshe khidmat hai program हम सबका पाकिस्तान। इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि एक मिसाली मुआशरा हम कैसे कायम कर सकते हैं, जिसमें अखुवत हो, रवादारी हो, यगानगत, हुब्बुल वतनी, इन सब का बोलबाला हो, ताकि मुआशरा तरक्की कर सके। आइए प्रोग्राम सुनते हैं।
6: अस्सलाम वालेकुम, सदफ रानी खुश आमदीद कहते हैं। बात करते हैं हम इस प्रोग्राम में कि हम अपने माशरे को मिसाली माशरा कैसे बना सकते हैं, इसमें अमन के फरोग को, भाईचारे को, रवादारी को और एक दूसरे की जो राय है उसका एहतराम हमने कैसे करना है, और इन सब चीज़ों के हवाले से जो बुनियादी अहमियत है वो होती है तरबियत की। तरबियत कहाँ से होती है, या ये हमारे हकीकी वालदैन करते हैं या फिर हमारे रूहानी वालदैन करते हैं। जी हाँ जनाब, असाज़ा और बुज़ुर्गों की सिर्फ हमारे माशरे में नहीं लेकिन किसी भी माशरे में जो है वो बड़ी अहमियत होती है कि उनकी ज़िंदगी के तजर्बों से हम बहुत कुछ सीखते हैं। सो आज असाज़ा और जो हमारे बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो एक इंसान की किरदार साजी में या शख्सियत साजी में क्या किरदार अदा कर सकते हैं, इसी मौजू पर हम बात करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में प्रोफेसर हसन अवान साहब, जो फातिमा जिना यूनिवर्सिटी में ना सिर्फ ये कि दरस व तदरीस से वाबस्ता हैं बल्कि इसके साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट भी रहे हैं और उसमें अपनी डॉक्टरेट भी मुकम्मल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुश आमदीद कहते हैं।
7: बहुत बहुत शुक्रिया मैडम।
6: प्रोफेसर हसन, बात करेंगे, जैसे मैंने कहा कि किसी भी इंसान की जो तरबियत है, उसकी फाउंडेशन है, उसमें बुज़ुर्गों का बड़ा किरदार होता है और उसके बाद असाज़ा एक रोल मॉडल की हैसियत रखते हैं किसी भी इंसान के किरदार साजी में। तो आप इनकी जो इम्पोर्टेंस है, जो रोल है खासतौर पर तलबा में, वो क्या होता है, उसके बारे में बताइए।
7: जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अहम सवाल है ये। और इस सवाल को जवाब देने से पहले मैं ये समझता हूँ कि किसी भी माशरे में तालीम का एक बुनियादी रोल तो होता है, लेकिन तालीम सिर्फ डिग्रीज या आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं उनसे नहीं आप उसको नाप सकते, बल्कि जैसे आपने कहा कि एक्चुअल जो आपकी तालीम का इम्तिहान है वो आपकी तरबियत के थ्रू प्रूव होता है। जैसे वो कहावत भी है कि जितना मर्जी आप पढ़ लिख जाएं, अगर आपके अंदर एम्पथी या हमदर्दी नहीं है, समझने की सलाहियत नहीं है दूसरे के पर्सपेक्टिव को, तो उस तालीम का कोई फ़ायदा नहीं है। इस लिहाज से मैं समझता हूँ हमारे माशरे में जो बुज़ुर्ग हैं और जो उस्ताद्ज़ा हैं उनका एक बुनियादी रोल है, एक फाउंडेशनल जिसने आपने कहा एक रोल प्ले करते हैं। उसमें मैं समझता हूँ कि वक्त के साथ साथ जिस तरह हर चीज़ में तब्दीली आती है, माशरों में तब्दीली आती है, सकाफत में तब्दीली आती है, सोशल सिस्टम्स में चेंजेस आते हैं, इस तरह मैं समझता हूँ कि आज के बुज़ुर्ग और आज के उस्ताद्ज़ा को भी ये समझना पड़ेगा कि उनको इस नई जो आपकी जनरेशन है, यूथ है, आपके जो बच्चे जो इस वक्त पढ़ रहे हैं स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, उनका माइंडसेट समझने के लिए भी उनको अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा। जो टूल्स आपने इस्तेमाल किए 1950s में, 60s में, 70s में, 80s में, वो टूल्स आज उस तरह से काम नहीं कर रहे जिस तरह से वो पहले करते थे। इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि यस, इट इज़, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि उस्ताद्ज़ा बुज़ुर्ग का बहुत अहम रोल है, लेकिन उनको अपनी बातों के अंदर प्रमोट करना चाहिए, फ़रोग देना चाहिए क्रिटिकल थिंकिंग को, तनकीदी सोच को, जिसके नतीजे में मैं समझता हूँ कि एक तो आपको अपनी यूथ के साथ इंगेज करने का मौका भी मिलेगा, उनकी बात को समझने का, उनकी मसाइल को समझने का, और आपको फिर उनको एक सही मानों में एक नसीहत जो उनके साथ वो आप लिंक कर सकें, उनके साथ आप असेस कर सकें, फिर आप मशवरा भी उस तरह से दे सकते हैं।
6: आप ये बताएं कि ये हमारे बुजुर्ग जो तनकीदी सोच के बारे में या तामीरी सोच भी उसको कह लें, क्रिएटिव थिंकिंग बेसिकली, क्रिटिकल थिंकिंग को जरा मजीद अगर वो करें, तो तामीरी सोच को किस तरह से जो है वो परवान चढ़ाया जा सकता है।
7: आपका सवाल से मुझे एक वाकया याद है, मैं नाम लिए बगैर एक मिसाल देता हूँ आपको। अमेरिका में एक पाकिस्तानी फैमिली रहते हैं, आपको इससे पता कि बहुत से हमारे पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी वहाँ पे रहते हैं, वो यहीं से उठ के वहाँ पे गए और उनका ऑब्वियसली उनकी जो रूट्स हैं, वैल्यूज़ हैं, बिलीव्स हैं, चाहे वो दीनी लिहाज से हों, वो उनके सोर्स पाकिस्तान की सोसाइटी से जुड़ी होती है। तो जब वो वहाँ पे जाते हैं और वहाँ के माशरे में जब देखते हैं कि बहुत से वहाँ पे सोशल इश्यूज़ हैं, डिफरेंसेस हैं, कल्चर शॉक्स की हम बात करते हैं, बहुत एक डिफरेंट सकाफत है अमेरिका में वेस्ट की जो हम जनरली बात करते हैं, तो वहाँ पे जब बच्चे बड़े होते हैं और वालदैन की जब अपनी शनाख्त पाकिस्तानियत होती है, तो जब उनके बच्चे कहते हैं कि जी, जैसे एक मिसाल दे रहा हूँ कि उसकी एक बेटी थी वालदैन की, तो वो अब उस अमरीकी कल्चर के अंदर बहुत ज़्यादा बस गई और वो सवाल करती थी कि हमारे दीन में या हमारे कल्चर में हर चीज़ ऐसे लगता है कि पाबंदी है, कि खास तौर पे औरतों के लिए हर चीज़ के ऊपर हमें कोई फ्रीडम नहीं है बेसिकली। तो उस सवालों के जवाब उसके वालदैन का जो रिएक्शन था वो सख्त होता था कि भाई आपने ये सवाल किया ही क्यों, आप वो हाउ आर यू क्वेश्चनिंग योर रिलीजन फॉर एग्जाम्पल, लाइक ये एक हमारी जो एक ट्रेडिशनल सोच रही है। तो वो वालदैन बड़े परेशान हुए, उन्होंने कहा कि हम किस तरह से अपने बच्चों को, खास हुए बेटी को, इस चीज़ के ऊपर कन्विंस करें या उनको हम समझाएं कि भाई वाई हमारा जो कल्चर है या हमारे वैल्यूज आपके लिए फायदेमंद है। तो उनको समझ नहीं आई, इसकी वजह से उनकी अपने बच्चों के साथ दूरियां पैदा हो गई, जिसको हम जनरेशन गैप भी कहते हैं। तो एक ना उधर उनके नेबरहुड में एक आलिम साहब आए, उन्होंने उनको दावत दी अपने घर में, उनको बताया कि मेरा ये मसला है, बच्चों के साथ मेरे इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं, उनके सवालात होते हैं मुश्किल, उनके पास मेरे जवाबात नहीं होते। तो उन्होंने कहा अपनी बेटी को बुलाइए, उन्होंने बेटी को बुलाया, बेटी का जो होलिया था वो बिल्कुल वेस्टर्नाइज था,
6: ठीक है।
7: और उन्होंने जब कहा कि बेटा आपके क्या सवालात हैं, उन्होंने कहा कि जी इस्लाम में ऐसे लगता है कि तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारे ऊपर एक किस्म का हमें इम्प्रिजन कर रहे हैं और हमें पाबंद कर रहे हैं और हमें कोई फ्रीडम नहीं है इन शॉर्ट। तो उसने पूरी बात सुनने के बाद आराम से तसली से विदाउट एनी रिएक्शन पूरी बात सुनी, उन्होंने कहा कि मुझे ये बताइए कि क्या आपको इस चीज़ पे यकीन है कि ये किताब कुरान पाक ये 1400 साल पहले एक फरिश्ते के ज़रिए एक डिवाइन अथॉरिटी ने यानी खुदा ने एक फरिश्ते के ज़रिए एक इंसान को नाजिल की? उसका जवाब था आई डाउट दैट।
6: अच्छा,
7: इससे क्या मालूम होता है कि टाइम के साथ साथ साइंस ने हमारे माशरे में इतना ज़्यादा मटेरियलिज्म को इनग्रेन कर दिया है और हमारी जो यूथ है वो अब हर चीज को गलत और सही की जो तमीज है वो साइंस का जोड़ती है
6: लॉजिक
7: के साथ। एग्जैक्टली, इसका मतलब क्या है कि अगर हमने अपने बच्चों को नसीहत देनी भी है तो वो भी लॉजिक के जरिए देनी पड़ेगी। तो उसने कहा कि अगर आपको बाकी सवालों के जवाब अपनी जगह के मिसाल के तौर पे बड़ा एक क्रिटिकल सवाल होता है, तमीज है वो साइंस का जोड़ती है
6: लॉजिक
7: के साथ। एग्जैक्टली, इसका मतलब क्या है कि अगर हमने अपने बच्चों को नसीहत देनी भी है तो वो भी लॉजिक के जरिए देनी पड़ेगी। तो उसने कहा कि अगर

0: इंसान ने नहीं लिखी हुई, ये एक नबी को नाजिल हुई एक फरिश्ते के जरिए। जब तक आपका इस पे ईमान नहीं होगा तो बाकी बातें तो फजूल की होगी ना, उस पे बहस करने का फ़ायदा क्या। तो मैं समझता हूँ कि हमें भी अपने माशरे में जब हम बात करते हैं अपने बच्चों के साथ, अपने यूथ के साथ, तो हमें उनके पहले सवाल सुनने चाहिए। लिसनिंग वाली एबिलिटी जो है वो बर्दाश्त सुनना पड़ेगा उनको पहले, ताकि हमें समझ आए कि उनका प्रॉब्लम क्या है या उनका
1: बिल्कुल
0: सोर्स ऑफ कन्फ्यूजन क्या है, तब उनको हम उस तरह से गाइड कर सकते हैं। और उसके लिए हमें अपने लिए अपने अंदर थोड़ी बर्दाश्त पैदा करनी पड़ेगी, ताकि उनको हम सही तरह से मशवरा और लॉजिकली दे सकें।
1: बर्दाश्त भी और उसके साथ साथ इल्म का होना भी ज़रूरी
0: ज़रूरी
1: है।
0: है।
1: बिल्कुल, यहीं से मेरे जहन में सवाल आ रहा है कि किरदार साजी के लिए तालीम के साथ साथ जो है किरदार साजी को अहम करार दिया गया है।
0: देखिए, किरदार साजी इसलिए अहम है, अगर हमारे माशरे में जो मसाइल है, ख़ास तौर पर अगर आप देखें कि हमारे पिछले कुछ सालों में जिस तरह से सोशल मीडिया का दौर शुरू हो गया
1: जी
0: है और उस पर बड़ा आसान है किसी को बुरा भला कहना, आप देखते हैं कि बहुत सी चीज़ें उसमें
1: फेक
0: गलत न्यूज़
1: न्यूज
0: भी, फेक न्यूज़ भी होती है।
1: भी।
0: अब ये तभी आपका यूथ इस चीज़ को समझ पाएगा कि हकायक क्या है और झूठ क्या है और फेक न्यूज़ क्या है, जब तक उनके अंदर एक स्ट्रांग करैक्टर नहीं होगा।
1: ठीक,
0: जब आपके स्ट्रांग रूट्स नहीं होंगे, स्ट्रांग करैक्टर नहीं होगा, तो आप उसके बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। मैं समझता हूँ कि कौमें जो हैं वो इमारतों से ज़्यादा किरदार से बनती हैं। अगर किसी कौम में किरदार ना हो, तो अगर उसने तरक्की कर भी ली, तो वो तरक्की जो है बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है, वो हॉलो होती है बेसिकली,
1: ठीक है,
0: और उनका फिर जवाल भी जल्दी आ जाता है।
1: ठीक,
0: तो अगर आपने वाकई में सही मालूम तरक्की करनी है किसी भी कौम ने, किसी भी माशरे ने, तो उसको पहले अपनी कौम के अंदर किरदार साजी को अहमियत देनी पड़ेगी। मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर जो आपकी हुकूमत है, रियासत है, उसका भी एक बहुत रोल है, क्योंकि उसको भी अपनी प्रायोरिटाइजेशन उस हिसाब से करनी पड़ेगी। आपको फिर ऐसे लोगों को लाना पड़ेगा तालीम इदारों के अंदर जिनका पर्पस डुअल हो, जो तालीम भी दें और किरदार भी मजबूत करें
1: ठीक,
0: आपकी यूथ का,
1: मतलब
0: आप
1: तरबियत भी
0: तरबियत
1: साथ
0: भी
1: साथ हो।
0: वो जरूरी
1: ठीक,
0: होनी चाहिए। आजकल मैं समझता हूँ अनफॉर्चुनेटली हमारे जो एक माइंडसेट है माशरे का, वो एक बहुत मेटेरियलिस्टिक हो गया है, जिसकी वजह से तमाम का तमाम आपकी जो तवानाई है, आपके जो जोर होता है, वो इट इज़ अबाउट गेटिंग अ सक्सेसफुल कैरियर। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इमारतें तो आप खड़ी कर लेंगे, लेकिन वो जो आपका माशरे का तहम्मल है, आपके माशरे की जो सुकून है, उसमें अंदर को एग्जिस्टेंस का जो एलिमेंट है, वो आप तालीम से सिर्फ अचीव नहीं कर पाते।
1: ठीक,
0: उसके लिए तरबियत का होना बहुत लाजिम है। और जैसे मैंने कहा कि आजकल इस ज़माने में जिस तरह के इंफॉर्मेशन के सोर्सेज अवेलेबल हैं आपके माशरे को, आपके यूथ को, आपकी जो यंग जनरेशन है, अगर आप उनसे बात नहीं करेंगे तो वो कहीं ना कहीं से अपने आइडियाज़ डेवलप कर लेंगे।
1: बिल्कुल
0: मैं ये
1: ठीक।
0: बहुत समझता हूँ कि हम वर्ड यूज़ करते हैं दावा का, ये दावा सिर्फ ये नहीं कि कोई किसी आलिम ने आकर कुछ बताना है आपको। आप देखें कि आपके टीवी पे, आपके फ़ोन के मोबाइल्स पे, आपके माशरे में, आपके स्कूल्स में, कॉलेजेस में, आप जिससे बात कर रहे हैं, आपके जो बच्चे हैं वो उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कुछ बातों को कुछ कम कर रहे हैं, ये वेरिएशन तो होगी, लेकिन द पॉइंट इज़ कि एब्जॉर्प्शन हो रही है।
1: ठीक है,
0: इसलिए लाजिम है कि बच्चों के साथ आपको एक कांस्टेंट डायलॉग रखना पड़ेगा। मेरी नज़र में तो ये भी बड़ा लाजिम है कि ये सिलसिला सिर्फ यूनिवर्सिटी लेवल से नहीं या कॉलेज लेवल से नहीं, बल्कि आपको शुरू से ही स्कूल की तरबियत से ही, स्टार्टिंग से ये सिलसिला शुरू करना पड़ेगा,
1: ठीक है,
0: क्योंकि आपके बच्चों का एक्सपोजर भी उस हिसाब से हो रहा है। आजकल हम बात करते हैं कि आजकल के बच्चे जो हैं वो बहुत तेज हो गए हैं,
1: फ्लो
0: उनको
1: ऑफ इन्फॉर्मेशन
0: फुल
1: उनके पास
0: इन्फॉर्मेशन,
1: बहुत
0: इज
1: है ना।
0: दैट्स
1: हाँ
0: द
1: जी,
0: पॉइंट,
1: दैट इज द
0: ये
1: पॉइंट।
0: फ्लो इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो रहा है,
2: दिस इज
0: ना
2: एफ एम
0: चाहते हुए
2: लेबोन
0: भी। इसका
2: अराउंड
0: मतलब
2: द
0: ये नहीं कि
2: वर्ल्ड।
0: उनके हाथ में फोन है।
3: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

This is FM 101.

0: सुबह के 9 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। समरा यूसुफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। पाकिस्तान और ईरान ने सरहदी गुजरगाहों को 24 घंटे खुला रखकर सरहदी तिजारत के फरोग पर इत्तेफाक किया है। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने ओमान में अल-क़ुद्स से मुतालिक वज़ारत इजलास से खिताब करते हुए फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की जायज़ जद्दोजहद के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत की फिर से तौसीक़ की है। मुशीर खजाना ने कहा है कि गुज़श्ता माह पाकिस्तान की बरामदात में जून की निस्बत 31% इजाफा हुआ है। ईरान और ओमान आबने हुर्मस के जरिए जहाजरानी की गुजरगाह पर मुत्तफिक हो गए हैं। और अब खबरों की तफसील।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.101।
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
3: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सुनते रहिए FM 101 101।

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल एफएम 101। देखे तो जो इधर

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: जे तू लब दा वफा फिर दा नी लबनी रुक जाए सजा दा सजनी।

0: This is FM 101.
1: सुनते रहिए FM 101 101.

13 अगस्त 1947, ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947, ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक।

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहांगीर और आप सबको पता है कि जश्न आजादी हम भरपूर जोश और जज्बे के साथ मनाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो हमारी आन है, पाकिस्तान है तो हमारी शान है, पाकिस्तान जिंदा।

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मीर हामिद अली। पूरी कौम को 14 अगस्त की आज़ादी का दिन मुबारक हो। आपका हम भजन अपने तमाम कौम को अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे और उसके दिन दोगुनी या चौगुनी तरक्की का फरमाए। आमीन। तो मानो साया।

मैं संगीता आप सबकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। 14 अगस्त की आज़ादी आप सबको मुबारक हो। ये वो दिन है जहां हम लोग आज़ाद हुए थे और आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। ये कदर तो उन लोगों को मालूम होती है जो बाहर बैठे हुए हैं।

0: वेलकम वेलकम बैक FM 101 की लाइव ट्रांसमिशन. हम एक है के सेगमेंट हम जिंदा कौम है के साथ मैं आपको वेलकम बैक कहती हूँ. हमारे साथ स्टूडियो में बहुत से इंटरनीज मौजूद हैं. वासिफा मुकद्दस, जीनत जो इस वक्त हमसे बात कर रही हैं, मुलातिफा सुल्तान है और ईमान खालिद हैं.
1: अच्छा,
0: इस वक्त हमारे साथ
1: मैं खान बाबा लाहौर डिफेंस से बोल रहा हूँ.
2: जी सर, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से?
3: जी सर, कैसे हैं आप? इस वक्त आप हमारी लाइव ट्रांसमिशन सुन रहे हैं.
1: जी जी, यस यस, आपका और ये ईमान खालिद आप सबके अल्फाज में सुन रहा हूँ. आपकी सुन रहा हूँ. वेरी गुड, शाबाश, आई अप्रिशिएट.
3: बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया. किस किस्म के माहौल को आप देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द?
1: आप मेरी बात सुने दो चार. मेरी उम्र है 77 ईयर्स.
3: जी जी.
1: जिस तरीके से हमारे बड़ों ने कुर्बानियां दी हैं, शहादतें दी हैं, हम उन्होंने बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान को बनाया है.
3: जी सर, बिल्कुल ठीक.
1: अब ये हमारा फर्ज है और आप लोगों का फर्ज है कि हम मिलकर रहें और पाकिस्तान को कायम और दायम और तरक्की की रास्ते पर लेकर जाएं.
3: जी सर, बिल्कुल.
1: ये जश्न आजादी जो है ना, ये अल्लाह ताला हम सबको नसीब अता फरमाए. और मेरी एक दरख्वास्त दूसरी है आप सब लोगों से, पुराने पाक शरीफ का खत्म करे, जिन लोगों ने शहादत दी है उनके सारे सवाब के लिए दुआ करे.
3: जी सर, आपने बहुत अच्छी बात की कि हम लोगों की कुर्बानी को
1: मारो. एक नारा मेरे साथ सब मिलके मारो, पाकिस्तान
3: जिंदाबाद. जी, तो मौजूद थे खान बाबा लाहौर से और उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि उन लोगों की कुर्बानियों को हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि आज़ादी के वक्त जिन्होंने अपनी जानें गंवाईं, अपने ख़ानदान कुर्बान किए और इस खूबसूरत सरजमीन को हमारे लिए छोड़ा. अब ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम किस तरह से इस मुल्क को लेकर चलते हैं, इसमें खुशहाली लेकर आते हैं और अपने नौजवानों को एक साथ मिलाकर किस तरह से आगे बढ़ते हैं. जी, तो आज़ादी के हवाले से अगर बात की जाए तो बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि जो अब अपनी मेजॉरिटी की तरफ जा रहे हैं तो वो कहते हैं कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है, इतना हम लोगों को टाइम नहीं मिलता कि हम तैयारियां कर सकें, हम जो है वो सब जोड़ा पहन कर बैठें. तो अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं कर सकते तो कम अज़ कम सुबह उठने के बाद अल्लाह ताला का शुक्राना ज़रूर अदा करें कि जिसने हमें एक आज़ाद मुल्क अता किया जहाँ हम अपनी मर्ज़ी से चल फिर सकते हैं, रह सकते हैं, हमें किसी किस्म की कोई घुटन महसूस नहीं होती. अगर हम उन इलाकों को देखते हैं कि जहाँ के लोग आज़ाद नहीं हैं, जिनको इस चीज़ की आज़ादी नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी से कोई काम कर सकते हैं, अपने मुल्क में आज़ादाना घूम सकते हैं, तो हमें उस वक्त एहसास होता है कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है. तो इस हवाले से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और अपने मुल्क को मुल्क के कायम दायम रहने की दुआ करें और हमेशा हमेशा इस मुल्क की बेहतरी में अपना हिस्सा ज़रूर डालें. और अब मैं जीनत से गुजारिश करती हूँ कि वो आज़ादी के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करें.
0: जी, आज़ादी के हवाले से ख्यालात का इजहार जीनत इशफाक कर रही है, जिसमें मैं बताना चाहूँगी कि मेरा पैगाम ये है कि खुश रहें, खुशियाँ बिखेरें और हुस्न सलूक से पेश आएँ. ओके, अब मैं आज़ादी का बात कहना चाहूँगी कि कल भी यहाँ पे बात हो रही थी और आज भी कि हम 14 अगस्त को झंडियाँ लगा लेते हैं और 15 अगस्त को हमें पता नहीं होता कि वो झंडियाँ कहाँ गिर रही हैं, किसके पैरों के नीचे आ रही हैं. तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वो झंडे की तौहीन हम ना करें. और जो छोटे बच्चे हैं वो वाकई में इतने छोटे होते हैं कि उन्हें इस चीज़ का पता नहीं होता, उस झंडे की अहमियत का पता नहीं होता. तो उनको डांटे नहीं, उन्हें प्यार से समझाएं और उन्हें इस बात का आप खुद करेंगे, आप खुद उठाएंगे सारी चीज़ें नीचे गिरी हुई, सफाई करेंगे, सफाई का ख्याल रखेंगे,

0: back to your listeners. FM 101 live stream. आपकी समातों से जो आवाज टकरा रही है वेलकम बैक टू योर लिसनर्स FM 101 लाहौर के लाइव स्टूडियो से आपकी समातों से जो आवाज टकरा रही है इसे कहते हैं खदीजा मुराद। जश्न आज़ादी की तकरीबात के सिलसिले में आज एक भरपूर ट्रांसमिशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और अपने इंटरनीस से आपकी गुफ्तगु भी हम लोग करवा रहे हैं। जिसे सुन के और जिसे जानकर बहुत ज्यादा खुशी खुद भी और हमारी कोशिश भी यही है कि आप भी इससे महसूस हो। एक इंटरनीस का ग्रुप आपसे गुफ्तगू कर चुका और मेरे सामने मेरे साथ चार और चमकते हुए चेहरों के साथ यहाँ पर अपनी अपनी नशिस्तों पर बराजमान हैं और आपसे गुफ्तगू करने के लिए बेताब हैं। सबसे पहले इनका तारुफ करवाती चलूँ आपके साथ। मेरे बिल्कुल साथ इस वक्त मौजूद हैं अली अहमद और इनके साथ हैं जनाब ईमान साहरा और साथ लाइबा इस ग्रुप के हमारे चौथे मेंबर हैं नायब अली। तो आप सबको स्टूडियोज में मैं खुशामदीद कहती हूँ।
1: शुक्रिया।
0: कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबका जोशो खरोश देखकर बहुत खुशी। जवान नस्ल अपने मुल्क से अपने वतन से मोहब्बत का इजहार करने के लिए इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद है और बेताबी से अपनी बारी का इंतजार कर रही है और आपसे ढेरों ढेर बातें करना चाह रही है। तो जनाब, खसूसी नशरियात हम एक हैं में एक और खसूसी सिलसिले दिल से देखा पाकिस्तान। तो ये हमारे आज के जो चार बच्चे हैं इस टॉपिक के साथ आपके पास आए हैं। तो अली, मुझे ये बताइए, दिल से देखा पाकिस्तान, दिल से देखा पाकिस्तान, तो क्या देखा पाकिस्तान में?
2: जी वालेकुम अस्सलाम। दिल से देखा पाकिस्तान, मैंने दिल से देखा पाकिस्तान 2026 चल रहा है, लेकिन ये आज़ादी हमारी आज की नहीं है, ये हमारी आज़ादी सदियों पुरानी है। ये आज़ादी हमें ये सिखाती है कि ये आज़ादी जो है ये इतनी आसानी से नहीं मिली। इसके पीछे बाकायदा कुर्बानी, बाकायदा जो है पूरा, मैं कहता हूँ कि पूरी एक स्ट्रेटजी है, क्योंकि आज़ादी के पीछे बहुत सी कहानियाँ छुपी हैं। तो जी ना, आपके साथ मौजूद और छह बड़ी खुशगवार है, उतनी ही मजे की जितने मजे का हमारा ये सेगमेंट।

0: मैं खुश भी होऊंगा और साथ साथ गमगीन भी होऊंगा, क्योंकि उसकी वजह ये होगी कि एक तो कायदे आजम मेरे सामने होंगे जिनकी अंतक मेहनत के बावजूद पाकिस्तान बाहर से वजूद में आया, तो एक खुशी तो होगी साथ साथ, लेकिन गम का आंसर इस वजह से
1: गमगीन इस वजह से हूँ कि जिस तरह हमारे पे एक हक अदा हमें हक अदा करना चाहिए उस वजह से हम हक अदा कर सके। हम ये बात तो करते हैं कि हम हमें तो साथ साथ में इजहार भी करूंगा, एक तो बहुत खुश हूंगा, मैं चाहूंगा इस पाकिस्तान में नौजवान बच्चे और बूढ़े क्या काम करें, उसकी बेहतरी के लिए क्या क्या क्या क्या चीजें की जा सकती हैं, तो वो आंसर और उनके साथ तस्वीरें एक खुशी का मौका होगा, तो इसी तरह सिलसिला जारी रहेगा उनके साथ।
2: बिल्कुल ऐसा ही है।

0: वालेकुम अस्सलाम अली जी, बिल्कुल मैं जेंजी की पूरी जो है जनरेशन की तरफ से बोलना चाहूंगी कि जेंजी ज्यादा कुछ नहीं, बाकी अपने फ्रॉड को लेके कि हम, क्योंकि आज से पहले शायद इतनी या फिर इतनी सोशल मीडिया हमें जेंजी काफी ज्यादा अवेयर चाहिए या वो क्या
1: बिल्कुल
0: जी
1: बहुत मैं कहता हूँ आपने कमाल कर दिया है बात करके दिल से

0: आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है?
1: जी
0: अच्छा, मैं बिस्मा बात कर रही हूँ लाहौर से, आप ठीक है?
1: जी
0: मैं ठीक हूँ, आप सब कैसी हैं? आप सब को सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। आपका नाम क्या है?
1: मेरा
0: जी अली भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और भी जो यहाँ पे हमारी सिस्टर्स हैं, हमारी इंटर्नी हैं, उनसे बात करके भी उनको सुन के बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और बहुत बहुत अच्छी बातें कर रही हैं।
1: जी थैंक यू।
0: राम जी
1: अच्छा

0: हाँ जी, मुझे प्लांट्स वगैरह लगाने का बहुत शौक है। और दूसरा ये कि देखिए, जितना हमारे बस में हम तो करते हैं, मीन्स के अब जैसे मुझे आर्मी में जाने का भी बहुत शौक था, अब मैं नहीं जा सकी। अब जरूरी तो नहीं है कि वहां पे जाके हम बॉर्डर पे जंग करें। अब जो हमारे हम इधर अपने पाकिस्तान में रह के, अपने एरिया में रह के जो है दूसरों की, वो हमें करनी चाहिए,
1: बिल्कुल।
0: हमारे

0: हाँ जी, मतलब जब उनकी हम प्रैक्टिस देखते हैं, जैसे फोर्टी है कैसे लड़ रही है, मुझे इतना जोश आता है कि काश मैं भी होती, मुझे भी ऐसे लड़ना। मैंने कहा देखो अगर वो बन गई तो अब मैं वही सोचती हूँ काश काश, तो अब जो मैं कर सकती हूँ मैं
1: जी
0: वो तो करूँगी।
1: पाकिस्तान के लिए आपने ये काम किया है, सबसे अच्छा पौधा आपको कौन सा
0: ये
1: लगता
0: मैं गिफ्ट भी देती हूँ,
1: है? अच्छा
0: मतलब मेरी फ्रेंड्स है ना वो कह रही थी एलोवेरा का जो प्लांट है ना वो टिकता नहीं है,
1: अच्छा
0: मतलब वो खराब हो जाता है, मुरझा जाता है। ये कोई मतलब मुश्किल नहीं है, ये तो इसका एक छोटा सा पीस जो ना एलोवेरा का, तो आप इसको लगा दो तो वो उससे ही इतना फैल जाता है, इतनी जल्दी ये भरता है ना। उसको तरीका भी सिखाया मैंने
1: जी
0: तो
1: अच्छा
0: प्लांट।

0: जो हमारे खिलाफ जहाँ पे आया हुआ पानी, उन लोगों की हम जितनी हेल्प कर सकते हैं हम करते हैं, और जो लोग कर सकते हैं उनको भी चाहिए कि ऐसे लोगों की हेल्प करें जो बेचारे अभी मजबूर हैं और जिनको जरूरत है, ठीक है, अपने बाकी बहन भाइयों की, जो के वो उनकी हेल्प करें।
1: जी बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात की है बिस्मा आपने, मैं बहुत अच्छी आपने आपके साथ डिस्कशन हुआ।
0: मुझे
1: तो बड़ी खुश हो रही हूँ करके, और बातों का सिलसिला जारी रहेगा। बिस्मा बहुत शुक्रिया आपका, आपकी कॉल का। इससे पहले अली आप गुफ्तगू को आगे बढ़ाए, मैं थोड़ा सहाय जाए करना चाहूंगा। हमसे तो आपने बहुत सी बातें की, लेकिन मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा अली, आप किस तरह से आजादी को देखते हैं, किस तरह जश्न मनाते हैं और क्या तैयारियां रहती हैं आपकी? मैं कहता हूं आपने नयान, ये जो है ना सवाल पूछने वाले से अगर सवाल कर लिया जाए ना तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन मैं बात करना यही चाहूंगा कि पाकिस्तान के लिए हमने क्या किया, पाकिस्तान को हमने क्या दिया। पाकिस्तान के पास वो चीजें हैं जो कि दुनिया के किसी मुल्क के पास नहीं है। सबसे बड़ी चीज मैं आपको मौसम की एग्जांपल देता हूँ यार, गर्मी सर्दी पतझड़, ये मौसम, और किस मौसम में, किस मुल्क को है ये, किस मुल्क में है ये मौसम, कहीं नहीं। मैं कहता हूँ आप एक तरफ पाकिस्तान का नॉर्दर्न देखें, आप बलोचिस्तान देखें, आप नारान कागान चले जाएं, आप जो है चाइना बॉर्डर वाली साइड पे चले जाएं, और दूसरी तरफ आप सिंगापुर देख लें, एक चीज नेचुरल है, एक चीज बकायदा बनाई गई है। तो जो नेचुरल होती है वो नेचुरल ब्यूटी की तो फिर मैं कहता हूँ बात ही कुछ और होती है, लेकिन अगर अगर तब वो चीज हमारी ज्यादा बेहतर होती है।
2: जी तो ये तो आपने खूबसूरती के बारे में पूछ रहा था। जश्न आजादी की तैयारी पर बात।
3: जश्न आजादी यार देखो, जश्न आजादी मैं बचपन में तो झंडियां लगाता था, ठीक हो गया
2: झंडे,
3: हाँ अब तो नहीं है लगाता क्योंकि बेहुरमती होती है झंडियों की बाद में अगले दिन, क्योंकि वो आजादी से पहले पहले की जो होती है ना मोटिवेशन, कि वो पूरी रात जाके वो आटे की वो क्या कैप्स कहते थे उसको ले वो बनानी, फिर उसके बाद वो इतनी रस्सियां लगा के उसके ऊपर झंडियां वगैरह लगानी, लेकिन वो जो मोटिवेशन थी ना वो सिर्फ सुबह उठ के जो बारिश होती थी और हमारे फिर सारी झंडियां गीली हो जाती थी वो देख के ना वो मोटिवेशन जो थी ना वो मुरझा जाती थी। तो उससे फिर मैंने ये देखा कि 15 अगस्त 16 अगस्त 20 अगस्त तक वो झंडियाँ पाँव में रुल रही होती थी। तो अगर हमारा इतना प्यारा जो मुल्क का झंडा है वो हमारे पाँव में क्यों रुले, तो उस वजह से अब मैं सिर्फ झंडा लगाता।
2: आपका जवाब आ गया। अब गुफ्तगू के सिलसिले को आप खुद से आगे
3: गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं, और जैसे नाजरीन मैंने आप सामीन मैंने आपको ये बताया था कि हमारे बीच में हमारे दरमियान एक सिंगर भी बैठी हैं, तो लाइबा अपना अपनी आवाज़ का जादू चलाएं और एक खूबसूरत सा मिली नगमा हमारे सामीन के लिए पेश किया जाए।
4: थैंक यू सो मच इतनी तारीफ के लिए। मैं सुनाना चाहूँगी यूं दी हमें आज़ादी।

0: बहुत बहुत बहुत खूबसूरत आवाज़ है आपकी लाइबा, मैं कहता हूँ कि मज़ा आ गया, रूह ताज़ा हो गई है मेरी आपकी ये बात सुन के। आपकी ये आपका ये कलाम जो आपने पढ़ा है, मैं कहता हूँ बहुत बहुत अच्छा लगा है। उम्मीद करता हूँ सामईन आपको भी ये बहुत ही मज़े का लगा होगा। तो ईमान से बात करते हैं। ईमान मुझे ये बताया कि अभी तो आप खैर बड़े जोश व खरोश से अपनी ये आज़ादी जो है मना रही हैं, रेडियो पाकिस्तान FM 101 के स्टूडियोज में आप मौजूद हैं, तो मैं तो देख रहा हूँ कि आप आज अपनी आज़ादी की जो जश्न है वो किस तरीके से मना रही हैं। लेकिन अगर हम पीछे चले जाएं तो बचपन में आपका क्या था जोन, आप किस तरीके से बचपन में ये आज़ादी मनाती थी?
1: जी बिल्कुल, अपने और बचपन में आज़ादी मनाने में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बचपन में वो जो जोश होता था कि झंडियाँ लेनी है, और सबसे ज़्यादा झंडियाँ हमने ही जमा करनी है पूरे मोहल्ले में, वो लेनी, उन्हें घर में सजाना, इवन के लोग तो सहन में मतलब दीवारों पे धागे लगा के हम तो कमरों में भी सजा देते थे कि भाई हर जगह हमें आज़ादी नज़र आए, हमारा एक जश्न आ गया और हमने इसे पुरजोश होके मनाना है। उसके अलावा स्पेशली लड़कियाँ वाइट ग्रीन सूट विद दुपट्टा विद चूड़ियाँ, उफ इसका जो क्रेज़ होता था, अम्मी के साथ जाके तरले कर करके मम्मा ले दे मम्मा ले दे, मज़े की चीज़ थी जो मैं अब तो बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ।
0: वाह क्या बात है नयान, मुझे लगता है कि आपने भी मेरी तरह ना लेफ्ट आउट फील किया इस कॉन्वर्सेशन को, क्योंकि हमें तो चूड़ियाँ वगैरह का तो कोई इस तरह का नहीं रहा। हमारा ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है यार, एक शर्ट पहन ली वाइट या ग्रीन पैंट पहन ली हमने, तो नयान यहाँ झंडे लगा दिए। नयान आप अपनी हमारे सामईन को क्या पैगाम देना चाहेंगे दिल से देखा पाकिस्तान?
2: पैगाम मैं ये देना चाहूँगा, हर किसी की आज़ादी मनाने का जश्न या खुशी मनाने का तरीका मुख्तलिफ होता है, आप मोहब्बतों का इजहार डिफरेंट तरीके से करते हैं, लेकिन एक बात को याद रखें कि पाकिस्तान अब जब से आज़ाद हुआ है हमें इसको मिलकर बनाना है, एक साथ रह के इतिहाद अमन का दर्श देना है, और इतिहाद के साथ ही हमने पाकिस्तान को बुलंदियों की सतह पर लेके जाना है, क्योंकि हम आजकल नस्ल रंग की बुनियाद पर तफरीक करना शुरू हो चुके हैं। इस सब को बुलाकर हमें हम सब एक हैं का एक का पैगाम देना है, और इस पे अलामा इकबाल का शेर भी था कि वताने रंगो बो को तोड़ कर मिल्लत में गुम हो जा, न तो रानी रहे बाकी न ईरानी न अफगानी। तो मेरा पैगाम यह है सब मिलकर काम करें, इतिहाद से मोहब्बतें करें, मोहब्बतें बांटें, और पाकिस्तान के लिए काम करें। जिस तरह पाकिस्तान की तरक्की है उसी में हमारी तरक्की है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की है आपने। ईमान आप बताएं अब आपने ख्याल का इजहार।
1: जी बिल्कुल, जैसे कि हर किसी के लिए एक लफ्ज़ अलग-अलग मायने रखता है, इसी तरह मेरे लिए पाकिस्तान एक उम्मीद का नाम रखता है। हर जवान, हर नया बच्चा, हर नौजवान के दिल में पाकिस्तान अब एक उम्मीद है, जो रोज़ हर जवान उठता है वो सोचता है कि अब इस मुल्क में हमने इस मुल्क में अपने लिए क्या ढूंढना है, और जो भी आज इस मुल्क में तरक्की कर रहा है उसकी बेसिक वजह हमारे मुल्क में देने वाली अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं चाहूँगी कि हमारे और जवानों को भी इतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, क्योंकि ये हमारे नौजवानों का हमारा मुल्क एक उम्मीद है।
0: बिल्कुल, सामईन दिल से देखा पाकिस्तान का सेगमेंट इख्तिताम पज़ीर होता है। मैं अली अहमद और मेरे सारे को होस्ट आपसे इजाज़त चाहते हैं, खुदा निगहदार।
3: जी FM 101 के लाइव स्टूडियो से खुसूसी नशरियात, हम एक हैं, मैं आप सुन रहे थे अली अहमद, ईमान ज़ाहरा, लाइबा

आसिफ और नायान अली अब्बासी को, जिन्होंने आपसे नहायत खूबसूरत गुफ्तगु की दिल से देखा पाकिस्तान। तो सामईन कराम, दिल से देखा पाकिस्तान और हम मना रहे हैं आज़ादी का जश्न, और इस दुआ के साथ मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले कुल जिसे अंदेशाए सवाल ना हो, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ खिजा को भी गुजरने की मजाल ना हो। तो एक खसूसी नशियात हम आपके साथ लेकर चल रहे थे, और इस वक्त स्टूडियो की घड़ी हमें ये बावर करा रही है कि न्यूज़ ब्रेक का टाइम हुआ चाहता है, और न्यूज़ ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे हमारे सीनियर आरजे, एक नहायत खूबसूरत आवाज़ के मालिक आरजे ज़िया अंजुम। तो जनाब, बढ़ते हैं न्यूज़ ब्रेक की तरफ और वापस आएंगे ज़िया।

0: ओके जी, वेलकम बैक एक दफा फिर से, खुशामदीद आप सब सब सुनने वालों को और सब देखने वालों को। देखने वाले वो हैं जो यहाँ पे स्टूडियोज में मौजूद हैं, बेतहाशा आंखें हैं जो मेरी तरफ इस वक्त मरकूज हैं, मुझे गौर गौर से देख रहे हैं। आपको बताता चलूं कि मेरा नाम जिया अंजुम है और आप सुन रहे हैं स्पेशल ट्रांसमिशन, अगस्त के हवाले से स्पेशल ट्रांसमिशन जिसका नाम है हम एक हैं। जी हाँ, हम एक हैं और इस मुल्क में, इस मुल्क की खिदमत के लिए, इसको आगे लेके जाने के लिए, इसकी खिदमत करने के लिए, इसके अज़्मो इस्तक़लाल के लिए हम एक हैं और हम एक रहेंगे और हम एक बनकर भी दिखाएंगे। मेरे साथ इस वक्त चार मजीद इंटर्नीज मौजूद हैं जो कि आपके सामने गुफ्तगू करेंगे, आपसे बात करेंगे। इससे पहले भी आपने कुछ हमारे दोस्तों की, हमारे होस्ट्स की गुफ्तगू सुनी, तो मैं अब माइक डायरेक्ट इनको हैंड ओवर करता हूं और देखते हैं कि ये आज हमारे से क्या बात करते हैं, क्या गुफ्तगू करते हैं। जश्न आज़ादी के हवाले से बातचीत चल रही है। जश्न आज़ादी के हवाले से बातचीत चल रही है, हम एक हैं हमारी ट्रांसमिशन का नाम है। और माइक हैंड ओवर टू यू गाइस, ये लीजिए।
1: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं एफएम 101 लाहौर और मैं हूं आपके साथ अक्सा मुस्तफा। उम्मीद करती हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत आसान तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कल पूरा दिन 14 अगस्त के हवाले से बात की, तो आज भी हमारे साथ हमारी तीन इंटर्नीज मौजूद हैं। मैं उनका तारुफ करवाती चलूँ, मरीहा, मनाहिल और मीरब। तो सबसे पहले मैं सवाल करूँगी मरीहा से, मरीहा आप क्या समझती हैं पाकिस्तान की तरक्की में नौजवानों का किरदार क्या है?
2: वालेकुम अस्सलाम। तो पाकिस्तान को आगे बढ़ाने, मजबूत बनाने और पाकिस्तान की तरक्की में नौजवानों का किरदार क्या है, वो किस तरह से हिस्सा ले सकते हैं? तो बेसिकली जो पाकिस्तान की आज़ादी का बड़ा हिस्सा है वो नौजवान है। तो नौजवान और नौजवानों के अंदर एक नई सोच और कुछ कर दिखाने का जज्बा होता है। तो नौजवान जो हैं वो अगर मेहनत करें, ईमानदारी से काम करें, अच्छी तालीम हासिल करें और एक पॉजिटिव थिंकिंग लेके आए, मतलब हर चीज़ में मुस्बत सोच रखें, तो इससे पाकिस्तान काफ़ी तरक्की हासिल कर सकता है। और जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान की आबादी का बड़ा हिस्सा नौजवान है, तो पाकिस्तान की मुस्तकबिल जो है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल वो नौजवानों पर डिपेंड करता है। ज़्यादातर नौजवानों को चाहिए कि वो हर काम ईमानदारी से करें और एक मतलब अपनी सलाहियतों का सही इस्तेमाल करें। अगर वो अपनी सलाहियतों का सही इस्तेमाल करेंगे तो इससे ये होगा कि पाकिस्तान जो है वो हर शोबे में तरक्की हासिल कर सकता है। और जैसे कि हम नौजवानों की बात कर रहे हैं और उनकी हिम्मत और हौसले की बात कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड मैं आपको एक शेर सुनाना चाहूँगी। उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती हो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद। तो यहाँ तक मैं आपको बताऊँगी, आगे आप गाइड करें कि कौन आगे गुफ्तगू का आगाज़ करेगा।
1: जी, तो बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। तो आगे हम सवाल करेंगे मिनाहिल से। मिनाहिल आप हमें ये बताएंगी कि 14 अगस्त के हवाले से अपनी कोई याद बताएं कि आप 14 अगस्त की तैयारियां कैसे करती थी।
3: अस्सलामुअलैकुम। जी बिल्कुल, बचपन में 14 अगस्त हमारे लिए सिर्फ एक दिन नहीं होता था बल्कि एक जश्न होता था। हम कई दिन पहले ही तैयारियां शुरू कर देते थे और छोटे छोटे झंडियां ख़रीदना और कपड़े ख़रीदना और अपने घरों को सजाना झंडियों से, اور اس کے علاوہ مجھے یاد ہے آج بھی کہ رات کو جیسے ہی 12 بجتے تھے تو ہم سب ایک جوش، ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوتی تھی. صبح جلدی اٹھ کر پھر ملی نغمے سننا، دوستوں کے ساتھ باہر جانا، یہ سب لمحات آج بھی دل کو خوش کر دیتے ہیں. اور وہ سادگی، وہ خلوص اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں بڑی خوشی محسوس کرنا، یہی بچپن کی سب سے خوبصورت یاد ہے. اور شاید یہی احساس ہمیں سکھاتا ہے کہ خوشی بڑی چیزوں میں نہیں بلکہ چھوٹے خوبصورت لمحوں میں بھی محسوس کی جا سکتی ہے.
1: جی بالکل، ایسے ہی آپ نے بہت اچھے سے بتایا. خوشی اگر ڈھونڈنا چاہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی ہم ڈھونڈ سکتے ہیں. تو اب ہم بات کریں گے میرب سے. میرب، آپ بتاؤ، ایک فوجی اپنے وطن کے لیے اپنی جان قربان کرنے کا حوصلہ کہاں سے حاصل کرتا ہے؟
4: وعلیکم السلام. تو سب سے پہلے میرے خیال میں ایک فوجی اپنے وطن کے لیے جان قربان کرنے کا حوصلہ محبت وطن، فرض کا احساس اور اپنے حاصل کرتا ہے. اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے اس کا گھر، اس کا خاندان اور پورا ملک ہے. شاید اسی لیے ایک فوجی کے لیے وطن کی حفاظت صرف ایک ڈیوٹی نہیں ہوتی بلکہ ایک ذمہ داری اور فخر ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہی ایک سوال کہ اگر آپ کو پاکستان دینا ہو تو وہ کیا ہوگا؟ ایک وعدہ، ایک اچھا عمل یا اپنے اندر کوئی تبدیلی؟ سوچیے گا ضرور. ایک سوال کہ اگر آپ کو پاکستان دینا ہو تو وہ کیا ہوگا؟ ایک وعدہ، ایک اچھا عمل.

0: उठो नौजवानों, डिग्री के साथ हुनर सीखो, मोबाइल के साथ कदम उठाओ और वादा करो कि हम पाकिस्तान को दुनिया की बेहतरीन कौम बनाएंगे। और आखिर में अलामा इकबाल ने क्या खूब कहा है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। पाकिस्तान हमेशा हमेशा जिंदाबाद।
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये हमारे इंटर्निस्ट थे। सामीन, हम आपको बताते चलें कि हमारे यहाँ पे पिछले तकरीबन कोई डेढ़ माह से इंटर्नशिप प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हम हमारे स्टूडेंट्स को रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्किल्स और ब्रॉडकास्टिंग स्किल्स सिखा रहे हैं। आज ये पहली बार इंडिपेंडेंटली माइक पे आके, रेडियो पे आके गुफ्तगू कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। इनमें से कुछ होस्ट बन रहे हैं, कुछ जो है को होस्ट बन रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है इनको देख के। पहली बार है तो थोड़ी सी झिझक भी है, थोड़ा सा डर भी है, खौफ भी है, लेकिन अच्छा है। आप मुझे बताएं, मीरा बाप बताएं कि कैसा लग रहा है आपको?
2: बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है।
1: डर तो नहीं लग रहा?
2: लग रहा।
1: क्या डर लग रहा है कि क्या लोग सुन रहे होंगे, क्या कर लेंगे, किस चीज का डर है, क्या डर है?
2: वैसे तो नहीं, लोगों का तो क्या है, लोगों ने तो बातें बनानी होती हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसे माइक पे आके कंफ्यूजन एक होती है माइंड में, कि डर लग रहा होता है कि गलत कोई वर्ड ना मुंह से निकल जाए इस तरह,
1: है ना। वैसे काफी निकले थे। मैं नोट कर रहा था काफी निकले थे, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है।
2: मैं चाहूंगी कि अब कोई मिली नगमा प्ले करें। आप
1: मिली नगमा प्ले करें या हम किसी कॉलर से बात करें? किसी कॉलर से बात करते हैं आज, क्या ख्याल है? आप हमें कॉल कर सकते हैं, सुनने वाले जो हमें सुन रहे हैं, 04211100101 पे हमें कॉल कीजिएगा और देखते हैं साथ ही कॉल आगे, देखें इंतजार में बैठे होते हैं तो हम कॉल लेते हैं, देखते हैं हमारे साथ कॉलर कौन है।
3: अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है आप और कहाँ से बात कर रहे हैं?
3: इंटर्नशिप वाले हो, मुबारक बहुत बहुत रेडियो पाकिस्तान ने बहुत अच्छा एक काम किया माशाल्लाह।
4: जी जी बिल्कुल।
3: स्लीम टेलर इसके बाद जी, आवाज आ रही है हमारी?
4: जी जी, आपकी आवाज आ रही है। आप मुझे बताएं कि 14 अगस्त में या आजादी में नौजवानों का क्या किरदार है, वो किस तरह से इसमें हिस्सा ले सकते हैं पाकिस्तान की तरक्की में?
3: देखेंगे, जो पहले वक्त तो गुजरा है उसमें तो बहुत कुछ खराबियां थी, जो आपको गवर्नमेंट ने भी काम किया है, और हम खुद आवाम जो है वो इस चीज को तस्लीम कर रहे हैं कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। वह बाजे बाज रहे थे, पांपा हो रही थी, तो सिलेंसर बाइक के खोल के लोगों को नींद खराब करनी
4: बहुत गलत बात है। तो आप जी, अब आपको इतने लोग सुन रहे हैं, नौजवान सुन रहे हैं, तो आप उनको क्या एक नसीहत करना चाहेंगे कि अब जो आजादी आ रही है उसमें आप क्या ऐसी चीजें ना करें जो लोगों को डिस्टर्ब करती हैं, लोगों को तंग करती हैं?
3: देखिए जी, सबसे पहली बात तो आप वजू करें, नमाज पढ़ें, शुक्राने के दो नफल अदा करें।
4: बिल्कुल,
3: हम इतने अच्छे मुल्क में रह रहे हैं माशाल्लाह, तो जहाँ पे हर मौसम भी है, हर तरह की सहूलतें हैं,
4: बिल्कुल हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आप मुझे ये बताएं कि पहले में और अब में क्या कोई फर्क आया है, क्या नौजवान नस्ल सुधरी है पहले से अब?
3: तो आप अटेंशन में आए हैं, यहाँ पे माइक के आगे बात की है, आप बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुन के माशाल्लाह, आपका टैलेंट और कामयाब होगा इंशाल्लाह।
4: इंशाल्लाह
3: जैसे ज़िया अंजुम बोलते हैं तो कैसे कर लेते हैं ये शो, इनकी समझ नहीं लगती क्या खाते हैं ये। तो इनका बहुत शुक्रिया इतना कीमती टाइम देने का, हमें इनकी आवाज सुनने के लिए बता पाते हैं हम।
4: जी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अल्लाह हाफिज़।
3: आपकी पूरी मैनेजमेंट को सैल्यूट करते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद।
4: पाकिस्तान जिंदाबाद।
3: अल्लाह हाफिज़।

0: नौजवान अक्सर कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमारे लिए क्या किया, लेकिन ये कोई नहीं देखता कि हमने पाकिस्तान के लिए क्या किया। तो मैं कहूँगी शिकायत करना छोड़ें, हल बन जाएं, नौकरी मांगना छोड़ें, नौकरी देने वाले बन जाएं, क्योंकि जब तक नौजवान का हौसला बुलंद रहेगा तब तक पाकिस्तान का परचम भी ज़िंदा रहेगा। और बस यही
1: बिल्कुल ऐसी बात है, जब तक नौजवान अपनी सलाहियतों का सही इस्तेमाल करते रहेंगे पाकिस्तान तरक्की हासिल करता रहेगा। इसी तरह मैं भी एक पैगाम देना चाहूँगी कि पाकिस्तान की तरक्की की सोच आप में तभी क्यों आती है जब आज़ादी होती है। चलिए मैं आपको अपना पैगाम बाद में देती हूँ, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, हम कॉल लेते हैं उनसे। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है और किधर से बात कर रहे हैं?
2: वालेकुम अस्सलाम।
1: जी जी, आपका नाम क्या है, किधर से बात कर रहे हैं?
2: मैं भी एक लिसनर हूँ, एक फैन हूँ, आप लोगों को सुना बहुत अच्छा लगा सुन के।
1: जी जी, मुझे आपकी आवाज बहुत ही सुनी लग रही है, मुझे मैंने आपको पहचान लिया है।
2: अच्छा, पहचान लिया आपने?
1: जी जी।
2: कौन बोल रहा हूँ?
1: आज डॉक्स कौन नहीं पहचान सकता आपको। सर मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप हमें क्या एडवाइस देंगे, जैसे हम यहाँ पर आए हैं इंटर्नीज, डिफरेंट उनके शौक हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, और यहाँ पर हमने इतनी इंटर्नशिप की है और डिफरेंट एक्टिविटीज की हैं, तो अब आप हमें अभी भी एक चीज जो आपको लगता है कि मुझे बतानी चाहिए, अभी भी मैंने मिस कर दिया है, मुझे अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीज बतानी चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, आगे जाके काम आएगी उनके।
2: अच्छा, ये आपके लिए स्पीक आउट ऑफ योर हार्ट, यू डोंट स्पीक अबाउट योर इमोशंस एंड योर फीलिंग्स। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी, कोई मिस्टेक हो जाएगी लिखे हुए से, अगर मैं हटा या हटी ऐसा कुछ करता, आपको वो शेयर करना चाहिए, वो बोलना चाहिए जो अंदर से आपको फील आ रही। अभी भी स्क्रिप्ट जो भी है उसे हट के जो एक्चुअली आप फील करते हैं वो जहां जहां पे फील डिफरेंट है, स्क्रिप्ट की डिफरेंट है।
1: जी जी,
2: आई वॉन्ट यू स्पीक आउट ऑफ योर हार्ट। कहीं पर भी जाए, कुछ भी करें, बाकी यू गाइस आर डूइंग वेल, बहुत अच्छा चल रहा है पाकिस्तान के हवाले से, जो आप लोगों ने मैसेजेस दिए बहुत अच्छे हैं। और मैं सिर्फ यही अर्ज करना चाहूंगा कि जश्न आजादी मनाए, पापा पी पी जो दिल करता है किए जाए, घर में डाले ना, जरा सर चेक करें आपकी अम्मा आपके अब्बा क्या करते हैं आपके साथ, फिर वो बाहर जाके आपने कहना।
1: सर आप अपना शेयर करें ना कि आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं, फिर हम भी पापा भी
2: क्या कहा
1: कह रही हूँ कि आप अपना शेयर करें ना एक्सपीरियंस के आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं ये 14 अगस्त वाला दिन।
2: मैं कैसे करता और अब मैं कहूँ कि हाँ मैं भी थोड़ा सा इस तरह के ड्रामे ड्रूमे कर लेता हूँ, चला जाता हूँ, कलर कुलर लगा लिया कभी चेहरे पे अपने भाजे भाजियों के फेस पेंट किए, गाड़ी में बिठाया और निकल गए, डिग्गी खोली, डिग्गी के अंदर बिठा लिया और चलो देख के आते हैं भाई क्या सजावट हुई यार क्या चल रहा है। डू आई डोंट लाइक बाजा वाला कल्चर, वो तो नहीं शेयर करते, उससे काफी इरिटेटिंग होता है। हाँ आई डू सेलिब्रेट, आई डू गो आउट एंड सी थिंग्स, और आई लव टू सी इस्लामाबाद ऑन 14 अगस्त, खास तौर पे जानवर वहां पे जो हुआ होता है ना डेकोर वो सारा फील, मुझे वहां पे ज्यादा मजा आता है, मेरी कोशिश होती है कि चाहे निकल जाए वहां पे।
1: आखिर में आप नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे?
2: मैं नौजवानों को कहूंगा कि कोई पाबंदी नहीं है कि आप ये करें ये ना करें, सेलिब्रेशन जिस तरह से दिल करता है करें, लेकिन तो अपने आप को सामने रख के करें। वो लोग उस तरह से चीजों को सेलिब्रेट किया करें जिस तरह से यू एक्चुअली फील फॉर योरसेल्फ, सो यू फ्री टू सेलिब्रेट, It's a month of celebration. It's a day of celebration. Enjoy the day. Enjoy the month. Pakistan Zindabad.
1: जी बिल्कुल, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत अच्छा लगा हमें अपने कॉलर से बात करके, जिनको जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है अपनी ज़िंदगी में। तो इसी के साथ
0: प्रोग्राम प्रोग्राम का हम एंड करेंगे। तो एंड में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि सब नौजवानों से कि सिर्फ आज़ादी के दिन ही इतने जज्बाती हो के हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आपको हर दिन पाकिस्तान को याद रखना है, आपको हर दिन अपने मुल्क की तरक्की के लिए कुछ करना है। आप क्या कर सकते हैं, आप अपना हर काम ईमानदारी से कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, अच्छी तालीम हासिल कर सकते हैं। अच्छी तालीम होगी तो आप लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि उनके क्या राइट्स हैं, उनको उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। सो आप इस तरह मेहनत से काम करें और पाकिस्तान इस पाकिस्तान की तरक्की में खुद ही इजाफा हो जाएगा। तो उसके साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।

0: कदम कदम बात तुझे, कदम कदम बात।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: सोनी।

0: तुझे कदम कदम बात।
1: बहुत शुक्रिया, क्या
2: बात है अंतरा, हम तो अंतरे का इंतजार कर रहे थे।
3: क्या बात है नहीं उन्होंने खुद ही वक्त का लिहाज रखा है। नहीं नहीं उनके सुर बहुत, आप उनका गला बड़ा खुला है, बड़े अच्छे ट्रेन आर्टिस्ट हैं वो तो।
2: अच्छा हमने एक बात, हम पहले जो करते होते थे कि मिलेनियल्स और जेन जी का कंपैरिजन करते थे ना 14 अगस्त को सेलिब्रेट करने के हवाले से, कि लेकिन जेन जी ने फिर भी अपने बचपन में तो चलो झंडियां लगाई हैं, अब आके जरा वो हो गए, लेकिन जेन जी और जेनरेशन, मतलब जेनरेशन जी और जेनरेशन अल्फा का अगर हम कंपैरिजन करें, व्हाट डू यू थिंक, मतलब आपको लगता है कि जेनरेशन अल्फा उस तरह की चीज़ें, एक्टिविटीज, फिजिकली वो कुछ करेंगे, मतलब उनकी तो सारी दुनिया गैजेट्स तक ही रह गई है ना।
3: मैं जहाँ जिस भी प्लेटफॉर्म पर हूँ मैं ये इस बात का जिक्र ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मुझे नई जनरेशन से एक बहुत ज़्यादा शिकवा है। आई लव सोशल मीडिया, आई लव टेक्निकल एडवांसमेंट्स, लेकिन इसके साथ साथ जो एक परफॉर्मेटिवनेस आ गई है सिर्फ दिखावे की हद तक, पहले मतलब हम अपनी अम्मी अब्बू वगैरह से सुनते थे, या इवन हम अपने बचपन में बाजार में जो है वो खुशी मना रहे हैं, झंडियाँ लगा रहे हैं, लड़कियाँ क्योंकि हम थोड़ी सी सोफिस्टिकेटेड होती हैं तो हम बाजू की बजाय हम वाइट और ग्रीन फेरी लाइट्स लगाते हैं। तो लेकिन अब जो जिस तरह से जो एक इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के जो ट्रेंड्स का जो एक रिवाज चल पड़ा है, तो वो अब जी ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे हैं बच्चे के, 14 अगस्त के दिन उठे, सफ़ेद शलवार कमीज पहनी, एक छोटा सा बैज लगाया, तस्वीर सोशल मीडिया पे लगा दी और ये हमारा
2: कपड़े उतार के वापस सो गए।
3: कूल हूँ मैं तो 14 अगस्त भी सोकर गुजारता हूँ, मैं तो ईद पर भी सोकर गुजारती हूँ, ये मतलब मैं तो बहुत कूल हूँ ना, तो आई डोंट रियली लाइक दैट। तो कूल मतलब मुझे लगता है इस तरह की चीज़ें सेलिब्रेट होनी चाहिए।
1: मैं समझता हूँ कि हर एक का अपना अंदाज है और इसको हमें भरपूर अंदाज में सेलिब्रेट भी करना चाहिए। बिलाल हमसे बात कर रहे थे कि हमें कंस्ट्रक्टिव किस्म का कुछ काम भी करना चाहिए, जैसे हमें ट्री प्लांटेशन ड्राइव का एक अमल करना चाहिए। इसके अलावा मैं एक चीज़ ऐड करना चाह रहा था, हमें सदका भी इस दिन देना चाहिए,
3: बिल्कुल
1: शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें सरजमीन मिली है जहाँ हम खुल के अपने मज़हब को, हर चीज़ को हम प्रैक्टिस कर सकते हैं विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम,
2: बिल्कुल आज़ाद फिजा में हम सांस ले सकते हैं।
4: अच्छा
2: जी सामीन, जी जी
4: एक बात और मैं यहाँ करना चाहूँगा, कायदे आज़म ज़ाहिर है हमारे लीडर हैं और उनका एक अहम किरदार है, मेरे जहन में डॉक्टर खुर्शीद रिजवी की एक नज़म आ रही थी।
3: जी जी जी ज़रूर, इरशाद
4: इरशाद तक पहुँचाऊँ।
3: जी जी,
4: एक शख्स देखने में नहीफ़ो नज़ार सा, एक शख्स देखने में नहीफ़ो नज़ार सा, बातिन की कुव्वतों में मगर कोहसार सा।
3: वाह वाह वाह वाह,
4: बातिन की कुव्वतों में मगर कोहसार सा, गैरों के रू बरू सिफते चौब खुश्कदार, अपनों के वास्ते शजरे सायादार सा।
3: वाह वाह वाह वाह,
4: अपनों के वास्ते शजरे सायादार
3: सा,
4: खुद हो गया गुरूब मगर दश्ते तीरा में, खुद हो गया गुरूब मगर दश्ते तीरा में, फिरता है उसकी रोशनियों का गुबार सा।
3: वाह वाह,
4: फिरता है उसकी रोशनियों का गुबार सा, वो कब का जा चुका है मगर चश्मे खीरा में, वो कब का जा चुका है मगर चश्मे खीरा में, बाकी है उसके अक्स रवां का खुमार सा।
3: वाह वाह वाह,
4: बाकी है उसके अक्स रवां का खुमार सा, आना उसे नहीं है मगर उसकी चाप का, करती है अब भी अर्ज वतन इंतजार सा।
3: अरे
4: हम खाक हो चुके हैं मगर उसकी याद से, आता है अपने होने का कुछ एतबार सा।
3: वाह वाह वाह,
4: क्या बात है, अपने होने का कुछ एतबार सा, ऐसा है वो तो आओ उसे हिरज़े जां करें, ऐसा है वो तो आओ उसे हिरज़े जां करें, यादों की उसकी समत सफीने रवां करें।
3: वाह वाह,
4: यादों की उसके समत सफीने रवां करें।
3: बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत आवाज में इन्होंने हमें खुर्शीद रिज़वी साहब की नज़्म सुनाई।
2: क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। जी सामईन, इसी के साथ हमारा ग्रुप जो है, हमारा जो वक्त है, दौरानिया है, वो ख़त्म हुआ जाता है। एक अगला ग्रुप आपके सामने अभी आएगा और सामने से मुराद है कि यहाँ पर
3: माइक्रोफोन के
2: सामने से मुराद मैं वही कह रही हूँ कि यहाँ पर जो हमारी बातचीत होती है, जो हमारी गुफ्तगू होती है, उसमें हमारी आवाज़ होती है और आपकी समात होती है।
4: और हम आपको याद रहेंगे भी कि इतनी अच्छी अच्छी बातें हमने आप तक।
2: जी बिल्कुल ऐसा ही है। और आप सुन रहे हैं जी इंडिपेंडेंस डे की स्पेशल ट्रांसमिशन FM 101 से, रेडियो पाकिस्तान प्लेटफॉर्म है। और अपनी दुआओं में याद रखिए और हमारे ग्रुप को यहाँ इजाजत दीजिए और बहुत जल्द आप हमें दोबारा सुन सकेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल
3: करेंगे।
2: बिल्कुल बिल्कुल, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।
1: अल्लाह हाफिज़।

0: 100 सलीबें थी हर एक घर पे जुनून से पहले, मैं क्या कहूँ अब कहूँ या ना कहूँ से पहले। वेल जनाब, मुझे कहते हैं मोहम्मद इस्लाम और आप सुन रहे हैं इस वक्त FM 101 के लाहौर रेडियो स्टेशन से आज़ादी योम आज़ादी की खसूसी नशरियात। सामेईन कराम, आज़ादी आज़ादी और फिर आज़ादी, एक ऐसा दिन जबकि जिस दिन हम आज़ाद हुए कायदे आज़म ने और उनके रफ़ाक़ा ने जिस तरह से हमें आज़ादी दिलाई अंग्रेज़ों और हिंदुओं से, जिस तरह से बरसरे पैकार होकर हमें जिस खूबसूरती और एक लगन की तहरीक के बाद हमें आज़ादी मिली, तो हमें ज़रूर इसकी कदर करनी चाहिए। और इसी के ऊपर आज हम एक खसूसी ट्रांसमिशन के साथ आपके पास हाजिर हुए हैं। इस मौका पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारी गुफ्तगू इस मौजू के ऊपर होगी कि पहले जो हमसे पहले जनरेशन थी, जनरेशन जी से पहले या भी है या हमारे बड़े, वो किस तरह से यौम आज़ादी मनाते थे और आज के जो नौजवान हैं वो किस तरीके से यौम आज़ादी मनाते हैं। तो हमारे साथ खूबसूरत मेहमानों की एक पैनल मौजूद है, जिसमें हमारे साथ फातिम हैं और दूसरी मेहमान हमारे साथ आयशा सुल्तान हैं और इसके साथ हमारे साथ अली मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और बात करके जानेंगे कि ये यौम आज़ादी कैसे मनाते हैं, इनका क्या तरीक़ाकार होता है और यौम आज़ादी का जो पूरा 14 अगस्त वाले दिन, जो एक दिन होता है, एक पूरा रोज़ होता है, उसको कैसे गुजारते हैं और उसको इंजॉय कैसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फातिम, कैसी हैं आप?
1: वालेकुम अस्सलाम, आपका बहुत शुक्रिया आपने हमें यहाँ बुलाया और ये बहुत बड़ा एजाज है मेरे लिए।
0: जी अच्छा, मैं आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। आप ये बताएं हमारे सामईन को भी और हमारे लिए भी कि आप यौम आज़ादी को किस तरीके से मनाती हैं और इसके साथ साथ आपने जो आपके बड़े हैं वो कैसे मनाते थे। जाहिर है आपका भी एक बचपन पूरा गुजरा है, फिर लड़कापन आया और अभी जवानी की जो है वो हदूद में आप दाखिल हो चुकी हैं, तो ये बताइएगा कि कैसे आपके बड़े मनाते थे आज़ादी और आप जो है वो उस सिलसिले को कैसे लेके चलते हैं।
1: जी, तो हमारे जो बड़े थे उनका ताल्लुक फैसलाबाद से था। जी, तो हमारे हम एक हवेली टाइप घर में रहते थे, स्टाइसी उसका नाम था, मुझे आज भी याद है।
0: सही।
1: एंड जिस तरह पुराने ज़माने में लोग रहते थे एक साथ, हमारा पूरा खानदान साथ रहता था, साथ साथ खाने बनने
0: जॉइंट फैमिली
1: पसंदीदा। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे बाबा हैं, उनके 4 भाई हैं, हम सारे एक साथ रहा करते थे, उनकी फैमिलीज भी वहीं पे रहा करती थी। तो हमारी दादा बू दादी माँ साथ रहते थे एंड साथ में रहना, दूर दूर से आना, क्योंकि मेरे बाबा फ़ौज में थे तो जब भी हमें छुट्टी मिलती हमने सीधा घर जाना और वहाँ पे जाके अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना और उनके साथ 14 अगस्त मनाना, मज़े मज़ेदार खाने बनाना, मेरी जो कज़न्स होती थी उनके साथ मिल के मेहंदी लगाना, चूड़ियाँ पहनना, वाइट और ग्रीन कलर के ड्रेसेस पहनना, हमारा तो ये था। ये बचपन की कहानी, अगर मैं अपना अभी बताऊँ, ये मेरे बड़ों का जो है उनका होता था, साथ बैठ के मिलना बैठना, खाना पीना, बातचीत करना। अगर मैं अपनी बताऊं तो आजकल जैसे हम जेंजीज हमें कहा जाता है, आज भी वैसा ही जुनून है पर थोड़ा सा कम हो गया है। तैयार हुए, तस्वीरें खींची, पोस्ट कर दी। तो आजकल हमारे ज़माने में ये चल रहा है, लेकिन मैं बेसिकली क्या करती हूँ कि मामा से कहना अच्छे अच्छे खाने बना दें, मुझे बिरयानी और निहारी बहुत पसंद है, तो ये ज़रूर होना चाहिए, ये ज़रूर होना चाहिए।
0: जी सामेईन कराम, एक न्यूज़ ब्रेक है, उसके बाद हम इंशाल्लाह वापस आएंगे, खबरें सुनिए।

0: Şöyle bir yandan. वज़ीर आज़म आज से सऊदी अरब का 3 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। पाकिस्तान ने भारत पर जोर दिया है कि वो अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की मुतल्लिका करारदादों के मुताबिक मसला जम्मू कश्मीर के पुरअमन हल के लिए साजगार माहौल पैदा करे। पाकिस्तान और डेनमार्क ने तवानाई के बुनियादी ढांचे को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के लिए स्ट्रेटेजिक शोबे में तआवुन प्रोग्राम के आगाज़ की गरज से एक मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए हैं। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि थर कोल से बिजली पैदा करने की सलाहियत 3000 मेगावाट तक बढ़ाई जाएगी।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.101
2: फॉर लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस आफ्टर एवरी वन आवर ट्यून इन टू एफएम 101 द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान।

0: को मजीद जो है वो इंगेज इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जरूर करेंगे।
1: ठीक है जी, बहुत मेहरबानी आप सबके लिए, मेरी बहुत से दुआएं।
0: जी जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़ी रही है, ये थे कॉलर हमारे साथ, बहुत खूबसूरत बातें कर रहे थे, बहुत
2: हमारे पास
0: बता रहे थे। जी जी,
2: वक्त की कमी है तो मेरे ख्याल से हम यहाँ पे सारी नौजवान नस्ल मौजूद है और काफी नौजवान रेडियो सुनते हैं, ये भी काफी खुशाइंद बात है।
0: हाँ, ये बहुत जबरदस्त
3: है। मुझे पहले नहीं पता था रेडियो में आने से पहले कि इतनी नौजवान, इवन हम जेन ज़ी टाइप।
0: हाँ बिल्कुल, जैसे ही मैं अपना, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं पहले रेडियो बहुत कम जो है वो, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि सुनता नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने इस इंटर्नशिप का जो है वो आगाज़ किया और फिर इस तरह से यहाँ पे जो आरजेस हैं, टीचर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, जिस तरह से उन्होंने समझाया बताया और फिर इसके साथ हमें लेके चले और प्रोग्राम्स का बताया और फिर हमने उनको सुना स्टेज के ऊपर, तो हमें लग रहा था कि ये ऐसी खूबसूरत आवाज़ें हैं, हमारी समातों से टकरा रही हैं, तो हम क्यों ना इनको जो है वो अपने ये जिन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपने प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं, हम वहाँ पे इनको क्यों ना सुने।
3: बल्कि ये सिर्फ आवाज़ें नहीं है, ये उन 10-15 सालों का तजर्बा है।
0: हाँ, और शायद इससे भी ज्यादा।
3: वो जब हम सुनते हैं ना तो हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, सही तरह से समझ नहीं पाते।
0: चलें जी, ये बहुत हमारा अच्छा प्रोग्राम हुआ फातिमा, आपका भी बहुत।
2: और सेगमेंट का इख्तिताम हम करेंगे इस बात से, जैसे हमने बात की कि नौजवान नस्ल सुन रही है, तो छोटा छोटा सा पैगाम दे देंगे हमारे सुनने वाले को कि पाकिस्तान आपके लिए क्या है और आप क्या पैगाम देना चाहेंगे लोगों को कि नौजवान नस्ल को आगे क्या करना चाहिए।
3: मुझे लगता है कि जिस जोश और जुनून से हमारे जो आबाओ अजदाद हैं, जिन्होंने सैक्रिफाइसेस की, कुर्बानियां दी हैं, हमें भी उस कुर्बानी का जोश रखना चाहिए। हमें अवेयर करना चाहिए हमारे आने कि ये कितना जरूरी दिन है और पाकिस्तान हमारे लिए कितना जरूरी है।
0: अपने मुल्क के लिए रोल अदा करें, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए। मैं अपना पैगाम अगर छोटा सा ऐड करूं यहाँ पे कि हम यौम आज़ादी को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत खूबसूरत ज़बरदस्त तरीके से, मिली जोश जज्बे से, जोश खरोश के साथ मनाते हैं, तो मेरी भी आप सब से ये गुजारिश है, बल्कि दरख्वास्त भी है सारे जितने भी सामईन हमारे साथ हैं, मौजूद हैं और सुन रहे हैं, कि कम अज़ कम इस यौम आज़ादी के ऊपर अपने हाथों से सदक़े जारिया के लिए और हमारे मुल्क की बेहतरी के लिए कम अज़ कम एक पौधा ज़रूर लगाएँ, क्योंकि प्लांटेशन हमारे माहौल के लिए, हमारे मुआशरे के लिए, हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरा तो यही एक मैसेज है कि ज़रूर हम जो भी आज़ादी मनाए, ज़ाहिर है हम सब पाकिस्तानी मना रहे हैं, तो एक पौधा जो है वो यौम आज़ादी के ऊपर ज़रूर बनता है।
4: ये जैसे कि पाकिस्तान ने हमें सब कुछ दिया, अब हम वक्त है कि हम पाकिस्तान को क्या दे सकते हैं।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
4: सिर्फ मोहब्बत का दावत नहीं, तो पाकिस्तान हमसे अब जो है वो किरदार मांगता है।
0: बिल्कुल,
4: ईमानदारी मांगता है, हमें इल्म मांगता है। अगर हम अच्छे तालिब इल्म हैं तो ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतर
0: रोशन है। हाँ
2: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की अली आपने। और साथ जो हमारे पास महदूद वक्त है, तो छोटा सा पैगाम मैं ये देना चाहूंगी कि कंसिस्टेंसी
0: तसलसल
2: बहुत जरूरी है। आपके अंदर कोई सलाहियत है, आप कोई भी काम कर रहे हैं जिंदगी में, किसी भी शोबे में मौजूद हैं, जब तक आप उसको पॉलिश नहीं करेंगे, निखारने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते।
0: बिल्कुल,
2: हमारे साथ यहाँ स्टूडियोज में अब्दुल रहमान भी मौजूद हैं और बहुत जबरदस्त गुलकार हैं और गुलकारी की दुनिया में एक नया। तो अब्दुल रहमान, मैं आपको जहमत देना चाहूंगी कि आपके एक आजादी का महीना है, अगर आप छोटा सा नगमा।
5: जी बहुत शुक्रिया आपका मुझे यहाँ पर सेट पर लेने का, और एक मिली नगमा मैं पेश करना चाहूंगा अमानत अली खान साहब का, ए वतन प्यारे वतन।
2: बिल्कुल बिल्कुल जरूर।

मैं संगीता आप सबकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। 14 अगस्त की आजादी आप सबको मुबारक हो। ये वो दिन है जहां आप आजाद हुए थे और आजादी बहुत बड़ी नेमत है। ये कदर तो उन लोगों को मालूम होते हैं जो बाहर बैठे हैं।

अपनी से शान हमारी तुझसे।

0: थैंक यू,
1: बहुत खूबसूरत आपने, बहुत अच्छा लगा आपने सुनाया,
0: बहुत शुक्रिया आपका।
2: तो हमारे साथ एक और इंटर्नीज मौजूद हैं जो मुझे हंस हंस के देख रहे हैं, तो मेरा उनसे ये सवाल है कि अगर आपको ये कहा जाए कि पाकिस्तान को एक लफ्ज में बयान करें तो आप किस तरह डिफाइन करेंगे पाकिस्तान को?
3: मैं इस तरह बताना चाहूँगी, पाकिस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं, एक जज्बा है। सब्ज़ हलाली परचम मेरी पहचान है। दुनिया में सबसे मेहमान नवाज कौम का नाम है पाकिस्तान। मट्टी उसकी सोना है, लोग उसके हीरे हैं। सांस सांस में पाकिस्तान, दिल दिल में पाकिस्तान। जहां मोहब्बत है वही पाकिस्तान है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल हम हैं, इसे संवारना हमारा काम है। छोटी नेकी से बड़ा पाकिस्तान बनेगा, उम्मीद का दूसरा नाम पाकिस्तान। आज़ादी मिली थी कुर्बानी से, कदर करेंगे मेहनत से, पाकिस्तान जिंदाबाद।
2: बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने पेश किया। तो अब हमारे साथ एक और इंटरव्यू मौजूद हैं, आपसे सवाल कर लें।
4: जी जी,
2: इजाज़त है?
4: ज़रूर।
2: आपसे हम पूछना चाहेंगे कि आपके नज़दीक आज़ादी का क्या मतलब है?
4: मेरे नज़दीक आज़ादी का मतलब है कि हम अपने वतन में इज़्ज़त, अमन और वक़ार के साथ ज़िंदगी गुजार सकें, अपने राय का इज़हार कर सकें और तालीम हासिल कर सकें और अपनी ज़िम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाकर अपने मुल्क की तरक्की में हिस्सा डाल सकें।
2: बहुत खूबसूरत आपने अपनी राय का इज़हार किया।
4: शुक्रिया।
2: तो आप सब ने मुझसे सवाल किया और मैंने आपसे सवाल किया, और मैं अपने खुद से एक सवाल, मेरा ये है कि आप तो मुझसे सवाल नहीं कर सकते।
4: क्यों नहीं कर सकते? मैं पूछती हूँ आपसे, आपको 14 अगस्त की सबसे ज़्यादा चीज़ कौन सी चीज़ पसंद है?
2: सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि हम एक आज़ाद मुल्क में पैदा हुए हैं, और आज़ाद मुल्क में ना सिर्फ पैदा हुए हैं बल्कि हमें ये मौका मिला है कि हम आज़ादी मना रहे हैं। तो मुझे 14 अगस्त की सबसे खूबसूरत बात पाकिस्तान का कौमी परचम लगता है, क्योंकि जो कौमी परचम होता है वो किसी कौम की इज्जत की निशानी हुआ करता है। यानी कि हम जहाँ भी दुनिया में जिस जगह पर भी जाते हैं, हम पाकिस्तान के कौमी परचम के हवाले से पहचाने जाते हैं।
4: जी।
2: जैसे ही हमारा झंडा लहराया जाता है तो सबको ये पता चल जाता है कि ये पाकिस्तानी है। और ख़ास बात यह है कि मैं पाकिस्तानी परचम को ना सिर्फ, मैंने इससे मुझे मोहब्बत है, हर साल मैं खुद अपने हाथों से अपने घर पर इस रिवायत को बरकरार रखते हुए खुद लगाती हूँ और उस पर मैं अपना नाम भी लिखती हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद।
4: पाकिस्तान जिंदाबाद, बहुत खूबसूरत आपने बताया, बहुत खूबसूरत बात शेयर की अपनी।
2: अगर मेरा ये आप सबसे एक सवाल है,
4: हमारे साथ कॉल है, कॉलर, हम कॉल लेते हैं।
2: मेरा आप सबसे एक सवाल है सबसे के, अगर आप इंशाल्लाह पाकिस्तान की नौजवान यूथ हैं और आपको मौका मिलेगा अल्लाह ताला के हुक्म से, जब भी आप पाकिस्तान किसी शोबे में सर्व करें, कभी मौका मिले तो आप कौन सी चीज़ आपके नज़दीक एक ऐसी चीज़ जो आप बदलना चाहें? किस्सा
5: जी, मेरे ख्याल से मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर मुझे पाकिस्तान में कोई एक चीज़ बदलने का मौका मिले तो मैं सबसे पहले हमारे जो तालीम का जो है निज़ाम वो बेहतर बनाना चाहूँगी, क्योंकि मेरा यकीन है कि मजबूत जो है किरदार और तरक्की याफ्ता कौम की बुनियाद हमेशा मेयारी तालीम पर होती है। जब हर बच्चे को अच्छी तालीम, यकसा मौके और बहुत बेहतर तरबियत मिल जाती है तो वो ना सिर्फ अपने ख्वाब भी पूरे करता है बल्कि अपने मुल्क की तरक्की में भी बहुत अहम किरदार अदा करता है।
4: आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैं आपको नंबर बताती हूँ, 042-111-0011। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, 042-111-0011। आप हमसे रابطہ कर सकते हैं। कॉल आ गई है? आ गई है।
6: हेलो हेलो हेलो
4: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
6: वालेकुम सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम वनवन के सभी सुनने वालों को मेरी तरफ से हफ्ता मुस्कुराता हुआ और अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप
4: जी? आपकी आवाज नहीं आ रही थी।
6: अब आ रही है? अभी भी आ रही।
4: जी जी, आपका नाम क्या और कहाँ से है?
6: بس میں نے میری مجھے تو نام بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی, مجھے شمیم آتی کیا.
0: جی آپ کا نام کیا تھا؟
6: شمیم آتی.
2: دوبارہ بولیں.
0: شمیم
6: شمیم آتی. جی جی بالکل بالکل بالکل.
0: جی جی آئیے. جی شمیم آپی کیسی ہیں آپ؟
6: الحمدللہ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ کا شو سن رہی ہوں, آپ کی باتیں سن رہی ہوں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پاکستانی ہیں, تو میرا نا سعودی عرب جانے کا اتفاق ہوا.
0: جی
6: اللہ کے گھر میں گئی ہے, ہرمین شریف میں تھی, تو وہاں نا مجھے وہاں ایک پاکستانی اور کوئی مل گئی خاتون. پتا نہیں اس کو میرے لباس سے پتا چلا یا کیسے, کیونکہ ادھر تو لباس ہو رہا ہے نا سعودیا کے. تو مجھے پوچھی آپ کہاں سے آئی ہیں, میں نے لاہور پاکستان سے میں آئی پاکستان سے آئی ہوں. میں نے کہا ہاں جی میں پاکستان سے آئی ہوں. تو یہ ہے کہ ہماری یہ پہچان ہے, ہمارا پیارا پاکستان ہے. اور میں یہی کہوں کہ جیسے کہ خوشی کا موقع آ رہا ہے, 14 اگست آ رہی ہے, تو ہمارے جو پردیسی بھائی ہیں وہ تو بےچارے منہ اٹھا اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ بھائی ہمارا پاکستان ہے, پاکستان وہ ترستے ہیں وہ لوگ اس آزادی کے لیے. تو بس ایسے ہی اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت اور تندرستی دے.
0: آمین.
6: اور آپ کے پاس جان دن ہے بھائی؟
0: جی جی ہے.
6: ذرا بات کروائیں تھوڑی سی.
0: ابھی پوسیبل نہیں ہے بات کرنا.
6: چلو ٹھیک. سلام میری طرف سے انہیں کیا دیں. میں نے
0: جی ٹھیک ہے. وعلیکم السلام.
6: اور جہاں جہاں تک میری اور آپ کی آواز آ رہی ہے سب کو بہت بہت السلام علیکم. اللہ حافظ.
0: اللہ حافظ.
6: اللہ حافظ.
4: بہت شکریہ.

ऐसे जी। सामीन, अब हम अपने शो का इख्तिताम करेंगे। उम्मीद है कि आपको हमारा शो पसंद आया होगा। इस दुआ के साथ के पाकिस्तान हमेशा तरक्की की मंजिल तय करता रहे और हम सब इसमें अपना अपना हिस्सा डालते रहें। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। इसके साथ ही हम न्यूज़ बुलेटिन के साथ बुलेटिन में बढ़ेंगे। इंशाल्लाह आपसे दोबारा किसी और मौके पर बात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान हमेशा हमेशा जिंदाबाद।

मैं संगीता आप सबकी खिदमत में, अस्सलाम वालेकुम। 14 अगस्त की आज़ादी आप सबको मुबारक हो। ये वो दिन है जहाँ हम आज़ाद हुए थे, और आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। ये कदर तो उन लोगों को मालूम होती है जो बाहर बैठे हैं।

0: सुपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरयार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। नायब वज़ीर आज़म ने अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदर को एक ख़त लिखा है जिसमें भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों को उजागर किया गया है। पाकिस्तान ने आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात से मुतालिक भारतीय वजारत खारजा के बयानात को सियासी मकासद पर मबनी करार देते हुए यकसर मुस्तरद कर दिया है। डेनमार्क ने तवानाई के बुनियादी ढांचे को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के लिए स्ट्रेटजिक शोबे में तआवुन प्रोग्राम के आगाज की गरज से एक मुफामती याददाश्त पर दस्तखत किए हैं।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.1.
2: फॉर लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस आफ्टर एवरी वन आवर ट्यून इन टू एफएम 101, द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान।
3: सुनते रहिए FM 101.

मैं संगीता आप सबकी खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम। 14 अगस्त की आजादी आप सबको मुबारक हो। ये वो दिन है जहां हम आजाद हुए थे और आजादी बहुत बड़ी नेमत है। ये कदर तो उन लोगों को मालूम होती है जो बाहर बैठे हुए।

0: मुझमें जो कुछ अच्छा है सब उसका है, मेरा जितना चर्चा है सब उसका है। मेरी आंखें उसके नूर से रोशन हैं, मैंने जो कुछ देखा है सब उसका है। मैं जब टूटा था वो टूटा था, इधर उधर जो बिखरा है सब उसका है। मुझमें जो कुछ अच्छा है सब उसका है, मेरा जितना चर्चा है सब उसका है। ओए बोली ना, बोली ना, एक मिनट ठहर जी। प्रोग्राम चल रहा है, स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। अच्छा जी, सामीन कैसे मिजाज हैं आपके? आप खैरियत से? ठीक ठाक है। इस वक्त आपके साथ मुखातिब जो कि इस वक्त पैनल और स्पेशल कैसे हैं आप खैरियत से?
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: जी
1: कैसे हैं आप? रहमान साहब ठीक हैं? आप खैरियत से हैं?
0: जी बिल्कुल,
1: बड़े अच्छे।
0: इतने प्यार से बोलते हो ना, मेरे दिल में जो एक होती है ना लगन कि मैं आज नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, मैं छोड़ देता हूँ, भूल जाता हूँ।
1: आप एक अच्छे
0: यार हमारे साथ, आपने उनको पता है वो अगर चाहेंगे तो
1: हमारे साथ इस वक्त कौन है भला, बताइए ना आप कौन है?
2: आप लोग गेस करें ना, हमारे सुनने वाले नहीं, ये वैसे गेस करने का मैंने अपने ऑडियंस को कहा था कि गेस करें उनके साथ। इस वक्त जो वो तीसरी आवाज सुन रहे हैं वो किसकी है?
1: वो जिनसे मुराद पूरी होती है।
0: हाय
1: खदीजा मुराद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज का दिन बड़ा हैपनिंग गुजर रहा है और बड़ा मजा आ रहा है। और रहमान साहब आप भी सुन रहे हैं और सुनते सुनते आप बहुत सारे यहाँ पे जो हमारे इंटर्नीज हैं उनकी इस्लाह भी कर रहे हैं, साथ साथ बता रहे हैं, क्या बात है, कैसे कर लेते हैं आप?
0: यार मैं ना सिर्फ इंजॉय करने के लिए आया हूँ ना, मैं टीचर हूँ यहाँ पे, मैं एक स्टूडेंट बनकर आया हूँ, इस तरह कहना होता ना, मतलब थोड़ा हम्बल जा रहे हैं।
2: नहीं, मैं यहाँ पे एक बात बताती चलूं अपने ऑडियंस को कि सिर्फ हम्बल होकर बोलने की कोशिश नहीं कर रहे, आरजे रहमान अनवर वाकई ही बहुत डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी है। ही इज वेरी पोलाइट, ही इज वेरी
0: काइंड, थोड़ा सा
2: और बहुत जबरदस्त। आरजे जितना माशाल्लाह खूबसूरत बोलते हैं उतनी ही खूबसूरत शख्सियत के मालिक भी हैं।
0: थैंक यू वेरी मच मैडम, आपने इतनी तारीफ कर दी है, वो जितने भी मेरे जहन में जोक्स आ रहे थे ना वो सारे के सारे अब जा चुके हैं।
2: मैं
0: चाहता है कि मैं अब सोफिस्टिकेटेड होकर मैं बहुत मतलब कि मोतबर सी शख्सियत बनकर बात करूं।
2: नहीं,
0: कि
2: लोगों को चाहते हैं आप, माशाल्लाह एंटरटेनिंग पर्सनालिटी है और एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने के साथ साथ डाउन टू अर्थ भी बंदा रह सकता है, हम्बल और पोलाइटनेस भी।
1: एंटरटेनिंग पर्सनालिटी किसे कहते हैं?
0: अब मैं तुम तक बात जाने दूंगा ना, तुम मेरी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब कर दो फिर हादसा पड़ता
1: है। आप कहते हैं
0: ऐसे नहीं करना होता, ऐसे नहीं करना होता, बताना नहीं होता किसी को, क्योंकि हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम चांद पे रहते हैं और वहां से हेलीकॉप्टर में डायरेक्ट
2: हम यहां। जब से आप लोगों ने फेसबुक पे लाइव जाना शुरू किया ना,
1: चांद वान वाली ना बातें बहुत पुरानी हो गई,
0: रात को मैं करता हूँ चांद।
1: 2027 में आ चुके हुए हैं बाप।
0: नहीं, अभी 26 में है, तुम
1: आ चुके हुए हैं 27 में। आप इस बात को मान लें,
0: मुझे
1: हम पेशावर के पेशावर के हिसाब से चल रहे हो, यहाँ पे चांद पहले नजर आ
0: जाता है, मैं निकल भी जाता होता है, आपको पता है ना मुझसे निकल जाता होता है। अच्छा बहरहाल ज़ियान जुम, यहाँ पे सबसे पहली बात ये कि मुझे यहाँ पे आकर इस तरह से आरजेज बनाने का जो तरीका है, इंटर्न
1: सही बन
0: रहे, ट्रेन करने का जो तरीका है, हाँ
1: सही बन रहे, मसाला पूरा
0: अच्छा लग रहा, थोड़ा थोड़ा ना होता ऐसे, तो मुझे ये जो तरीका यहाँ पे अपनाया गया है इस वक्त 101 पे कि लाइव प्रोग्राम्स करवा के उनको सिखाया जा रहा है, प्रैक्टिकल जिस तरह से बच्चे सीख सकते हैं, मुझे लगता है कि थ्योरी में कहीं ना कहीं एक झिझक रह जाती है। आवाज़ जब तक आप अपनी ज़बान से अपने गले से बाहर नहीं निकालते तब तक आपको ये मालूम नहीं होता कि क्या आपके लफ्ज़ तासीर रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे, यकीन की शिद्दत को इंतहा को पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। बहरहाल यहाँ पे मैं जितने भी अभी ग्रुप्स को देख रहा हूँ जो कि आके यहाँ पे अपने अपने सेगमेंट्स जो है वो बहुत अच्छे तरीके से उनको परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से गुफ्तगू का आगाज़ कर रहे हैं। सबसे पहली बात ये कि अभी जब मैं यहाँ पे आया तो एक ग्रुप यहाँ पे बैठा हुआ था और उसको जो लीड कर रहा था वो इस्लाम कर रहा था यहाँ पे। तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ी खूबसूरत आवाज़ और ठहराव और बग़ैर किसी स्क्रिप्ट के अपने जहन से अपने दिमाग से पूरे पैनल को साथ लेकर चलना, ये रेडियो पाकिस्तान का खासा है। ये मैडम खदीजा, असद इब्रार साहब, ज़िया अंजुम, ज़ुबैर बशीर साहब की काविश है जो आज देखने को मिली और मुझे इतनी खुशी हुई, इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बाय द वे अभी हमें
1: कमर्शियल ब्रेक की तरफ बढ़ना है। कमर्शियल ब्रेक के बाद फिर हम वापस आके अपनी बातों को यहीं से जारी करेंगे। सुनते रहें साथ साथ एफएम 101 पे।
3: आइए सामेईन, अब समात फरमाएं प्रोग्राम राह खुदा। मुकर्रर हैं साहबजादा डॉक्टर सैयद शहजाद हुसैन। ये प्रोग्राम रोजाना 3:05 पर नशर किया जाता है।
4: आज सूरह मादा है और आयत मुबारक है 55-56। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा वलीयुकुमुल्लाह व रसूलुहु, इन्नमा बेशक उसके सिवा यानी वलीयुकुमुल्लाह तुम्हारा मददगार अल्लाह है, हाँ तुम्हारे दोस्त नहीं है कोई भी सिवाय अल्लाह के। वह रसूल और उसका रसूल, वल्लज़ीन आमनू और वो लोग जो ईमान वाले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी वो तुम्हारे भी दोस्त हैं। उनकी निशानी ये है, अल्लज़ीन युकीमून सलात, कि वो जो युकीमून सलात जो नमाज कायम करते हैं ये उनकी निशानी है। वह यूतून ज़कात और वो ज़कात भी देते हैं। वह राकिऊन और रुकू करने वालों के साथ वो रुकू भी करते, और वो जो ये तवल्लल्लाह व रसूलहू वल्लज़ीन आमनू और अल्लाह उसके रसूल और मुसलमानों को अपना दोस्त बनाए, फाइना हिजबल्ला है तो बेशक अल्लाह ही का गरो, हिजबल्ला कहते हैं अल्लाह की जमात, अल्लाह का गरो, हुमुल गालिबून यही गालिब आएगा काफरों पे, मुनकरों पे। तो ये निशानी पहले बता दी, और यही सिलसिला हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह जब बरसगीर में यहाँ तशरीफ लाए तो उन्होंने तबलीग दीन के लिए बड़ी काविशें, बड़ी अपनी खिदमत अंजाम दी और अल्लाह की राह में बहुत काम किया। और यही वो लोग हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हैं और उनके नायब हैं, उनके लिए काम करते हैं, उनकी जमात से ताल्लुक है, और यही गालिब आए। आज देख लें आलम इस्लाम में जहां जहां कलमा पढ़ा जाता है इन बुजुर्गों की बड़ी खिदमत है। इन्होंने दुनिया को कलमा हक पढ़ाया और सीधे रास्ते की तबलीग की और सारी उम्र अपनी अल्लाह की राह में गुजार दी और फना कर दी अपनी जिंदगी। आप 400 हिजरी में गजनवी के एक मोहल्ला हजवेर में पैदा हुए और नजीबुत्तौफान सैयद भी हैं और सातवीं पुश्त में आपका इमाम हसन अलैहिस्सलाम तहसील सलाम का। और तालिबान हकीकत और तरीकत के लिए इनकी किताब है जिंदा हकीकत कशफुल महदूद, बड़ी खिदमत है। आपका असली नाम मुबारक अली है। दाता हजूर गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अल्लाह का बोले जिंदगी में ही मिल गया था। आपके बहुत सारे अकवाल मुबारक हैं जिनमें से मुख्तसर सा हम पेश कर सकते हैं कि जब वक्त की किल्लत के बायस कि आपने हमेशा दोस्तों को तालीम दी शरीयत की, तरीकत की और शिरक से लोगों को मना किया कि शिरक से बाज आ जाए, शिरक में कुछ नहीं रखा, शिरक कुफर है। आपने फरमाया रूह की गंदगी को अगर धोना चाहते हो तो खौफे हक के साथ आंसू आंखों से बहाओ तो रूह की गंदगी धुल जाएगी। आप ही का इरशाद मुबारक है, तेरी खुशी और तेरा गम रजाए हक के लिए होना चाहिए, यानी खुशी भी अल्लाह के लिए और गम भी अल्लाह के। तोहफा और हदिया जब भी कोई अल्लाह के किसी बंदे को दे तो वो उसे वापस ना करे, उसका दिल टूट जाएगा, यानी बेतलब जो दे रहा है। इसी तरह आप ही का इरशाद माँ बाप को अपना किबला समझना चाहिए। और आप फरमाते हैं मैं दो किबले समझता हूं अपने वालदैन को, हाँ एक आसमान का किबला और एक जमीन का किबला। और यही उनकी उनकी तालीमात का हिस्सा है कि सब जानो कि तुम महज एक कतरा ही नापाक हो, यह आप इरशाद फरमाते हैं। और अगर कोई चाहता है तोशा उकबा अपना सवारना तो तोशा उकबा गरीबों में मिलेगा, यतीमों में मिलेगा, मसाकीन में मिलेगा। अगर ये हवासे खमसा जो बजाहिर जिन्हें आप अपना दोस्त समझते हैं, यानी हवासे खमसा कहते हैं आंख नाक कान ये सारे जुबान, ये उन्होंने फरमाया अगर इसे सही इस्तेमाल ना किया तो ये क्यामत वाले दिन तेरे सबसे बड़े दुश्मन होंगे। हलाम का लुकमा से 40 दिन कबूल नहीं होती इबादत, ना दुआ कबूल होती है। जहां तेरी इज्जत है और एहतराम के खिलाफ कोई बात हो वहां जाए ना कर, ये आपकी तालीमात का हिस्सा है। آپ نے ایسے نہیں اللہ تعالیٰ نے شاد ان نامہ ولیکم اللہ و رسول ہوں اور بے شک تمہارے دوست نہیں ہیں مگر اللہ اس کا رسول والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں الذین یقیمون الصلاۃ ان کی نشانی ہے وہ نمازی ہوں گے اور یوں تو انہیں زکات اور زکات دیتے ہوں گے وہ راکعوں اور رکوع جھکنے والوں کے ساتھ جھکتے ہوں گے ہاں بے نمازی نہیں ہوں گے ہاں اللہ کی تمام تعلیمات کو داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ نے پہلے خود اپنایا اور پھر لوگوں کو تبلیغ کی یہ نہیں کہنے آئی عورت تو کہ میرے بچوں کو گڑ کا منع کر دیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کل آنا دوسرے دن آیا میں کہا بیٹا گڑ نہ کھایا کرو اس عورت کا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آپ کل بھی کہتے کہیں کل تک تو میں گڑ خود کھاتا تھا میں اسے کیسے منع کر سکتا یہ ہے تعلیمات یہ ہے تبلیغ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین دوسرے دن آیا میں کہا بیٹا گڑ نہ کھایا کرو اس عورت کا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آپ کل بھی کہتے کہیں کل تک تو میں گڑ خود کھاتا تھا میں اسے کیسے منع کر سکتا یہ ہے تعلیمات

मैं संगीता आप सबकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। 14 अगस्त की आजादी आप सबको मुबारक हो। ये वो दिन है जहां हम लोग आजाद हुए थे और आजादी बहुत बड़ी नेमत है। ये कदर तो उन लोगों को मालूम होती है जो बाहर बैठे हुए हैं।

0: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं है आप,
1: हम जैन जी के करीब कहीं पे पैदाइश है। तो ये कि कभी उन झंडियों लगाने पे कोई छोटा डंडा चला हो वालदैन की तरफ से कोई, कि बस टाइम वो नया नया पेंट होता है ना, तो अक्सर मेरे साथ एक दफा ऐसा हुआ कि नया नया जब पेंट हुआ तो हमने वो जो झंडियां आटे की बना के दीवार पर लगा दी, और वो बिल्कुल नया था, जब उतारने बारिश आई पेंट भी जो है ना वो झंडियों के साथ गिर गया। तो ऐसा भी कभी हुआ है कि कभी?
0: नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि घर वालों से इस बारे में डांट या मार पड़ी हो, बल्कि वो तो कहते थे कि इस तरीके से मनाया जाए। क्योंकि आज हम देखते हैं कि अगर हम जो एफ अल्फा की बात करें, उनको सोशल मीडिया से इतना वक्त ही नहीं मिलता कि वो ये काम
1: सही सही सही बात हो। उमर भट्ट साहब आप भी हमारे साथ बड़े ध्यान से हमें और कौन कौन सी तैयारियां को खाने पीने में भी कोई शौक रखते हैं लाहौर के हो, खाने पीने का काम जो है बात ना वो ना हो वो तो मुमकिन ही नहीं है। तो 14 अगस्त पे कुछ खाने पीने का भी जो माहौल है वो बनता है।
2: सबसे पहले हमजा भाई अस्सलाम वालेकुम, और हमारे प्यारे प्यारे भाई जो बैठे हैं और जो हमें सुन रहे हैं उन सबको अस्सलाम
3: वालेकुम। अस्सलाम।
2: अरे हमजा भाई क्या बात छेड़ दिया आपने, खाने का पूछ लिया मेरे से। अरे बट हूँ मैं आपको बताता हूँ, अम्मा पकाती हैं पाए ऐसे खूब के आहा
3: वाह,
2: पूरी दुनिया में उसके बराबर की कोई चीज ही नहीं जनाब।
1: क्या ये पाए खास तौर पे जश्न आजादी के दिनों में 14 अगस्त को सेलिब्रेट करने के लिए बनाए जाते हैं?
2: पाए हर सेलिब्रेशन पे पके, पाए जान है क्या पूछ लिया आपने, पाए तो जान। और हाँ जहाँ तक सेलिब्रेशन है, सेलिब्रेशन में झंडियां तो होती रहती हैं, झंडे होते रहते हैं, उसके अलावा अजी जो रिश्तेदारों की बैठक होती है और उसके बात दोस्तों की जो बैठक होती है, दोस्त इकट्ठे होके एक स्टॉल लगा लेते थे, स्टॉल में हम झंडियां बाजे बाजे उसके बाद वो लई जो होती है और फिर सूतर वो रखते थे और फिर उसे बेचने के लिए घर से बाहर बैठ।
1: ये पहला हमें हमारे प्रोग्राम में जो है वो आपको गेस्ट की इस तरह की भी सुनाई होगी कि लोगों ने कहा हमने लगाते हैं लेकिन यहाँ पे बेचने वाले जो हैं वो भी हमें मिलते हैं, बिजनेस माइंड भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो भट्ट साहब ये भी बताइएगा कि कोई कस्टमर वगैरह कैसे लोगों को आप इंगेज कर लेते हैं कि भाई ये मेरे पास झंडियां ये आपने लेके जाए?
2: अरे हमजा भाई सच सच तो कहूँ बिकती नहीं थी,
1: हाय हाय हाय
2: वो लगी रहती थी।
1: हाँ मैं आपका
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल।
1: तो फिर सामान को कहाँ पे वापस अपने घर में सजा के खुश हो जाते हैं?
2: हाँ वो बस ऐसे ही फिर हर किसी की नजर हो जाती थी, खैरात हो जाती थी, किसी वो दोस्त ले गया, कोई वो लोग ले गया, ऐसे ही बढ़ जाती
1: खैरात हो जाती थी झंडियां। रहील अशरफ भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी रहील साहब, सबसे पहले तो आजकल आप बड़े डिमांड में हैं, आपके पास नगमे हैं, आपकी आवाज का जो स्वर आवाज का स्वर है वो आप जगाते हैं हर इवेंट के अंदर, तो आपकी तैयारियां कहां तक पहुंची, गला गला सेट कर लिया? क्योंकि मिली नगमे कौमी तराने जो है वो तो आपने इवेंट्स की जीनत बनाने ही बनाने हैं। वो तो मैंने
4: सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम,
4: और बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में इन्वाइट करने का। और जहाँ तक रही बात 14 अगस्त की तैयारियों की, तो तैयारियाँ चल रही हैं जोशो खरोश से चल रही हैं, ठीक है। और जैसे मैं आपको बताता हूँ एक वाक्या, बचपन का वाक्या ये है कि वालिद साहब ने मुझे एक दफ़ा बोला कि 14 अगस्त आ रही है बेटा, तो आप क्या करना चाहोगे?
1: ओके।
4: तो मैं तब बच्चा था, तो मैंने कहा वालिद साहब, पापा जी बोलते हैं,
1: पापा जी के वालिद साहब,
4: जी जी पापा जी,
1: कि वो कैब में जो है ना वहाँ पे अप डाउन आ रहा है, तो क्या स्टोरी सुनाए?
4: स्टोरी ये थी जो कि पापा जी ने मुझे बोला कि बेटा आप क्या कहते हैं तैयारी कैसे करें, करना चाहते हैं? तो मैंने फिर बोला कि मुझे एक अदद पेंट शर्ट ले दें,
1: ग्रीन और वाइट,
4: ग्रीन

0: लेकिन ये बचपन की चीजें होती थी, लेकिन अब जो है वो मोहब्बत तो है वतन की, जाहिर है,
1: उसके बगैर तो गुजारा ही नहीं ना है। दिल में जगह, एक सरशार जगह है,
0: पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद
1: जिंदाबाद था।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: म्यूजिक वगैरह की परफॉर्मेंस आपने बाकियों को तो दे देनी है, हमारे मेहमान बने हैं, हमें ही नहीं सुनाएंगे तो क्या फायदा। सुनाए ना आज को जश्न आजादी के हवाले से अपनी खूबसूरत आवाज के साथ, कोई मिली नगमा, कोई तराना, कोई मुल्क पाकिस्तान के हवाले से।
0: जी हमजा भाई, ये तो आपने बहुत ही नाजुक सा
1: नाजुक सी सूरत हाल क्या बना दी। हमने आपसे कहा कि अपनी खूबसूरत आवाज से हमारी सवालों को जो है वो मुनव्वर कीजिए ना।
0: हमजा भाई बिल्कुल, मैं सुना देता हूँ।
1: सुनाइएगा।
0: मेहदी हसन खान साहब,
1: क्या बात है,
0: मिली नगमे,
1: क्या बात है, बताओ।
0: ये वतन तुम्हारा, तुम हो पास बाईस के

रंगो आब तुमसे है, इज़मी का हर जर्रा आफ्ताब तुमसे है, ये फिजा बहरों

इस जमीन की मिट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज पाक मरकज है

0: हाँ हाँ
1: वाह
2: मेरे कारवा जानो वक्त के अपना पहचानो ये वतन तुम्हारा है तुम हो पास के
0: क्या कहने क्या कहने रहे साहब क्या हमारा बता दूं कि हमारे साथ जो स्टूडियो बहुत एंजॉय किया होगा और रहील साहब की जो आवाज है क्या ही कहने क्या ही कहने आपकी आवाज ने हमें ना पाकिस्तान से मोहब्बत का जो जज्बा था ना वो फिर से और उठा दिया मजा आ गया और उसके साथ साथ हमें हमारे जो बाकी मेहमान हैं बिल्कुल वो भी अपना कहीं ना कहीं तो फन जरूर रखते होंगे उम्मीद करता हूँ रखते होंगे तो हम चलते हैं उमर भट्ट साहब की तरफ बल्कि उमर भट्ट साहब को तो हम बाद में पूछते हैं उससे पहले हमारी ऑडियंस जो है उनसे कॉल ले लेते हैं और कॉल अगर यहाँ पर मौजूद है कॉल ले लेते हैं उमर भट्ट साहब की तरफ ही आ जाते हैं आपसे दूर हमसे जाया नहीं जा रहा तो फिर आपकी तरफ वापस लौट कर आते हैं उमर भट्ट साहब बताइएगा कि हमने जश्न आजादी को किस तरह सेलिब्रेट करना चाहिए बाजे वगैरह तो हम बजा लेते हैं लेकिन कुछ ऐसा करना चाहिए जो हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए एक खूबसूरत सा इनिशिएटिव हो तो क्या करना चाहिए
1: जी सबसे पहले बहुत खूबसूरत सवाल है बहुत ही खूबसूरत सवाल है
0: बहुत शुक्रिया ये प्लांटेड की तरह से था
1: अच्छा,
0: जी
1: अच्छा।
0: जी बिल्कुल थैंक यू
1: बहुत खूबसूरत सवाल है और मैं कहूंगा कोई इनिशिएटिव ऐसा जो मुसलमानों और पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हो
0: बिल्कुल
1: एक जो चीज हमारी कौम में खासी कम है वो है तालीम
0: क्या बात
1: तो मैं चाहूंगा जो पढ़े लिखे अफराद हैं वो अपने इर्द गिर्द देखें नज़र घुमाएं और उन बच्चों को निचला मिलता है उनको अपने घर बुलाएं दावत दें
0: जी घर बुलाएं दावत दें उनको अवेयर करें यहाँ पर कॉलर अस्सलाम वालेकुम जी अल्हम्दुलिल्लाह जनाबे वाला कौन सा बोल रहे हैं कहाँ से बात
3: सर अमान
0: क्या बात है जनाब वाला कैसे मिला
3: अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत

0: 있으니까. बहुत खूबसूरत पैगाम थी कि अपने झंडे की, अपनी झंडी की जो हिफाजत है उसको दिल से लगा कर रखें और उसको जमीन में किसी के पाँव की जीनत ना बनने दें। हमारा परचम हमारा वकार है। और बहुत जी, तो सामिन कराम यहाँ पर हम बात करते हैं। बहुत बेहतरीन पैगाम था उमर भट्ट साहब की तरफ से कि एजुकेशन को जो है वो हम फैलाएं। अवेयरनेस एजुकेशन की बहुत ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो पढ़े लिखे नौजवानों के हाथ में जब होगा तो ऑटोमेटिकली उस तरह के इनिशिएटिव लिए जाएंगे जो सोसाइटी की कम्युनिटी की हेल्प आउट कर सकते हैं। कौन सा ऐसा इनिशिएटिव लिया जाए हमारी सोसाइटी में जो कि बेहतर हो?
1: देखिए जी, मेरे हिसाब से जो आजकल की यूथ है, ठीक है, जेन जीज भी हम बोल सकते हैं उनको,
2: सही सही सही,
1: ठीक है, उनके अंदर जो है वो मैं एक बहुत बड़ा बैरियर देख रहा हूँ कि यूनिटी नहीं है
2: क्या
1: आजकल ना,
2: सर कंसिस्टेंसी भी नहीं है उनके अंदर।
1: सर कंसिस्टेंसी भी नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, हर चीज में होनी चाहिए,
2: सब्र ही नहीं है, वो चाहते हैं कि
0: बर्दाश्त, सब्र,
2: कोई तौर पर
0: ये बिल्कुल ये सारे वही अनासर हैं जिनको मिलकर एक बेहतरीन सोसाइटी, बेहतरीन कम्युनिटी बना जा सकता है।
1: छोटे बैरियर्स हैं ये, अगर फिल आउट हो जाए तो मेरे ख्याल है कि
0: हम बहुत अच्छी कौम बन सकते हैं। पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छी कौम है और हमें फख्र है, प्राउड है पाकिस्तानी होने पर, और ये वतन हमारा है और हमने इसे लेकर चलना है। हमने इसके अंदर वो इनिशिएटिव लेने हैं जो पाकिस्तान के लिए खूबसूरत हो, पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, हमारे पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन जो है वो खूबसूरत हो। यहाँ पर ट्रांसमिशन जो है वो मुझसे जो हम अगले कोलीग्स हैं वो आपको ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वह अख्ताम पजीर होता है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेजबान हमजा अहमद रजा को दीजिएगा इजाजत, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।

0: तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। वेल, तो मुझे कहते हैं साइमा इरफान और हम मौजूद हैं आपके साथ एक मज़े की गुफ्तगू करने। दोबारा आपके साथ आए हैं, इंटर्निस मौजूद हैं, आपको खसूसी ट्रांसमिशन चल रही है, तो आपने सुबह से सुना होगा कि सब आ रहे हैं और अपने तजुर्बात शेयर कर रहे हैं कि वो बचपन से लेकर आज तक वो उनके आबाओ अजदाद किस तरह से जो ये दिन है बहुत अहम दिन जो हमें आज़ादी का कैसे सेलिब्रेट करते हैं, तो हम लोग इसी पर बात करेंगे। बट इसके साथ हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो थोड़ा डिफरेंट है। हम बात तो यौम आज़ादी पर करेंगे बट हम इसके साथ ये भी कहेंगे कि यौम आज़ादी में जो हमारे नौजवान हैं वो इस मुल्क पाकिस्तान की तरक्की में क्या किरदार अदा करते हैं, तो इसी के साथ हम चलते हैं अपने जो हमारे पहले इंटर्न मौजूद हैं उनके जानिब। हमारे साथ मौजूद हैं हमाद। तो हमाद, आप ज़रा शामिल गुफ्तगू होना चाहेंगे, बताएंगे हमें आपके क्या जिम्मेदारी, आप थोड़ा नौजवान के किरदार पर जो थोड़ी रोशनी डालना चाहेंगे।
1: बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी लिसनर्स को मेरी तरफ से सलाम आदाब, उम्मीद है सब खैर वाफियत से होंगे। और मैं इस चीज़ पे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि हमारी जो नौजवान नस्ल है, जेंजी जिन्हें हम कहते हैं, मैं ख़ुद भी जेंजी हूँ, इधर जितने भी हमारे साथ जो बैठे हैं सब माशाल्लाह जेंजी ही हैं। और मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जेंजीज को अपनी क्वालिफिकेशन पे ध्यान देना चाहिए, और सिर्फ यही नहीं कि क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर ली उसके बाद जॉब ढूंढने लग गए, सिर्फ यही नहीं, क्वालिफिकेशन के साथ स्किल्स पे लाजमी ध्यान दें। क्योंकि जब आप स्किल्स पे ध्यान देंगे आपके हाथ में एक हुनर होगा, उससे आप कारोबार भी कर सकते हैं, आप एक अच्छी जॉब भी ले सकते हैं।
0: क्वालिफिकेशन प्लस स्किल्स आप ये कहना चाह रहे हैं कि बेसिकली हमें दोनों पे काम करना चाहिए।
1: बिल्कुल
0: अरे तो इसी के साथ आप हमें थोड़ा ये भी बता दें कि जब बचपन में जाहिर सी बात है हम सभी बहुत डिफरेंट लोगों ने अपना शेयर किए तजुर्बात और किस तरह से सेलिब्रेट किया करते थे, तो आप किस तरह सेलिब्रेट करते थे यौम आज़ादी?
1: मैं इस तरह से सेलिब्रेट करता था कि अब हम छोटे थे, हमारे पास साइकिल्स होती थी, बाइसाइकिल्स, तो उन्हें सजाना, उन पे झंडा लगाना और उसके अलावा उसे प्रॉपरली उस तरह से डेकोरेट करना कि ग्रीन और वाइट टेप से उसको सारा कवर अप करना और इस तरह की चीज़ें, तो उससे फिर ये होता था कि हम सुबह के वक्त या दोपहर के वक्त, दिन में जिस वक्त भी हमें टाइम मिलता था, हम सब फ्रेंड्स और कजन्स मिलके अपनी साइकिल्स निकालते थे और एक जैसे आजकल
0: जैसे कि जज्बा उरूज पे होता है कि जो
1: हैं, एग्जैक्टली
0: उन नगमों की गूंज दिमाग,
1: बिल्कुल
0: मतलब ये कि आप खूब एंजॉय किया करते थे, अभी सेलिब्रेट किया करते थे
1: बहुत ज्यादा।
0: बट इसके साथ हम जो एक अहम बात लेकर चल रहे हैं कि जो नौजवान है उनका किरदार क्या होता है, तो इसी के साथ हमारे साथ कुछ और भी इंटर्निस मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नदीम मौजूद हैं हमारे साथ। नदीम, आप क्या कहना चाहेंगे नौजवान, अपनी पर्सनली कुछ भी बताना चाहेंगे कि क्या किरदार होता है, हमें क्या करना चाहिए, सिर्फ सेलिब्रेट करना ही काफ़ी रहेगा?
2: मैं ये बताना चाहूँगा के हवाले से लोग जैसे सेलिब्रेट करते हैं, झंडियाँ लगाते हैं, और गांव का और शहर का थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि गांव में लोग कुछ अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं और शहरों में थोड़ा सा अलग होता है। जैसे गांव में लोग जैसे ही अगस्त का महीना शुरू होता है तो बड़े बड़े झंडे हर घरों के ऊपर मतलब लगे होते हैं, नजर आते हैं कि 14 अगस्त का महीना लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इसी तरह हम भी छोटे होते थे जब सेलिब्रेट करते थे अपने बाबा से कहते थे कि हमें भी झंडियाँ चाहिए, झंडा चाहिए, हमने भी सेलिब्रेट करना है, तो इस तरह से हम भी 14 अगस्त को सेलिब्रेट करते थे।
0: बहुत खूब। और एक जो डिस्कशन काबिले एतराज़ भी रहेगी और हर कोई इस पे जो है ना डिस्कशन करता रहेगा, बताता रहेगा, कोई कहेगा ठीक है कोई नहीं, तो वो ये है कि बाजा मुझे
2: तंग करने की जमरे में आता है क्योंकि लोगों को तंग करना गलत बात है।
0: अगेन बात पे तजाद तो रहेगा, वैसे ही के साथ हम बढ़ते हैं अपने कौन इंटरने की जानिब। तो हमारे साथ मौजूद हैं
3: जमशेद
0: मौजूद हैं हमारे साथ। जमशेद, आप क्या कहना चाहेंगे?
3: मैं यही कहना चाहूँगा जो आपने भी क्वेश्चन किया उससे कि जो बाजा बजाना अच्छा है कि नहीं है, तो एक ही दिन होता है, अगर आप इसे ज्वाइन नहीं करेंगे तो
0: आप हक में इसके
3: बजा तो कुछ लोग तो लाउड स्पीकर लगाते हैं अपने घरों में,
0: नहीं वो कुछ ज़्यादा हो जाए
2: آپ سن سکتے ہیں.
3: آج کل تو سوشل میڈیا آ چکا ہے, آپ لوگوں کی ٹائم نہیں ہوئی ہے. جب 2012-13-14 کی بات ہوتی تھی ہم چھوٹے تھے تو تب یہ ہوتا تھا کہ سوشل میڈیا اتنا زیادہ نہیں یوز کرتے تھے لوگ, تو ہمارا جو محلہ ہوتا تھا ان کے بچے ہوتے تھے وہ ہماری ٹائم تو ہم دیکھتے تھے کہ جو بچے ہیں وہ صبح سے اٹھ کے ہم نے اسٹیج کپڑے ڈالنے ہیں, پھر اس کے اوپر چاند تارے بنے ہوئے ہیں, پھر جھنڈے لگانے ہیں.
0: تو وہی غالباً جھنڈے بائی کرنا ڈفرینٹ.
3: تو

0: कामजन रहे हैं और कुछ पर्सनली कुछ आप अगर एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे जो हमारे सामने हैं सुनने वालों के लिए, अगर कोई भी कुछ करना चाहेंगे आप
1: बात करना चाहेंगे
2: जी। सॉरी किस बारे में?
0: अगर आप कुछ बचपन का भी अपना आजादी के लिए करते हैं ना कुछ प्रैंक्स
2: प्रैंक्स नहीं ऐसा मैंने कभी कुछ किया जी नहीं, वैसे भी लाइक उस वक्त तो प्रैंक्स का कॉन्सेप्ट भी नहीं था होता, संजीदा मिजाज भी नहीं हूँ, आप कह भी सकते हैं नहीं भी कह सकते, बट एक चीज़ है कि ये बात थोड़ी संजीदा है जो मैं कहना चाहूँगा
0: जी जी।
2: ये वैसे एक मैसेज भी होगा हमारे सामईन के लिए कि 14 अगस्त वाले दिन ख़ास तौर पे हमारी जो नौजवान नस्ल है जेन ज़ी या
1: जी जी।
2: जो भी इसी
0: नेक्स्ट आने वाली जनरेशन
2: ऐसी ऐसी ऐसी एग्जैक्टली, मैंने एक चीज़ बहुत आम देखी है कि 14 अगस्त पे हम ड्राइविंग के रिलेटेड ही हम बहुत गलत तरीके से बाइक या कार चलाते हैं जिससे हमें काफ़ी हादसे देखने को मिलते हैं
0: अक्सर, त्योहारों को भी ऐसा देखने को मिलता है।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
0: बिल्कुल।
2: तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ऐसे मौक़ों से हटके भी आमतौर पर आप एहतियात से चलाया करें, क्योंकि आपके साथ भी जो चल रहे हैं उनका भी कोई इंतज़ार कर रहा है और आपका भी इंतज़ार कर रहा है, आपके घर में आपके पेरेंट्स हैं,
1: जैसे वो एक कवला के ना पहुंचने से देर से पहुंचना बेहतर है।
2: बिल्कुल
0: बिल्कुल
2: बिल्कुल,
1: तो थोड़ा सा ध्यान से चलाया करें,
0: जान बहुत कीमती है, अपने प्यारों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें
1: जी।
0: चलें, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और
2: थैंक यू सो मच।
0: आप सुन रहे हैं FM 101 और हम सब यहाँ पर इंटर्न्स हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, और जो 14 अगस्त है वो तो बिल्कुल सर पर आ खड़ी है, और हम लोग बिल्कुल सोच रहे हैं कि थोड़ा बाजा मैं भी थोड़ा बजाने का शौक़ रखती हूँ, तो इस बार मैं आप लोगों को तंग किए बिना थोड़ी आवाज़ में कोशिश करूँगी कि मैं इस दफ़ा फिर वो बजाऊँ और झंडियाँ लगाऊँ, और उम्मीद है कि आप सब भी इंजॉय करने की सेलिब्रेशंस का जो आगाज़ आप लोगों ने कर दिया होगा। तो आज तक के अभी तक के लिए इतना ही है, इसके बाद आप लोगों से एक नई टीम इंटर्नीज की मिलेगी। ओके, तो नई टीम इंटर्नीज की मिलेगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे एक नई टीम मिलेगी एक नए मौजू के साथ, अल्लाह निगेबान।

0: 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब, जब आवाज़ आती है, ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतज़ार कीजिए। 12 बज चुके हैं, ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक।
1: अस्सलाम एंड वेलकम टू दिस स्पेशल सेगमेंट कॉल्ड पाकिस्तान एक्सपीरियंस। हमारे साथ इस वक्त डिफरेंट आरजेस मौजूद हैं जो डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे, मुस्तफा अली हमदानी से लेके अरसलान ऐश तक। वी हैव अ प्लेंटी ऑफ डिफरेंट इंस्पायरेशन जिन्होंने डिफरेंट लोगों को इंस्पायर किया, डिफरेंट जनरेशन को इंस्पायर किया, ख्वाह वो बेबी बूमर्स हों, जेन एक्स हो, मिलेनियल्स हो या जेन जी, वी हैव इंस्पायरेशन फ्रॉम ऑल। और आज हम उन्हीं तमाम हीरोज के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने पाकिस्तान की पहचान पूरी दुनिया में अपने नाम से करवाई। सो अलोंग विद मी इन द स्टूडियोज वी हैव अहमद भट्ट, वी हैव अबू बकर एंड वी हैव मिस हुमायमा। आज के शो में हम करने वाले हैं बहुत ही डिफरेंट चीज, वी आर डिस्कसिंग आवर हीरोज और आपके हीरोज। आप हमें अपने हीरोज बता सकते हैं वाया आपके और हमारे दिलों के रबते का नंबर विच 04211111। आपकी कॉल्स को हम बिल्कुल इंट्रोड्यूस करेंगे, बट फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद आवर गेस्ट। वेलकम हुमायमा इन टू द शो।
0: अस्सलाम वालेकुम शहीद, कैसे हैं आप, कैरियर से हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह। हुमायमा, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, इन पाकिस्तान एक्सपीरियंस वी आर डिस्कसिंग डिफरेंट हीरोज, तो आपसे आगाज करते हैं, विच इज द वन हीरो लाइक बेबी बूमर से लेके विच इज द वन जिन्होंने आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंस्पायर किया?
0: शहीर, मैं इंट्रोड्यूस कराने से पहले एक आपको कॉन्टेक्स्ट बताना चाहूँगी, वो ये कि आज़ादी का सफ़र ख़ास ट्रेन के ज़रिए हो या फिर पैदल चलते महाजरीन के ज़रिए, किसी भी बच्चे के ज़रिए हो या बूढ़ा हो या जवान हो या औरत, हर लम्हा, हर दिन, हर सुबह पैगाम है उस कोशिश का, उस मेहनत का, उस जज्बे का जिसकी बदौलत आज हम आज़ाद हैं। और मेरा ख्याल है कि हम इस बात से तमाम लोग मुत्तफिक हैं कि हम इन्हीं की बदौलत आज हम आज़ाद हैं। और आप बात कर रहे हैं स्पेशल हीरोज़ की, हमारी पर्सनालिटीज़ की, तो मैं शुरू करूँगी फैज़ अहमद फैज़ से। तो फैज़ अहमद फैज़ की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने सिर्फ शायरी को सिर्फ मोहब्बत तक महदूद नहीं रखा, उन्होंने अपने अल्फाज को आज़ादी के लफ्ज़ों में पिरोया है। तो वो बताते हैं ना कि उनकी एक नज़्म है जिसमें वो बताते हैं कि ये दाग दा उजाला, ये शब गुज़ीदा नज़र।
2: क्या बात की आपने, इसमें हासिल कर लिया है, ये मंजिल नहीं है बल्कि एक नए सफर का आगाज है, पाकिस्तान को आगे लेके बढ़ना पड़ेगा।
1: प्री पार्टीशन हिस्ट्री हमारी डिपेंडेंट ही इन तमाम पोइट्स पे रही है जिन्होंने हमारी पूरी जनरेशन को इंस्पायर किया था कि आजादी हमारे लिए क्या है।
2: बिल्कुल,
1: फैज अहमद फैज विल डेफिनेटली बी वन ऑफ द लेजेंड ऑफ पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं, अहमद आप बताइए आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा इंस्पायरेशन आपका कौन रहा है?
2: मैं जो पर्सनालिटी और यहाँ पर अपनी इंस्पिरेशन बयान करना चाहूँगा वो थे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जो एक बहुत मशहूर न्यूक्लियर साइंटिस्ट रह चुके हैं जिनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। उन्होंने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में अपना एक बहुत बड़ा नाम बनाया है और आजकल के जो हमारी जनरेशन के बच्चे हैं जो साइंस और फिज़िक्स और न्यूक्लियर स्टडी करते हैं उनके दिलों में उनके लिए बहुत ज़्यादा इज्जत है और इनको मोहसिन पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता है।
1: बिल्कुल, फिजिक्स की दुनिया में पाकिस्तान की छाप छोड़ने वाले डॉक्टर अब्दुल कदीर खान द ब्रिलियंट एटॉमिक साइंटिस्ट। एज क्योंकि मैं साइंस फिक्शन ही करता हूँ, आई एम वन ऑफ द बिगेस्ट फैन ऑफ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। हमारे साथ एक और हमारे कोलीग मौजूद हैं, मिस्टर अबू बकर आपकी तरफ पढ़ते हैं, विच इज द पर्सनैलिटी जिसने आपको इंस्पायर किया?
3: सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को और आपको भी। और मेरा नाम अबू बकर है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान को प्रेजेंट करने की बात आए या पाकिस्तान को इंटरनेशनल फॉर्म पे प्रेजेंट करने की बात आए और स्पोर्ट्स में क्रिकेट का नाम ना हो तो कुछ अधूरा सा लगता है, क्योंकि क्रिकेट
1: पाकिस्तान की रग रग में,
3: क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जो हर पाकिस्तानी के खून में शामिल है। तो उन क्रिकेट लेजेंड्स की वैसे तो फहरिस्त बहुत लंबी है अगर मैं उस पर बात करना शुरू करूं, लेकिन अगर उनमें से किसी एक की बात करनी हो तो मैं बात करूंगा जो अपना वसीम अकरम।

0: की, जिन्हें सुल्तान ऑफ स्विंग भी कहा जाता है, और दूसरा के जिस तरह से फास्ट बॉलिंग की जो दुनिया में कदम रखा और उसकी एक उसका एक नक्शा ही चेंज कर दिया, और जब पिच पर आते थे बॉल डालते थे सामने बैट्समैन और रिवर्स स्विंग और बैट्समैन के पसीने छूट जाना, और 1992 का वर्ल्ड कप उसमें उनकी विकेट्स जो अराउंड 3 विकेट्स उन्होंने ली थी, तो इसी तरह कई हीरो मौजूद हैं जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया है।
1: एज नदीम अब्बास लोने वाला साहब से इसके यहाँ फनकार आला, यहाँ शायर भी आला, वैसे ही आप देख सकते हैं कि वी हैव डिफरेंट पर्सनैलिटीज एंड आपकी पर्सनैलिटीज जानने की भी कोशिश करेंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं वाया 0422111001, एक कॉल हम ऐड करते हैं देन डेफिनेटली वी विल ऐड मोर पर्सनैलिटीज।
0: अस्सलाम वालेकुम,
1: वापस बढ़ते हैं उमाइमा की तरफ। उमाइमा, आपने जैसा कि बताया फैज अहमद फैज साहब द लेजेंडरी पोएट, उनके अलावा लाइक पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतने बड़े बड़े लोग हैं जो अपनी ऐसी छाप छोड़ चुके हैं कि हम बात करना शुरू करें तो 24 घंटे भी उसके लिए कम है, बट आप सबको आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा जिन लोगों ने इंस्पायर किया उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम फैज अहमद फैज, विच इज द पर्सनैलिटी यू लुक अप टू?
2: जिस तरह शहीर आप बात कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान की तमाम जो हीरोज़ हैं जो पर्सनालिटीज़ हैं हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम सिंगिंग पर्सनालिटीज़ को पीछे नहीं छोड़ सकते।
1: डेफिनेटली।
2: तो ये एक बहुत बड़ा नाम है और वो नाम है नूरजहाँ का, नूरजहाँ जिन्हें मलका तरन्नुम भी कहा जाता है, और उन्होंने अपना कलीदी किरदार तब अदा किया जब 1965 की जंग हुई थी, तो वो एक बहुत ही अजीम कारनामा उनका जाना जाता है, और मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान को इसी तरह से रिप्रेजेंट भी कर रही हैं कि हाँ भाई पाकिस्तान में भी बहुत से नामवर गुलूकार मौजूद हैं। तो 1965 की जंग में जैसे सबको ही पता होगा, सबको ही याद होगा जिस तरह से आपने वलवला और जोश से अपनी फौजी भाइयों के लिए और अपनी आवाम के लिए जो मिली नगमे गाए हैं वो काबिले तहसीन हैं।
1: डेफिनेटली, नूरजहाँ वाज वन ऑफ द एग्जांपल के आपको सिर्फ मिलिट्री पर्सनल होना ज़रूरी नहीं है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए, आप जहाँ पे हैं जिस आर्ट फॉर्म में हैं आपका जो अपना किरदार है आप वो निभाएं, एंड हार जीत अल्लाह के हाथ में है एंड वी सक्सीड इन दैट एज वेल। तो हम

मेरे जहन में एक नाम आया जो के है उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब, कि जहाँ इंटरनेशनल फोरम्स पे बात हो और शहनशाह कवाली का

0: वेलकम बैक लिसनर्स, दिस इज असम 101 लाहौर। मुझे कहते हैं शहीद सफदर एंड आप सुन रहे हैं ये स्पेशल सेगमेंट दी पाकिस्तान एक्सपीरियंस। पाकिस्तान के डिफरेंट पर्सनैलिटीज डिफरेंट कैटेगरीज से हमने लाई हैं, एंड जब हम पाकिस्तान की पर्सनैलिटीज की बात करते हैं इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हमारी जो आर्मी है इसके बगैर हम जा सकें। सो देर इज़ अ पर्सनैलिटी जिसके बारे में अहमद बात करने वाले हैं। सो अहमद प्लीज।
1: तो यहाँ पे जब सब की कंट्रीब्यूशन की बात होती है और सबकी पार्टिसिपेशन की बात होती है तो हम अपनी आर्मी और नेवी को कैसे भूल सकते हैं। तो मैं जिसके बारे में डिस्कस करना चाहूंगा वो हमारे एयरफोर्स कैसे नौजवान

अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उर्वा, मेरे साथ मौजूद है आमना, राबिया, अरूज। और आज हमारे सेशन का जो हमारे शो का नाम है रंगे आज़ादी। हम बात करेंगे जश्न आज़ादी के बारे में, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिन है जिसको हम 14 अगस्त कहते हैं। बट मेरे मानने में सिर्फ इसको 14 अगस्त वाले दिन ही नहीं सेलिब्रेट करना चाहिए।

0: से भी इत्तेफाक करता हूँ।
1: ये देखे ना, ये टीम अप हो गया है बस।
0: ना ना, मदरसे वाला वाइट और है, स्कूल वाला वाइट और है, झंडे वाला वाइट और है, और घर में लाइट बंद करके वाइट को देखो तो वो वाइट और है।
1: बिल्कुल जी।
0: तो अगर आप मुझसे पूछें तैयारियों के हवाले से, तो मैं कहूँगा कि लड़के जो हैं वो बड़े क्रिएटिव होते हैं, सारा साल उसी डंडे से गुड़ियाँ लूटते हैं, फिर वही डंडा झंडा लगा के एक दिन 14 अगस्त मनाते हैं। लड़के वाइट सूट में चांद सितारा बनवाते हैं, लड़के अपने टैंकी के टापों पे ग्रीन कलर करवाते हैं। ओ सॉरी, बाइक के टापों मैं भी एक्साइटेड हूँ 14 अगस्त को लेके। चाहे मेरे अब्बा जी मुझे रात को बाहर नहीं जाने देते, लेकिन
1: चूंकि मुझे मैं क्या कहूँ कि सिंगिंग से मेरा दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन पोइट्री तो की जा सकती है। तो एक शेर आपकी समातों की नजर, यकीन हो के ना हो बात तो यकीन की है, यकीन हो के ना हो बात तो यकीन की है, हमारे जिस्म की मिट्टी इसी जमीन की है। बिल्कुल जी, हमें इस जमीन पर, इस सरजमीन पर फख्र है। और मैं आप सबसे जानना चाहूंगी कि एक लफ्ज, अगर आपने पाकिस्तान को एक लफ्ज में बयान करना हो तो आप क्या कहेंगे? जैसे अगर मैं कहूँ तो मैं कहूँगी कि पहचान, ये वतन मेरी पहचान है। जी सिद्रा, आप क्या कहेंगी?
2: मैं ये कहना चाहूँगी कि ये वतन मेरी मोहब्बत है, जिसने मुझे आज़ादी दिलवाई, जहाँ मैं अपने जो है खुलकर जी सकती हूँ।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मोहब्बत यानी कि आप कह रही हैं कि आप जो वतन को जिस लफ्ज़ से क्या कहते हैं कि शो करती हैं, वो मोहब्बत है। जी उमर,
3: मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि ये वतन मेरा घर है। जिस तरह सबको अपने घर से मोहब्बत होती है और वो कभी भी नहीं चाहेंगे अपने घर से दूर हों, इस तरह मुझे भी अपने वतन से मोहब्बत है। मैं भी कभी नहीं चाहूंगा कि मैं इस वतन को छोड़ के कहीं बाहर जाऊं। मैं चाहूंगा कि मेरी आंख इस वतन में खुली और मेरी आंख भी इस वतन में ही बंद हो।
1: एग्जैक्टली, ये मिट्टी हमारी है ना। बिल्कुल जी हसीबुर रहमान, आप।
0: मैं कहना चाहूंगा कि ये वतन मेरी जान है। ये वतन मेरी जान है, जैसे हमारे बड़ों ने कुर्बानियां दी, अगर मुझसे भी ये वतन कुर्बानी मांगेगा तो मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं थोड़ा सा कुछ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, संजीदगी में ना जाएं। जैसे बड़ी मशहूर बात है कि लोग कहते थे 14 अगस्त में हम झंडियाँ लगाते हैं और बारिश हो जाती है। मेरी झंडियाँ आज तक नहीं गीली हुई,
1: वो कैसे? ये ट्रिक तो हम भी जानना चाहेंगे, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा दुख यही होता था कि भाई मेरी झंडियाँ भीग गई हैं।
0: मेरे अब्बा मुझे छत पे नहीं जाने देते थे, हम कमरे में झंडियाँ लगाते थे।
1: वाह, आपने जो कहा था ना क्रिएटिव हैं, वो आप शो कर रहे हैं कि आप जी बिल्कुल बहुत क्रिएटिव हैं,
2: यूनिकनेस।
0: यार ये अब्बा ने जब मुझे रोका ना, आप कहते हैं ना जैसे किसी चीज को जितना दुबाया जाए वो उतनी बाहर आती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: और अगर किसी का कद छोटा है तो वो उतना ही जमीन में होता है, तो इस वजह से मुझमें फिर कॉन्फिडेंस पैदा होना शुरू हुआ। सारी अभी कुछ रहती हैं वो करूंगा 14 अगस्त के बाद।
1: जी तो सिद्रा, आप हमें कुछ सुनाना चाहेंगी?
2: मैं भी जो है कुछ कहना चाहती हूँ अपने वतन पाकिस्तान के लिए, कि हम अपनी सांसें तेरे नाम करते हैं, ए वतन हम तेरी अजमत को सलाम करते हैं।
1: बिल्कुल, ए वतन हम तुझे सलाम करते हैं, और इसी मैसेज के साथ हम साइन ऑफ भी करते हैं। हमें इजाज़त दीजिए और हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

0: This is FM 101.
1: I love FM 101.
0: This is FM 101.

सुनते रहिए FM 101 101।

सुनते रहिए FM 101 101 101। सुनते रहिए FM 101 101।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
0: सुनते रहिए FM 101 101 101। सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया। शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सुनते रहिए FM 101। सुनते रहिए FM 101।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: शाम के 7 बजे हैं।
1: अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। आसफा महफूज से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने चीन के साथ सदाबहार तस्वीराती शराकतदारी मजीद मजबूत बनाने की पाकिस्तान की ख्वाहिश का अयादा किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलोचिस्तान के अजला वाशुक और मस्तोंग में खुफिया इत्तलात पर मबनी कार्रवाइयों में 12 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। पाकिस्तान ने आजाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के जारी इंतखाबात से मुतालिक भारतीय वजारत खारजा के बयानात को यकसर मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान और जनूबी कोरिया के दरमियान बैन अल-अक़वामी हॉकी सीरीज का आखिरी मैच कल इस्लामाबाद में खेला जाएगा।
2: This is FM 101.
3: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. To the one above, FM 101.
4: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मीर हामिद अली। पूरी कौम को 14 अगस्त की आज़ादी का दिन मुबारक हो। आपका हम भजन अपने तमाम कौम को अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे और उसके दिन दोगुनी याद दोगुनी तरक्की अता फरमाए। आमीन। तो मानो साया।

मैं संगीता आप सबकी खिदमत में, अस्सलाम वालेकुम। 14 अगस्त की आज़ादी आप सबको मुबारक हो। ये वो दिन है जहां हम लोग आज़ाद हुए थे, और आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। ये कदर तो उन लोगों को मालूम होती है जो बाहर बैठे हुए हैं।

0: शुक्रिया आपने FM मनोवन ट्यून किया।
1: सुनते रहिए FM 101 101।

सुनते रहिए FM 101 101 101। सुनते रहिए FM 101 101।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
0: सुनते रहिए FM 101 101।

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन जहांगीर और आप सबको पता है कि जश्न आजादी हम भरपूर जोश और जज्बे के साथ मनाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो हमारी आन है, पाकिस्तान है तो हमारी शान है। पाकिस्तान

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

0: रात के 10 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मुजाहिद खान से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म सऊदी अरब के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर जद्दा पहुंच गए हैं। तवानाई के वजीर ने ईरान के साथ दरीना शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अयादा किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान के अजला वाशुक और मस्तोंग में खुफिया इत्तलात पर 2 कार्रवाइयों में 12 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। पाकिस्तान ने आज़ाद जम्मू कश्मीर में जारी कानून साज असम्बली के इंतखाबात के बारे में भारतीय वजारत खारजा के बयान को 2 टोक अल्फाज में मुस्तरद कर दिया है। और अब खबरें तफसील।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1।
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसन जहांगीर और आप सबको पता है कि जश्न आजादी हम भरपूर जोश और जज्बे के साथ मनाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो हमारी आन है, पाकिस्तान है तो हमारी शान है। पाकिस्तान

0: ओ यस, बस याद रखो कभी टाइम पे आऊंगा तो फिर। हाँ जी, टाइम तो नहीं।
1: Coming up next,
0: I'm still here जी, I'm still here. But keep it long on the mic. ओके, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ की इस दुनिया में जिन समातों से मेरे अल्फाज टकराते हैं, यकीन के साथ कि आज का दिन आपने बहुत ही आसान तरीके से मुकम्मल किया होगा। FM 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं नाइट थेरेपी विद आरजे डॉक सर, जिसमें आपका मेरा साथ होता है जी बुध और जुमेरात की शब 10 से 12 बजे तक, लेकिन शादो नादर ही होता है मैं 10 बजे आप हूँ। और इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं हर दफ़ा अर्जी पेश करता हूँ, पूरा जोर लगाता हूँ, और मैंने ख़ास तौर पर इसलिए मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट भी की है, उनकी मेहरबानी है, मुझे इतनी लिबर्टी उन्होंने दी है, बावजह मजबूरी बावजह गमे रोज़गार मुझे अक्सर आने जाने में मामलात ज़िंदगी में और चीज़ों में ताखीर हो जाती है। इस यकीन के साथ कि आज का दिन आपने बहुत ही आसान तरीके से मुकम्मल किया होगा। और जहाँ तक मेरी आवाज़ आ रही है, लाहौर से सफ़र करती हुई मुल्तान, मुल्तान से हैदराबाद एंड कराची, फिर लाहौर से हम जाते हैं इस्लामाबाद, और वहाँ से फिर हमारा जहाँ दिल करता निकल जाते हैं, लेकिन आवाज़ की सूरत में तो हम सब अतराफ में एक ही दफ़ा में सफ़र कर जाते हैं। हम चाहें कश्मीर भी जाते हैं, हम गिलगित बल्तिस्तान भी जाते हैं, हम KPK में भी जाते हैं, जहाँ जहाँ दिल करता है हम चले जाते हैं। और आवाज़ तो ऐसी है जो पता नहीं कहाँ कहाँ लिए जाती है। आवाज़ एक ऐसी चीज़ है जो एक दफ़ा कान में पड़ती है तो अपने नकूश छोड़ जाती है। खुदा ने कितनी चीज़ों से हमें नवाजा है, उनमें एक बड़ी खूबसूरत सी चीज़ ये आवाज़ भी है। हम, मैं, आप, हम सब ना भी हों, हमारी आवाज़ें गूंजती रहती हैं, हमारे जाने के बाद आपकी मेरी आवाज़ें गूंजती रहेंगी, ना होने के बाद भी। बहुत सारे लोग जब भी हमें सोचेंगे हमारी आवाज़ उनकी समातों में गूंजेंगी, मेरे चले जाने के बाद भी अगर कोई मुझे सोचेगा तो मेरी आवाज़ भी उसकी समात में गूंजेगी। कोई मुझे अच्छे अल्फाज में याद करेगा और कोई लिखेगा हेट यू ऑलवेज एंड आई लव इट इफ यू हेट मी। तो खुदा ने कितनी खूबसूरत नेमतों से नवाजा हुआ है ना हमें, हर शक्ल में, हर तरह से, वी आर द परफेक्ट बींग्स अल्हम्दुलिल्लाह एंड सुम अल्हम्दुलिल्लाह फॉर बींग लाइक दिस। और खालिक कायनात ने कलाम इलाही में इसीलिए कहा कि मैंने आहसन तकवीम के दर्जा पे खल्क किया है, यानी हर तरह से खूबसूरत और मुकम्मल बनाया है। वो कोई भी चीज़ हो, आपकी शक्ल सूरत हो, आपका अंदाज हो, या आपकी आवाज़ हो, और खुदा का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। ये आवाज़ें जो हैं मेरी, आपकी, हम सब की, हमारी पहचान है। हम जाने जाते हैं, हम पहचाने जाते हैं, हम जाने जाएंगे, हम पहचाने जाएंगे। आज भी कुछ ऐसी आवाज़ें हैं जिनके चले जाने के बाद भी जब भी जहाँ भी वो सुनने को मिलती हैं तो उनकी पर्सनैलिटी, उनके अंदाज, उनकी बातें और एक इम्प्रेशन आपकी आवाज़ जनरेट करती है कि आप किस तबीयत के मालिक हो सकते हैं। और कभी कभी आवाज़ें धोखा भी दे जाती हैं, लोग कुछ समझते हैं, आप कुछ निकल आते हैं, लोग आपके बारे में किसी और अंदाज में आपको जानते हैं आवाज़ से। सो अपनी आवाज़ों का इस्तेमाल जिस तरह से जी चाहता है करें, लेकिन ये जहन में रहे कि आपकी आवाज़ आपकी ज़ात की भरपूर अकासी करती है। आपके अल्फाज, आपका कहना, आपका सुनना, आपका बोलना, एवरी सिंगल थिंग, इट्स ऑल अबाउट यू। और खुदा का शुक्र अदा किया करें कि खुदा ने आपको, मुझे, हम सब को सोचने, समझने और बोलने की सलाहियत अता की है। और मेरा बहुत ज़्यादा सलाम है, प्यार है, सलाम अकीदत है अपने तमाम तर फौजी भाइयों के लिए जो वतन अजीज़ की हिफाजत के लिए मामूर हैं सरहदों पर। और यकीन करें, जुमले बार बार बोल के एक रूटीन का हिस्सा तो ज़रूर बन जाते हैं, लेकिन ये मेरे अंदर से ही आवाज़ आती है। वाकई जेन्युइनली फ़ख्र है आप पे, और मैं तो बड़ा फ़ख्र करता हूँ। मैं तो इस चक्कर से लड़ लुड़ भी पहना को गाल करे थे, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी शख्स जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता होगा वो इस तरह की कोई भी बात सुनेगा अपने वतन या उसकी ये मुहाफिजों के बारे में, वो आगे से लड़े ना, अभी तो लड़ पेने। मोहसिन से पूछते हैं, मोहसिन भी साथ बैठे हैं। अस्सलामुअलैकुम।
1: अस्सलामुअलैकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं?
0: मैं वैसे का वैसे ही हूँ, तुम बताओ।
1: अल्हम्दुलिल्लाह सर।
0: नज़र क्यों नहीं आ रहे मुझे?
1: कौन, मैं?
0: हाँ।
1: सर लाइट सारी आपकी तरफ, इसलिए नजर आ रही
0: है। रिंग लाइट के विचकार से नजर आ रहे हैं आप।
1: सर बड़ी खूबसूरत बात की आपने कि हम अपने तमाम उन फौजी जवान भाइयों के साथ हैं जो हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए हर वक्त मौजूद रहते हैं। सर मेरा मानना ये है कि वो हैं तो हम चैन की ज़िंदगी, सुकून से हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं।
0: ओके।
1: उनकी वजह से ये सब कुछ है कि हम अपने मुल्क के अंदर बाहिफाजत मौजूद हैं सिर्फ उनकी बदौलत। और हम क्यों ना उनसे प्यार करें, क्यों ना हम उनकी इज्जत करें, क्यों ना रिस्पेक्ट करें कि जो हमारे लिए हर वक्त मौजूद है।
0: आपके इस जुमले पर मुझे कुछ याद आया।
1: अच्छा,
0: आप बोले बोले बोले बोले।
1: सर मुझे नहीं पता आपको क्या याद आ गया।
0: नहीं नहीं, बोले बोले बोले। यहाँ पे मेरे जहन में एक, वो अक्सर ऐसे होता है ना, कुछ भी आता है ना, कोई भी बात हो तो उससे रिलेटेड कभी कोई गाना कुछ याद आ जाएगा।
1: बिल्कुल ऐसे ही है सर, बिल्कुल ऐसे ही है।
0: तो वो याद आ गया ना मुझे, कुछ याद आ गया। हाँ
1: तो सर शुरू में हम फिर वही प्ले कर देते हैं।
0: क्या
1: जो आप प्ले?
0: नहीं, नहीं, आप बोले।
1: अच्छा अच्छा,
0: आप बोले बोले।
1: तो सर ये है कि बड़ा अच्छा लगता है कि जब हमारे शो में भी हमारे फौजी भाई हमें मैसेज करते हैं या कॉल करते हैं, और सर हम उनको जितना उनका शुक्रिया अदा करें वो हमारे लिए कम है। कि हम उनसे, हमारे पास अल्फाज नहीं है कि हम उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार कैसे करें।
0: हाय मैडम नूर जहां का गाना मेरे गानों में उस वक्त गूंजने लगा ना, इसकी दो लाइनें
1: जी प्लीज।
0: प्यार करा तो कभी कभी ऐसी चीजें भी मजा देती हैं, पुरानी चीजें भी सुनते रहना चाहिए। पाए ना स्पीकर नहीं चल रहे आज, वाई का इसकी आवाज ना ना आए, मजा नहीं आएगा,
1: मजा नहीं आएगा
0: है ना।

0: आहा, दिलों में तेनू प्यार करा। अच्छा जी, ये अपने फौजी भाइयों के लिए प्यार से याद आ गया था, वो मैंने कल गा ही दें। चलो
1: जी सर,
0: है ना,
1: ऐसे ही अच्छा सर, खूबसूरत है।
0: अच्छा जी, आज के दिन हम बात कर रहे हैं रंगों पे, और आज कौन सा रंग है आपके पास?
1: सर मेरे पास आज जो है वो पिंक कलर है।
0: ओ यार, ना कर कसम है,
1: नहीं करना वो।
0: अच्छा नहीं कर रहे। पिंक कलर पे, साइकोलॉजी ऑफ पिंक कलर पे बात करेंगे जी। लास्ट टाइम आई वाज टेलिंग यू, हाँ जी, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, और इस वक्त मेरी लाइव स्टार्ट हो चुकी है। इफ यू गाइस आर देयर एंड इफ यू वांट टू सी एंड कमेंट ऑन माय लाइव, यू कैन जॉइन। आप फेसबुक पे जाएंगे, सर्च करेंगे आरजे स्पेस डी ओ एक्स डॉक्स लिखेंगे, मेरी लाइव स्ट्रीम आ जाएगी, वहाँ पे भी आप आ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरी स्टैटिक पोस्ट है एफ एम 101 लाहौर एंड एफ एम 101 चैनल पाकिस्तान, दोनों जगह मेरी पोस्ट है, वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं। क्या आपको मेरी आवाज नशे जैसी तो नहीं लग रही? मैं थोड़ा एक्टिव आया हूं इसलिए। मुझे किसी ने कहा नहीं यार, आप जब टिल्ला बोलते हैं ना तो ऐसे लगता है अभी आप टोनो में हैं। अच्छा, मैं टोन होता हूँ, टोन रहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ गमे दुनिया और इनसे बंदा आजाद रहे। टोन रहने का ही मतलब नहीं है कि
1: बंदा परेशान ही रहे।
0: नहीं नहीं, आपको गलत काम ही कह रहे हैं, नशे ही कह रहे हैं। लाइक यू जस्ट अवे फ्रॉम एवरीथिंग, आप किसी और ही नशे में। आई वॉज रीडिंग समथिंग ना
1: जी,
0: मैं आपसे शेयर करूं बिल्कुल टॉपिक से हट के, विद योर परमिशन।
1: जी जी सर,
0: साइकोलॉजी क्योंकि मेरा फेवरेट थोड़ा सा है, मैं पढ़ता रहता हूँ कुछ ना कुछ उसमें, तो मैंने ना कुछ चीज़ें पढ़ी मर्द के हवाले से, और आपने मुझे बताना है क्या ये बातें ठीक हैं। मौजू तो जो चल रहा है वो चल रहा है, आप भी जो सुनने वाले हैं वो भी मुझे बताइएगा। उसमें कुछ चीज़ें लिखी थी कि जब आप किसी मर्द से पूछें ना कोई बात, और वो कहे नहीं मैं ठीक हूँ, तो इसका मतलब ये होता है कि वो आपको अपना परेशानी का बर्डन या उलझन में मुबतला नहीं करना
1: नहीं करना चाहता।
0: और इसके अलावा जब कहते हैं कि बहुत ज्यादा कह के मार रहा हो, तो इसका मतलब ये होता है कि वो उलझन का शिकार है। शाह जी मड़े, ये स्पीकर तो चलाए ना यार, वो बहुत ज्यादा उलझन का शिकार है और थकावट में है।
1: बिल्कुल ठीक।
0: और वो आपको बताना नहीं चाह रहा, वो आपसे छुपा रहा है। क्या ये बातें इसी तरह होती
1: सर? बिल्कुल ठीक बात की आपने, एग्री।
0: बाकी मर्द हजरात भी बताएंगे जरा, क्या इसी तरह ही होता कि नहीं होता, या मुझे सिर्फ ये जो साइकोलॉजी है वो गलत गलत तो नहीं मुझे बता रही है?

0: इस तरह की कुछ और भी बातें हैं
1: जी जी
0: कि व्हेन यू इन फोर्स हैं, आप फोर्स करें कुछ ज़्यादा किसी चीज़ के लिए, और ज़्यादा जब वो परेशान होता है तो वो थोड़ा सा डिस्टेंस इख्तियार करता है, थोड़ा सा अकेला रहना पसंद करता है, तो इसका कतन ये मतलब नहीं होता कि वो आपके साथ ताल्लुक में नहीं रहना चाहता। इसका ये मतलब होता है कि वो अपने आप को हील कर रहा है।
1: हील कर,
0: वो कोई भी रिश्ता हो, वो मियां बीवी का हो, बंदा बंदी है, दोस्त अहबाब हैं, बहन भाई हैं, उसका मतलब ये होता है वो खुद को हील कर रहा है, वो अकेला बैठा है। क्या बातें ऐसी हैं
1: सर? वैसे तो बेहतर आपको पता, लेकिन जहाँ तक मेरा आइडिया है या जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है या जो मैं खुद के अंदर फील करता हूँ, उसके मुताबिक ये बातें बिल्कुल ठीक हैं।
0: ठीक बात है,
1: बिल्कुल ठीक बात है।
0: एनीवेज, ये आज 6 अगस्त 2026 का सन है और जश्न आज़ादी है, इसी महीने में आज़ादी का महीना है। आई वॉन्ट यू टू सेलिब्रेट एवरी सिंगल मोमेंट, हर एक दिन को इन्जॉय करें और इन्जॉय करें जिस तरह से दिल करता है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें, इन्जॉयमेंट ऐसी होनी चाहिए कि जो आप समझते हैं कि अगर आपके सामने की जाए, आपके साथ की जाए, तो आप उसे बुरा नहीं मानेंगे। आपके इर्द गिर्द जो की जाए, वो किसी भी शक्ल में हो,
1: जो किसी के लिए,
0: वो चीज़ जो आपके लिए अच्छी नहीं, वो आपने भी किसी के सामने या इर्द गिर्द नहीं करनी। ख़ास तौर पर जब इस तरह की सेलिब्रेशन या कोई इवेंट या एक्टिविटी होती है, और याद रखा करें कि इर्द गिर्द बहुत सारी फैमिलीज होती हैं, आपकी वजह से किसी को दिक्कत या परेशानी हो, दिस इज नॉट गुड। मतलब पर्सनली आई एम स्पीकिंग, अगर मेरे से पूछें, इस तरह की जो भी एक्टिविटी या इवेंट होता है, मैं शुरू दिन से, मैं तो इसका कायल ही नहीं। मेरी बहनों ने कहा ना बाहर चले, मैं कहा नहीं जाना, We're not going anywhere. हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? तुम्हारे बदतमीजी होता।
1: बिल्कुल ऐसे ही है।
0: तुम्हारे बदतमीजी नहीं होना चाहिए।
1: आजकल तो वो बाजा भी ये हो आ गया, वो भी एक बदतमीजी के जुमरे में आता है।
0: वो ही बदतमीजी है।
1: जी जी।
0: वो बड़े-बड़े
1: वो सब बाइक्स पे
0: फजूल किस्म की हरकतें करने वाले भी बंदे पाए जाते हैं। ना पूछो, मुंडिया नु नहीं छाड़ दे। मैं तो 14 अगस्त में ना मेरी लाइफ में 3 दफा हुआ है जब मैं गया हूँ बाहर अपने दोस्तों के साथ। पहली दफा व्हेन आई वेंट, आई वाज इन मैट्रिक, पहली दफा जब मैं गया, तो हम इधर रहते थे ये धर्मपुरे वाली साइड पे, वहां से वॉक करते करते माल रोड पे चले गए।
1: बिल्कुल ठीक।
0: माल रोड पे पहुंचे, अब पुलिस वाले ने जो डंडे बरसाने शुरू किए थे, वो बाइक बाइक्स के रिले आ रहे थे।
1: जी जी।
0: यार मैं पैदल है, मैंने भी कुटता उन्हें। और मुझे बड़ा शदीद गुस्सा आया उस दिन। मैं कहा इसीलिए घटिया काम में जाना ही नहीं चाहिए, ऐसे इवेंट में बाहर जाना ही नहीं चाहिए। और फिर मैंने सोचा कि अच्छा यार, कल नू मैं भी किसी ऐसी जगह तक पहुंचांगा फिर तानू ने बड़ांगा बात।
1: अच्छा
0: ठीक है, हाँ बदला लूंगा, मैं पहुंच जाने तो किसी मुकाम पर। फिर एक दफा दोस्तों के साथ निकला मैं, इत्तफाक हुआ, हम गाड़ी में थे।
1: जी जी।
0: और मेहरान उसकी गाड़ी थी, वो सारे प्रोफेशनल लाइफ में जरा जल्दी ग्रो करके, मैं काफी पीछे था, तो हमारी गाड़ी में ना दोनों तरफ से माचिस बम फेंक दिए मोटरसाइकिल वालों ने।
1: ओ गॉड।
0: मैं कह रहे हैं गाड़ी दे बेच कोई तमाशा फिर लगा। बम भी है ओ मेरे पैरों थले, मतलब बहुत सारे तमाशे चले। एंड थर्ड वन वॉज लिबर्टी ले गए और लिबर्टी जाके हम फंस गए। एंड मुझे इतनी उलझन हुई ना यार, ठीक है इन्हें शौक था ये खड़ी करके जो नाच गाना करते रहे, मुझे काफी उलझन होती रही, मैं इंजॉय नहीं किया। तो ये 3 मुझे याद है, इसके अलावा मैंने हमेशा से अवॉइड किया। हाँ बहरहाल सेलिब्रेशन है, सेलिब्रेट करें जिस तरह मर्जी करें। ये बम या माचिस बम टाइप चीज़ें, इस तरह के क्रैकर श्रैकर करना, तंग करना, यहाँ फैमिलीज को इरिटेट करना, दिस इज अनएथिकल, दिस इज रियली बैड, ये ना किया करें, बाकी ठीक है।
1: कल वो मैं मैडम का वो सुन रहा था, वो कह रहे थे कि अपने नाम के एक दरख्त लगाएं। जो पॉजिटिव चीज़ें आप उनको देखें ना, झंडे लगाएं घर में, झंडियाँ लगाएं जैसे बचपन में लगाते थे।
0: आहो
1: इस तरह के काम करें, कोई ऐसा काम ना करें जिसे दूसरों के लिए तकलीफ का बायस बने। ऐसे कामों से अवॉइड करना चाहिए।
0: सही कह रहे हैं आप भाई जान। आज हम बात करेंगे जी पिंक कलर पे। और साइकोलॉजी ऑफ पिंक कलर पे बात करेंगे, बट फर्स्ट आई एम गोइंग टू प्ले अ ट्रैक एंड आई विल जॉइन यू बैक आफ्टर दिस ट्रैक. जिन लोगों ने मुझे मेरी लाइव पे ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच जी, लेट मी रीड योर नेम्स. और यहाँ पे एक और चीज बताता जाऊं कि आप में से जिसके पास इंटरनेट की एक्सेस नहीं है और वो चाहता है कि उसका पैगाम मेरे तक पहुंचे, तो कोई मसला नहीं है. आप अपने मोबाइल की राइट मैसेज ऑप्शन में जाएंगे, SMS करेंगे, अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है. आपने आपने 101 लिखना है, स्पेस देनी है अपना नाम, और अपने जो दिल करता है पैगाम है वो लिखें और उसको भेज दें 4471 पे. और इसके अलावा आप मुझे कॉल कर सकते हैं 0422111001 0412111001. इस पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं. एंड RJ.DOX डॉक्स पे मेरी लाइव है, और लाइव पे मेरे साथ काफ़ी मैसेजेस थे. आज सबसे पहले सलमान चांडिया साहब ने हमें ज्वाइन किया, असलाम किया, वालेकुम असलाम. फिजा राजपूत आई हैं, थैंक यू वेरी मच. आई एम फाइन जी, बहुत शुक्रिया सलमान साहब. एंड थैंक यू फिजा. पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद जी, बेशक जिंदाबाद. रजा आलम साहब आए हैं, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम सर, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक है, सदा खुश रहें, आप भी खुश रहें. और फिजा राजपूत ने पिंक हार्ट भेजा है. अच्छा जी, BGM इज़ गुड. आई नो BGM इज़ गुड. जिनकी चॉइस है वो बंदा भी बड़ा अच्छा है. मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी गल नहीं जे की, यकीन करो. ये अनवर नकवी साहब हैं, उनकी चॉइस थी, मेरे साथ बैठे थे, वो बड़ा टाइम लगा के उन्होंने ढूंढ के दिया था मुझे. सच ए लवली पर्सन ही इज़, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मुझे गाइड किया था. एंड इसके अलावा बेग जाके साहब है, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच जी. मुमताज़ हुसैन साहब हैं खैरपुर से, बहुत शुक्रिया आप आए एंड आपका मैसेज मिला, आपका शुक्रिया. शाहिद खान साहब हैं, 101 लिख रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद जी. आवाज़ एक ना एक दिन अपने मकसूद तक पहुंच जाती है, सिर्फ आवाज़ लगाना हमारा काम है. आहा, बहुत अच्छी बात की. आई लव यू पाकिस्तान. भाई कभी कभी मैं सोचना जिन्ना ना आई लव यू पाकिस्तान हूँ, अपना नाम ना पाकिस्तान रख ली. सुबह मुझे कॉल ना इंटर्न्स का सुबह चल रहे थे, अभी चल रहे, अगले हफ्ते भी चलेंगे उनके शोज. तो अगले हफ्ते तो खैर सुबह के टाइम पूरे पूरे घंटे की उनकी स्लॉट होगी. शायद शहजाद साहब की कॉल आई.
1: अच्छा, सुबह शो में.
0: हाँ जी, पता नहीं कौन किन के था. उन्हें कहते हैं कि मैं चंडे दी बहुत इज्जत करना.
1: ओके.
0: उन्हें कहा क्यों करते हैं? उन्हें कहा मेरे पास एक रीजन है. उन्होंने रीजन बताया कि मेरे जो परदादा थे ना, परदादा
1: जी जी,
0: उनका नाम चंडा था.
1: अच्छा.
0: अबे सुन लिया था, मेरे कह के निकल गए
1: सर, ये बात ही ऐसी थी. चंडा था.
0: मैं शहजाद साहब सारे कमाल गल्ला ने ताड़े को कहने, मेरे परदादा का नाम चंडा था. मेरे घर में बहुत सारी चीजें आने लग गई. मैं कहूँ जो तो मैं कहना
1: है, एक दफा वो बंदा तजस्सुस में चला जाता है कि ऐसी क्या चीज है.
0: वो ना मुझे लगता है उन्होंने जानबूझ के ऐसी बात की है. अब वो अक्सर इस तरह की बात करते हैं. मेरे दिल में फॉरन कैलकुलेशंस और सिचुएशंस आना शुरू हो गई. अगली दफा मैं कहूंगा ओ यार चंडा सीधा करके ला. अब मेरे दिल में फॉरन आएगा, अच्छा यार ये तो शहजाद के परदादा, शहजाद के परदादा है. नहीं, चंडा साहब को सीधा कर दे.
1: शहजाद साहब के परदादा को सीधा करके लगाओ.
0: परदादा तो खैर अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे. उन्होंने मेरा ख्याल है ऐसी मजाक है, मजाक बात के लिए, लेकिन मजेदार बात,
1: मजेदार बात थी.
0: बट अगर वो कॉल पे आएंगे फिर बाकी गिल्ला में फिर पूछांगा, ऐवें नहीं मजा आएगा. ये तो बड़ी मजेदार बात है, शुक्र लगाएंगे पूरा. आप आए ना जरा. अच्छा जी, हाय, आई कांट वेट फॉर 14 अगस्त स्पेशल कंबाइन शोज 101 वाइब्स. लेट्स सी व्हाट यू गेट ऑन 14th अगस्त. एंड सैयद मुमताज अली जिया, अस्सलाम वालेकुम आरजे डॉक्स. वालेकुम सलाम. आज पिंक कलर पे बात कर रहे हैं, पिंक शर्ट पहन लेते. हाय अल्लाह, मैं अगर पिंक शर्ट पहन लेता ना तो आप लोगों ने छोड़ना नहीं,
1: छोड़ना नहीं था.
0: बट चार है, मैं समझ रहा हूँ. भाई कुछ तो पिंक कलर का पास रखें, पेन ही पकड़ने पिंक की चाह रहे पाए. कुछ पिंक है यहाँ पे, पिंक दे दो मुझे. अच्छा, पीछे से गुलाम मुश्तबा साहब ने सलाम किया, वालेकुम सलाम. ओके चले, यहाँ पे कौन सा ट्रैक सुनना पसंद करेंगे? अच्छा सा गाना बताओ यार, वो चलाते हैं.
1: बताओ आप, कोई भी प्ले करेंगे तो अच्छा ही होगा.
0: प्यार प्यार प्यार खोया दिल करार, नहीं कौन सा लगा यार? कोई फास्ट सा मस्त सा, ये गाना सुनने का बड़ा दिल है, अब भी जहन में आया। एंड यस दिस ट्रैक इज फॉर यू, आई लव दिस ट्रैक, आई लव द वीडियो एंड आई लव द लिरिक्स, मस्त लेवल, नेक्स्ट लेवल है। हाय ओए, आजकल मौसम भी है, होना भी चाहिए वैसे। अदनान ढोल एक कुर्सी थे। हेलो गो, दिस इज आर्थोडॉक्स, आप सुन रहे हैं एफएम 101 लाहौर, और इसके बाद फिर मुलाकात होती है मोहम्मद अली जिया, नाम तो सही बोल दिया, ठीक है। डोंट गो एनीवेयर, आई विल कैच यू बैक आफ्टर दिस ब्यूटीफुल ट्रैक। और आके बात करते हैं पिंक कलर पे, वक्त हो चुका है 10:56।

बैक टू बैक एक और गाना है जी आपके लिए, 10:57 हो गए हैं, एक और गाना सुने इसके बाद वापस आते हैं क्योंकि न्यूज ब्रेक है, देन वी विल स्टार्ट डिस्कशन ऑन पिंक कलर। गाना चस दे रहा है, मैं क्या करूं, लगा

0: जी, वेलकम बैक। वक्त हो चुका है 11:03 और 6 अगस्त 2026 का सेना FM 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं नाइट थेरेपी विद आरजे डॉक्स। और आज है जी जुमेरात का दिन जिसमें हम बात करते हैं साइकोलॉजी ऑफ कलर की, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट पिंक कलर। एहतशाम अली ने ज्वाइन किया, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? और रफीजा कह रही हैं क्या देख के मुस्कुरा रहे हैं बॉस जी, ओए होए ब्लशिंग है ना, मैं भी ब्लश कर रहा, मैं लगता सी मेरे रंग ते नहीं आता ब्लश। मुझे लगता था कि जो पक्के रंग हो ना जी साढ़े आर दे, और जिन्ना मर्जी ब्लश कर लेन पता नहीं चलता। तो बोल क्यों नहीं रहे, तो हंस रहे?
1: सही कह रहे हैं।
0: ओ थैंक यू वेरी मच मोहम्मद अली जिया, आपने कहा कि सॉन्ग वाज अमेजिंग, आपको पसंद आया, कैन यू प्लीज डेडिकेट दैट सॉन्ग टू माय वाइफ सईदा आसिफा बतूल। 7 अगस्त टमोरो विल बी आर सेकंड मैरिज एनिवर्सरी। ऑफ कोर्स जी वो जो गाना लगा था, अगर मैडम आसिफा सुन रही हैं तो ये गाना जो अभी प्ले किया गया था वो आप डेडिकेशन समझे मोहम्मद अली जिया साहब आपके हस्बैंड की तरफ से आपके लिए। और कहते इफ़ यू वांट मी टू प्ले फ्यू लाइंस अगेन, मैं प्ले कर देता हूँ ताकि आपको फील आ जाए। गाना तो फिर बहरहाल मैं एक बार चला चुका हूँ, बार बार नहीं चला सकता मैं।

0: What a beautiful track. Okay, गुलाबी रंग के बारे में आज बात करने जा रहे हैं हम. गुलाबी रंग, हाँ जी मोहसिन, क्या है गुलाबी रंग?
1: सर, ये मोहब्बत, नरमी, शफकत, खूबसूरती की अलामत है.
0: हाय हाय, अच्छा जी,
1: एक लाइन में सारी चीजें बता दी.
0: क्या बात है तुम्हारी, मतलब गुलाबी रंग फिर फुल टाइम रोमांटिक किस्म का माहौल है.
1: एग्जैक्टली
0: हैं,
1: ऐसे ही है.
0: और वैसे ये खास तौर पे खवातीन को ही पसंद.
1: जी जी, ये खवातीन को ज्यादा पसंद,
0: खवातीन को ज्यादा पसंद होता है. मोहब्बत, कंपैशनेट, शफकत,
1: ऐसे ही है.
0: नरमी, मेहरबानी, जज्बाती सुकून, उम्मीद, होप, रोमांस एंड इनोसेंस एंड ऑफ कोर्स केयर, ये सब कुछ एक ही कलर में आ गया. मैं कह रहे हैं फिर ऐसी भी
1: गुलाबी पसंद कर लीजिए.
0: आज से मेरा कलर भी गुलाबी है. आज से मैं भी गुलाबी रंग पसंद करूंगा. मुझे गुलाबी कलर की शर्ट्स ला के दी जाए यार. मौसम को ढूंढना है, बटन डाउन मुझे चाहिए अच्छी सी, मैं भी गुलाबी पहना करूंगा. माज खान ने सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम. और इसके अलावा ख्वाजा इम्तियाज साहब का मैंने यहाँ पे मैसेज एक देखा था, थैंक यू वेरी मच जी. कैसे हैं हमारे बड़े अच्छे आर जे हैं ख्वाजा इम्तियाज साहब. तो आज से आपका कलर भी गुलाबी,
1: मेरा भी गुलाबी,
0: मेरा भी गुलाबी है.
1: डन.
0: जो साढ़े जो रंग वाले ने पा लिया ना गुलाबी, फिर किसी ने पाना नहीं.
1: पाना नहीं.
0: कुड़िया ने एहतजाजन कह रहे हैं आप गुलाबी रंग की इंतहाई तोहीन हो चुकी है. ऐसे ऐसे लोग पहनना शुरू हो गए हैं, अब हम आज के बाद गुलाबी नहीं पहनेंगे. फिर नई रिसर्च आ जाएगी, उन्होंने कहना गुलाबी रंग में ये चीजें नहीं पाई जाती, कलर चॉइसेस चेंज हो गई है ना.
1: हवातीन का जो पसंदीदा कलर है वो चेंज हो जाएगा.
0: हाँ, चेंज हो जाएगा और ऑटोमेटिकली कंपैशन, लव, केयर, होप एंड एवरीथिंग शिफ्ट हो जाएगी,
1: शिफ्ट हो जाएगी,
0: है ना. और वैसे जो रिसर्च है ना, रिसर्च सेज के गुस्से और जो आपका एग्रेशन होता है ना, उसको कम करने में काफी ज्यादा हेल्प देता
1: है
0: पिंक कलर. और इसके अलावा जो है, इट इज ऑल्सो गुड फॉर पीस ऑफ माइंड. पीस ऑफ माइंड के लिए बहुत अच्छा. और फिर इसके अलावा मोहब्बत, लव एंड केयर, इसका बहुत बड़ा सिंबल है ये गुलाबी रंग. तो और इसके अलावा ये मुझे ये भी आप बताएंगे आप कौन सा कलर पसंद करते हैं, और फिर इसके साथ गुलाबी कलर को अगर आप पसंद करते हैं तो किसके साथ कंपैटिबिलिटी इसकी चेक करना चाहेंगे आप, वो भी आपको हम बता सकते हैं. और इसके अलावा पर्सनैलिटी की अगर बात की जाए, सुलेमान भी कह रहे हैं माय फेवरेट कलर इज गुलाबी. शहजादा है मेरा भ्रा है, देखा, इसे भी गुलाबी पसंद है. वैसे जो है ना
1: मुझे लग रहा है ये सारे गुलाबी कहेंगे.
0: बंदे गुलाबी पहने ना, उनके बारे में अच्छी राय कायम नहीं की जाती. मैं कहना मुछा वाले की हो गया, गुलाबी रंग पाई फिर कि तुर पे ने लोग है ना.
1: बिल्कुल ठीक है,
0: क्या ख्याल है आपका? एनीवेज, आप मुझे कॉल कर सकते हैं 04221111 इस पे, वॉट एवर यू कैन आस्क. मेरा कैनवस बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है. कल भी कहा था, हमेशा से कहता आया हूँ, कोई भी बात कर सकते हैं, लेकिन लेकिन एंटी पाकिस्तान नहीं होनी चाहिए.
1: नहीं होनी चाहिए,
0: बस वो आपने बात नहीं करनी. हेलो,
2: अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम अंसारी साहब, कैसे हैं आप?
2: हर बात है जिसकी प्यारी, हैदराबाद से कॉल करते हैं आपका शाहिद.
0: आवाज है, दोबारा बताइए.
2: हर बात है जिसकी प्यारी, हैदराबाद से कॉल करते हैं आपको शाहिद अंसारी.
0: नहीं, हर बात है जिसकी प्यारी, वो सुन रहे हैं कॉल हमारी. आइए.
2: तो सुने आप, जब लैला भी खैरियत से है, मजनू मजे में है.
0: लैला खैरियत से है, मजनू मजे में है.
2: एक तुम मेरे ना हो सके, दुनिया मजे में
0: है. हाय हाय हाय. लैला खैरियत से है, मजनू मजे में है. लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा होगा ना. और वो कहीं आइसलैंड पहुंच गया होगा.
2: एक डॉक्स मेरे ना हो सके, दुनिया मजे में.
0: हाय हाय, सही कह रहे हैं
2: यार. आप ये माशाल्लाह पिंक की बात कर रहे हैं, बाखुदा यकीन कीजिएगा पिंक शर्ट मैंने पहनी हुई है और ग्रे कलर का ट्राउजर.
0: क्या बताना चाह रहे हैं आप?
2: नहीं, मतलब ये
0: नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? बताए
2: अगर आप थोड़ा सा मौका देंगे मुझे और माइंड नहीं कीजिएगा तो थोड़ी सी बात कर लो।
0: हाँ हाँ करेंगे।
2: तो आप बोलते हैं ना कि यार मैंने जरा दुपट्टा तो ला तो यार मैंने दुपट्टा तो ला तो सर जी आप ये तसव्वुर करें कि अभी आपकी शादी नहीं हुई है, एक दो साल बाद शादी हो जाएगी आपकी।
0: अच्छा, दो साल बाद।
2: ठीक है,
1: दो साल बाद।
0: अच्छा ठीक है, दो साल बाद हो जाएगी। ओके,
2: अच्छा पांच दो साल में शादी हो गई, उसका मतलब आगे पांच साल में आपके तीन बच्चे हो गए।
0: अच्छा ठीक है, तीन गैप थोड़ा है, बाहर चले ठीक है,
1: चला लेते।
0: अच्छा चले ठीक है,
2: हो गए। और फिर अल्लाह ना करे उसके बाद आपकी जिंस चेंज हो जाती है।
0: क्या चेंज हो जाती है? ये किस किस्म की आप बात कर रहे वल्ला यार अंसारी साहब, आप मतलब बहाने रहे यार।
2: जैसे अभी आप असद हो, फिर आप बन जाओगे सादिया।
0: क्या बन जाऊंगा?
1: सादिया
2: सादिया।
0: अच्छा ठीक है। अच्छा
2: अच्छा, फिर आप मुझे बताएं कि आप उन तीन बच्चों की अम्मा कहलाओगे या अब्बा?
0: मेरे अंदर मामता तो अभी भी जाग जाती है। मेरे बच्चे कहेंगे हमारे अब्बा की मामता जाग गई, वो गालिब आ गई, अंदर की औरत ने गलबा पा लिया।
1: तो बच्चे क्या
2: बोलेंगे? मेरे अब्बा सलामत रहे।
0: हाँ नहीं, उन्हें तो यही बताना है ना, अब्बा ही हूँ मैं। ये तो मेरे तक ही रहेगा ना, आप सारे मोहल्ले को थोड़ी बताना मैंने।
2: अच्छा, और सर मेरा आपको चैलेंज है, जींस चेंज होने के बाद फिर आप जो अभी जो आप दुपट्टा मांगते हैं ना, इंशाल्लाह फिर दुपट्टा आपके गले में होगा।
0: ओ पाए ना, इंशाल्लाह भी कहीं जा रहे हैं, फोन बंद करें, चले जाए यहाँ से।
2: फिर आप दुपट्टा नहीं ओढ़ेंगे, गले में होगा आपके।
1: ये कहना क्या चाह रहे हैं?
0: इंशाल्लाह। हैं? मतलब इन्होंने कैलकुलेशन करके सात साल बाद आपने ये कह दिया कि मेरे अंदर की औरत जाके गलबा पा जाएगी और फिर आप करें इंशाल्लाह जाए शायद। अंसारी साहब, ये फार्मूला अपने पास ही रखे आप। चाहिए
1: अंसारी साहब का जो भूख तो नहीं लगेगी?
2: नहीं नहीं, मैं अल्लाह का शुक्र है खा पी के एक सेब खा के लेटा हूँ, आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। सर अगर मौका देंगे तो या तो मिल्ली नगमा सुनाऊंगा या गुलाब के बारे में कोई नगमा है वो सुनाऊंगा। जैसा बोले
0: मिल्ली नगमा सुनाइए।
2: तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, इस पर दिल कुर्बान, इस पर जान भी कुर्बान है, अरे इस पर दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, ये मेरे खाइश की जीती जागती तस्वीर है, हजरत इकबाल के ख्वाबों की ये ताबीर है, ये वतन प्यारा वतन सरमाया ए ईमान है, ये वतन प्यारा वतन सरमाया ए ईमान है, इस पर दिल कुर्बान, इस पर जान भी कुर्बान है, तू जो पाकिस्तान है ही मुझो पाकिस्तान है, इन ते दिल कुर्बान, इन ते जान भी कुर्बान है, इन ते दिल कुर्बान, इन ते जान भी कुर्बान है।
0: थैंक यू वेरी मच अंसारी साहब, खुश रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। नहीं हूं तो नहीं मैं करता, आज तो मैं जाकर चिल्ला कटांगा, मैं तो चिल्ला काटूंगा, ये जो सात साल वाला इंशाल्लाह ये पलटा दे, जिसने कहा है उसी की तरफ लौट जाए, वो पिंक शर्ट भी पहनता है, वो ग्रे ट्राउजर के साथ पिंक शर्ट पहनता है, उसे पसंद भी है, उसके अंदर की आदत ज्यादा जाग रही है, वही पे लौटा दिया जाए।
2: सर हमारी एक बहन है पिंडी में, बेनजीर किरमानी, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम।
0: थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। यार ये क्या कर रहा है बंदा,
1: क्या कहना चाह रहे
0: थे? एनीवे जी, वी आर टॉकिंग अबाउट पिंक कलर, पिंक कलर के बारे में, पर्सनालिटी के बारे में बात करते हैं। अंसारी साहब क्या ही मतलब आप दिमाग में डाल गए। मैं मतलब अब अच्छा इस सिचुएशन को इंशाल्लाह कहेंगे, हैं इंशाल्लाह आप ऐसे करेंगे। अच्छा वैसे तो ये मोहब्बत करने वाले होते हैं। जहीर अहमद साहब ने सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप खैरियत से? ऐसे एड्डी मर्दाना आवाज वाली औरत होएगी कोई?
1: ना ना ना ना ना ना ना
0: बच्चे डर जाएंगे, एड्डी मर्दाना आवाज वाली अम्मा है साड़ी। अम्मा ने मुछा भी रखी ने। अम्मा रोज उठ के शेव भी कर दिए, अब बताएंगे क्या? अम्मा ने हमारी मुछा रखी है, हमारी अम्मा रोज उठ के शेव करती है, फिर हमें स्कूल छोड़ने आती है।
1: अम्मा मुछन बाटे भी दिंदी है।
0: अम्मा, हमारी अम्मा हमें घूर के देखती है यार, अपनी मूछों को ऐसे ऐसे घुमाती है ना जब। यार अंसारी साहब क्या यार, अभी कमाल पुटी सिचुएशन।
1: अच्छा शुरू में ना जब उन्होंने बात की ना, तो मैं समझा कोई बहुत सीरियस बात
0: है ना, उनसे ऐसी तवक्को की जा सकती है। अच्छा नरम मिजाज भी होते हैं जी, और इनके बारे में ये कहा जाता है पिंक लवर्स होते हैं इमोशनल भी होते हैं, काफ़ी इमोशनल किस्म के होते हैं, और एंड दे आर लॉयल एंड दे आर काइंड और पॉजिटिव, जो है पॉजिटिव माइंडसेट के लोग होते हैं, और दूसरों को कोशिश करते हैं कि खुश रखें। इसके अलावा इनके पॉइंट्स जो होते हैं, दूसरों की मदद करना तो बिल्कुल पसंद करते हैं, आपको बताया, और केयर गिवर ये बहुत अच्छे होते हैं, रिश्तों की अहमियत जानते हैं और उन्हें बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं, और इसके अलावा ये आउटस्पोकन होते हैं, ये इंट्रोवर्ट नहीं होते, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, अपने इमोशंस का खुल के इजहार करते हैं और माफ़ कर देते हैं बड़ी जल्दी, और दूसरों के जो जज्बात होते हैं उसको भी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। दीज आर द खूबियाँ क्वालिटीज ऑफ पिंक कलर लवर्स के बारे में बात कर रहे हैं हम। एनीवेज आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कोई भी बात, कोई किस्सा, कोई कहानी, कोई पोइट्री, कुछ भी। आप अगर इंटरनेट तक आपकी रसाई नहीं पाकिस्तान में, जहाँ तक मेरी आवाज़ आ रही है, आप मुझे मैसेज कीजिए एंड लेट मी नो यू गाइज आर लिसनिंग। इफ़ यू डोंट वांट टू से एनीथिंग, आप एटलीस्ट ये कह सकते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, आपने 101 लिखना है, स्पेस देनी है, अपना नाम और पैगाम लिखना है और इसको भेज देना 4471 पे, और इसके अलावा कोई भी बात लिख सकते हैं, अगर ये नहीं लिखना तो पाकिस्तान जिंदाबाद ही लिख के भेज दें। आई लव टू रीड योर मैसेजेस। एंड फाती हैं लाहौर से, इस्लाम भाई कैसे हैं, हैप्पी ऑलवेज, या आई एम महर है, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर जी, मैं ठीक हूँ, आप बताओ महर। फातिमा नाम की काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं लड़कियाँ आप गिन। सलाम वालेकुम सलाम, आज 6 अगस्त को मेरी बर्थडे थी, हैप्पी बर्थडे, मुझे विश करें, मैं आज बहुत उदास थी। ये कहो जी बर्थडे,
1: ये कौन सी बर्थडे?
0: यू आर हैप्पी इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, क्लैप योर हैंड्स, है ना। हैप्पी बर्थडे आपको विश करते हैं हम। ओके हेरी गो, कज यू आर अ वेरी रेगुलर लिसनर आप गिन, और आपको विश करते हैं मैं और मौसम। 2-1 Happy birthday to you. 1

0: मार क्यों नहीं पड़ती, पड़ जाती है जहाँ से पढ़नी होती है। तो लेट जाए तो हमारे टीचर करते हैं वो जो आपके साथ हो तो आप लेट ना जाए। मैं इन सारी चीजों को भुगत आया हूँ, यकीन करें अब्बास भाई, किस किस तरह से मार निखाई, बेंच के ऊपर खड़ा कर देना उन्होंने हाथ ऊपर करा के, कभी कुर्सी बना के खड़ा कर देना, कभी टेबल के ऊपर हाथ रखवा के ऊपर से वो छोटा सा उन्होंने फुट्टा पकड़ के वो नाखूनों पे मारना, कभी हाथों पे मारना, और बड़े बड़े मैं इधर मेंशन भी नहीं कर सकता किस किस तरह से। वो छोड़ दो, इज्जत रहनी चाहिए बंदे दी, ऐसे ही इज्जत फिर नहीं ना रहती। तुसी कहना अच्छा असीं इहनू सुनने आ मुझे भी पिंकल बहुत पसंद है। अच्छा हाँ फिर तुम्हारी बर्थडे तो आती रहती है, मेरा ख्याल है हर हर शो में होती है ना। आबिद अली है, मर्दान है इस्लाम, डॉक्टर साहब वालेकुम सलाम। और आप का बिल्कुल मैसेज आ गया जी, बिल्कुल कश्मीर बनेगा पाकिस्तान एंड वी आर विद आर कश्मीरी भाई, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, वी वार वी आर वी विल बी ऑलवेज विद आर कश्मीरी भाई। और मेरी लाइव जो है वो बंद हुई, मैंने दोबारा रीस्टार्ट की है जी। जिन्हें नहीं पता आप लाइव आके भी कमेंट कर सकते हैं, rj.docs लिखेंगे, मेरी लाइव स्ट्रीम आ जाएगी, वहां पे भी आप आके कमेंट कर सकते हैं। नवाल कहती है पिंक कलर का मुझे भी बताना, मुझे भी पसंद है, पाकिस्तान जिंदाबाद, आई लव यू पाकिस्तान। तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है,
1: पाकिस्तान।
0: अच्छा ठीक है। तौसीफ फ्रॉम पिशावर सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं तौसीफ। एक मैसेज आया, सलाम सर, वालेकुम सलाम। तलहा है, कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। आबिद अली साहब आपकी बहुत अच्छी सजेशंस होती हैं और इनको बिल्कुल मैं नोट करता हूँ, जहाँ पे मुमकिन होता है जिस जगह मेंशन करके बताना चाहिए मैं शेयर भी करता हूँ। मेहर कहती हैं लास्ट वेंसडे को मैंने आपके प्रोग्राम नहीं सुन पाई थी लेकिन नेक्स्ट डे एफवी पर सुन लिया था। ये वीक मेरा बहुत बिजी था क्योंकि मेरा भतीजा पैदा हुआ है। बहुत बहुत आपको मुबारक हो,
1: मुबारक हो आपको
0: और अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्स ब्रदर, कैसे हैं आप। मोहसिन भाई आप कैसे हैं।
1: अल्हम्दुलिल्लाह,
0: आई लाइक पिंक कलर बट बल्कि आई लव दिस कलर। जूनी फ्रॉम लाहौर, ओके दैट्स गुड, अच्छी बात है। ओके अगला मैसेज है जी 4471 पे, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जवेरिया है, मैं 14 साल की हूँ एंड आई लव योर शो। जवेरिया आप 14 साल की हैं, आप कौन सी क्लास में हैं और कब से सुन रही हैं मुझे, और थैंक यू वेरी मच फॉर लविंग माई शो। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, मैं मोहम्मद नासिर बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच जी, आप लोगों के मैसेजेस मैंने शामिल किए। ये शाह साहब अगर सुन रहे हैं एसी बंद कर दें, नहीं तो पैर जम जाने दे मेरे। शाह साहब मेरे अंदर का मरासी झाक रहा है, इसको बंद करे। बंद कर दो, ताड़ी मेहरबानी, यहाँ पे गाना लगाते हैं यार, गाने के बाद वापस आके बात करते हैं। Don't go anywhere, I'll catch you back after this track. Life is plan. अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, कैसे हैं। I'm perfectly fine, आप बताइए आप खैरियत से। कवल नाज है पंजाब यूनिवर्सिटी से, मड़ा इसको बंद कर रहे यार, बंद कर दो भाई, बंद कर दो यार, इसका हवा कम करो, बंद करो,
1: हिटर ऑन करो,
0: हिटर ऑन। एनीवे योर नंबर इज 11:23 PM ऑन द डायल एंड 6th of August 2026, दिस इज आवर डॉग्स एंड वी आर टॉकिंग अबाउट पिंक कलर, साइकोलॉजी ऑफ पिंक कलर एंड इनडायरेक्टली वी आर टॉकिंग अबाउट पिंक कलर लवर्स। अन जलेबी, I'll be taking calls after this track. और आगे चलेंगे पिंक कलर के बारे में फर्दर आगे बात करेंगे। Don't go anywhere and you can text me अगर आप अभी सुनना शुरू किया है आपने, कोई बात मेरे से पूछना चाहते हैं यार, कुछ भी हेजिटेट ना किया करें, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपने मोबाइल की राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, अगर इंटरनेट की एक्सेस नहीं है आपने 101 लिखना है, स्पेस देनी है, अपना नाम और पैगाम लिखना है और इसको भेज देना है 4471 पे। थैंक यू फॉर बीइंग देयर फॉर आवर हैप्पीनेस, आई एम ऑलवेज हेयर जी, आई एम ऑलवेज हेयर भाई। कलाम प्ले कर दे आप दा, प्रवीण जी का एंड पे लगा देंगे कलाम जी, टेंशन नहीं लेनी। सलाम सर, आई एम नेहा जानी, बड़ा नाम रखा नेहा जानी।

नहीं, फ्रॉम पिशावर। ऐसा नाम कैसे रखा है, किसने रखा है वैसे? आपको कोई पूरे नाम से पुकारे नेहा जानी, अजीब नहीं लगता? यहाँ आपने खुद रखा है, बहरहाल मैं नेहा ही कहूंगा। डोंट माइंड इट। हाँ, घायल है तेरा दीवाना बेवफा।

0: ऑलराइट जी, वेलकम बैक। वक्त हो चुका है 11:29। आज जी 6 अगस्त 2026 का सन FM 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं नाइट थेरेपी विद आरजे डॉक्स, जिसमें आपका मेरे साथ होता है बुध और जुमेरात की शब 12 बजे तक 10 बजे से। और जुमेरात वाले दिन वी टॉक अबाउट साइकोलॉजी ऑफ कलर एंड वी आर टॉकिंग अबाउट पिंक कलर। बोलते नहीं है यार, तुम चुप कर जाते हो लड़के। कमल नाज ने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग शमसी लिसनर रेडियो क्लब की तरफ से। अफगान जलेबी कितनी टेढ़ी होती है, जलेबी सारी टेढ़ी होती है, अफगान की होता है। उस्मान नारीन है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एफएम का विदाउट वीडियो ही मज़ा आता है, बिल्कुल सही कह रही हैं। आप ऐसा करें, आप ना वीडियो ऑन करके साइड पर रख दें, साइड में थोड़ा थोड़ा सुनती रहे, क्या ख्याल है। और आपका बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत पसंद है, थैंक यू वेरी मच, बहुत टाइम से सुन रही हूँ आपको मैडम, आई एम रियली ऑनर्ड एंड ग्रेटफुल दैट यू आर लिसनिंग, आपका बहुत शुक्रिया। ओके, आई लव पाकिस्तान। सुलेमान चांडी साहब, बहुत शुक्रिया जी, गाना ठीक है ना तो कॉल जी। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम 101 के सभी सुनने वालों को मेरी तरफ से हंसता मुस्कुराता हुआ अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम
1: अच्छा साहब कहूंगी मैं, डॉक्टर ही कहूंगी।
0: हां जी बिल्कुल ठीक है,
1: ठीक है ना,
0: बिल्कुल ठीक है जी।
1: हां जी, मुझे असद बहुत प्यारा लगता है।
0: बहुत शुक्रिया मैडम, आप खैरियत से हैं? ठीक है
1: जी, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और नाम बताने की जरूरत है या नहीं,
0: आप बता दें सारे सुनने वालों के लिए।
1: अच्छा, सबसे पहले तो आपके साथ ज्ञान जिम और
0: मेरे साथ मोहसिन है, मोहसिन मोहसिन
1: मोहसिन। हाँ जी मोहसिन भाई का भी बहुत बहुत अस्सलाम
2: वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम मैडम।
1: हाँ जी, और मुझे शमीम आपी कहते हैं, इखरा लाहौर से बोल रही हूँ।
0: थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग जी मैडम।
1: हाँ जी, तो उसके वजह ये है कि मुझे ना नीला ब्लू कलर बहुत पसंद है, बहुत फेवरेट है।
0: ओके,
1: बल्कि मेरे पास ना एक ही कलर में कितने कितने सूट हैं जो मैंने एक ही कलर में बनाए हुए हैं।
0: ओके बिल्कुल ठीक है,
1: फेवरेट है मेरा पसंदीदा।
0: आपका वो खवातीन के बारे में एक बड़ी बात मशहूर है, क्या आप समझती हैं वो फार्मूला आप पे आता है?
1: कौन सी बात है?
0: वो कहते हैं खवातीन के बारे में ना कि उनके पास पहनने के लिए कपड़े बहुत कम होते हैं और अलमारी में कपड़े रखने की जगह भी नहीं होती।
2: पहनने को कपड़े नहीं, रखने को जगह नहीं।
1: नहीं ये तो बात है, आज इस वक्त में मौजूदा दौर में ये ऐसा नहीं हो सकता कि कपड़े ना हो खवातीन।
0: नहीं ये तो बात बनी है ना कि वो कहती रहती है मेरे पास तो कपड़े नहीं, मेरे पास तो कपड़े नहीं है, लेकिन अलमारी में जगह भी नहीं होती।
1: ये बस झूठ है सब। आजकल तो मैं कहती हूँ पहले अच्छे भले होते हैं, तो अब देखें किसी की शादी या कोई ऐसा कोई मौका खुशी आ जाए तो वहाँ पर जाए ना, तो पता क्या कहते हैं घर वाले, ये तो पहले सबने देखे हमने ये नहीं पहने।
0: नहीं नहीं ये घर वाले नहीं कहते,
2: घर वाले
0: नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। आप ये कहें खवातीन आपस में बात करती है।
1: ये तो सबने पहले देखे,
0: पहले भी देखे। मैं तो हैरान होता हूँ, हम तो एक ही शर्ट बार बार पहन के जाई जाते हैं, हम तो इस चीज को बुरा नहीं बनाते।
1: और इतने कीमती वो सूट होते हैं, इतने तुम पे काम भी होता है, लेकिन वो जो बस एक बार पहन लो जी, क्या ये नहीं, ये तो सबने पहले देखे हुए हमने, तो दोबारा पहनने। तो ये जो है ये झूठ है कि खवातीन के पास कपड़े नहीं है, तो बहुत ज्यादा कपड़े माशाल्लाह से मेरे लोगों को बस कपड़ों के सिवा और काम ही क्या है।
0: ओके
1: बहुत अच्छा सा, मैं कहते ज्ञान दिन भी आपके साथ बैठे हैं।
0: नहीं ज़िया मेरे साथ नहीं है, और अभी 14 अगस्त के शायद शोज में हम इकट्ठे हों, और बड़े दिनों से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम दोबारा से अपने कंबाइन शो को स्टार्ट करें।
1: आज दिन को उन्होंने किया है,
0: दिन को किया है जी, क्या बात है ज़िया अंजुम साहब की, बड़े आदमी है, टॉप ऑफ द टॉप आरजे
1: जी। वो ना दो लोगों ने मिलकर कंबाइन शो किया था,
0: रहमान ने और ज़िया ने।
1: तो आप लोगों के दोनों की जो नोक जोक जो है ना कर करके, आप तो हंस रहे हैं, मैं इधर अकेली बैठी हंस रही हंस हंस के, इतनी अच्छी बातें आप लोग कर रहे हैं। यही है कि देखिए कुछ लोगों के अगर 2 घंटे में चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाए, खुशी मिल जाए आपकी बातों से, तो ये भी एक नेकियों में नेकी लिखी जाएगी।
0: अल्लाह करे जी, मैनू तो लग रहा चित्र पहने ने मैनू। अच्छा तू सी ना गुस्से में आके ना तेनू मैं मारा 100 ते गिना 1। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਲਓ, ਪੂਰੀ ਸੌ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਰਨੀ ਹੈ, ਮਾਰਨੀ ਸੌ ਹੈ।
1: ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੋਲ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗੀ
0: ਜੀ, ਬੋਲੀਏ ਬੋਲੀਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਲੀਏ, ਬੋਲੇ ਬੋਲੇ ਬੋਲੇ।
1: इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं, सांझी अपनी खुशियाँ और गम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले, क्योंकि 14 अगस्त आ रही है, क्योंकि मेरी बहुत काल लगी।
0: बिल्कुल ठीक, जबरदस्त जबरदस्त।
1: नहीं मैं गुनगुनाऊंगी, बस इतना ही काफी है।
0: बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया मैडम, आपने कॉल की जी, आई एम रियली वेरी ऑनर्ड जी।
1: सब सुनने वालों को जहाँ जहाँ तक आपकी और मेरी आवाज आ रही है, बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी मैडम शमीम थी, थैंक यू वेरी मच जी, आपका कॉल मिली है, एंड आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल। और जिन लोगों ने मुझे ज्वाइन किया, गुलाब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया। बाबर अयूब खान, क्या बात है, मेरा बड़ा प्यारा अच्छा भाई है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग जी। बाबर अयूब खान ने ज्वाइन किया है। सारा अली जई हेलो कह रही हैं, हाई हाउ आर यू, एंड सलाम किया गुलाब ने, वालेकुम अस्सलाम। मरीना बिलाल आई हैं जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड उसके अलावा हेलो हाय चल रहे हैं, आप खुद बहुत नाइस हैं, आपको लगता है, बहुत शुक्रिया। मैं मुत्तफिक हूँ आपकी बात से, और आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि वाकई आपके पास इतने कपड़े होते हैं। सारा अली जी कहती है, मैं हर सीज़न में 4 से 5 बना लेती हूँ, और गर्मी सर्दी के इतने तो बनते हैं। ये आप सारी ये काम क्यों नहीं करती हैं? अगले सीज़न तो आप लोगों ने पहनना नहीं होता, अगली दफ़ा ना आपने जब नए सूट लेने हैं ना पुराने, आपने सारे कुरियर करने हैं, कुरियर करने हैं आरजे डॉक्स के नाम पे, ठीक है, यहाँ पे आपने सारे मुझे भेज देने हैं। ताड़ी बड़ी मेहरबानी है, मैं सारों की ना किसी की टी शर्ट, किसी का अपने शॉर्ट है,
2: हाँ।
0: किसी की कुछ कुछ ना कुछ बनवा ही लूंगा। मैं कह रहा हूँ मेरी मौज हो जाएगी, आपने भेज देना, मैं सारे सूटों का ना कुछ अच्छा इस्तेमाल कर लूंगा। इतने आप लोगों के पास स्पेस पड़ी बन जाएगी ना, वरना आपने तो पहनने नहीं, ऐसे ही पड़े रह जाएंगे। क्या ख्याल है?
2: नहीं नहीं स्पेस बनानी जरूरी है। हाँ,
0: बाबर अयूब ने हमें ज्वाइन किया, आज का रंग पिंक है, मतलब आज थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी केयर, थोड़ा सुकून बांटने का दिन है। हाँ सही कह रहे हो, अच्छा लगता है, तुम भी पिंक पहनो ना, अच्छा लगेगा तुम पे भी लड़के, मैं सही कह रहा हूँ। अच्छा पिंक कलर के हमने बातें कर ली और खूबियाँ भी बयान कर ली
2: जी।
0: और हम थोड़ा सा आगे इनकी मजबूत पॉइंट्स जो हैं उन पे भी हमने बात कर ली। अभी हम किस चीज़ पे बात कर रहे हैं इनके बारे में, एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट देयर वीकनेस, स्ट्रेंथ पे भी बात कर ली हमने
2: जी जी।
0: वीकनेस के बारे में आगे बढ़ते हैं, और इनकी पसंद नापसंद के बारे में भी बढ़ते हैं। कभी कभी जो पिंक लवर्स होते हैं ना, ये जरूरत से ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं अगर आप इन्हें देखें, और लोगों को खुश करने की कोशिश में खुद को अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, मतलब खुद को निगलेक्ट कर देते हैं, और तनकीद से बड़ी जल्दी हर्ट हो जाते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव होते हैं, और बाज़ औक़ात जो है रियलिटी को इग्नोर करके अपने इमोशंस के ऊपर बेस्ड डिसीजन करते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का इन्हें सामना करना पड़ जाता है। और इनको पसंद क्या होता है? हाय फूल इन्हें बहुत पसंद है। अगर आपकी जिंदगी में कोई है जिसे पिंक कलर पसंद है, तो फूल लें, फूल पिंक रोज भी चलेगा, है ना, पिंक रोज भी अच्छा लगेगा, पिंक कलर का रोज, और खुशबुएं भी पसंद है ना, खूबसूरत चीजें। हाँ इतने आके असी रह जाने अपा, इतने साडा दोवे का कोई काम
2: कोई काम नहीं,
0: मतलब इसीलिए शायद हमारे इर्द गिर्द को पिंक लवर नहीं है। आपके है?
2: नहीं
0: नहीं क्योंकि उन्हें खूबसूरत लोग पसंद होते हैं ना।
2: सही है, सही कह रहे हैं आप,
0: है ना, इसलिए हमारे इर्द गिर्द को पिंक लवर नहीं है ना, क्या यार हमें तो नहीं अफोर्ड कर सकते। वो बात समझ आती है, आज मैं समझ आ रही है मेरे इर्द गिर्द को पिंक लवर क्यों नहीं है। ओके आई गॉट इट, उनकी मौसीकी बड़ी अच्छी लगती है, फैमिली टाइम देना, एंड रोमांटिक जेस्चर्स, ओ माय गॉड, और इमोशनल कन्वर्सेशन भी बहुत पसंद होती है। ओए होए होए होए क्या बात है, थैंक यू वेरी मच जी। अली जिया को पसंद आया, थैंक यू वेरी मच फॉर शो। सारा अली जी कहती है अगले सीजन में पिछले साल वाले कपड़े मैं घर में पहन लेती हूँ। यार ये तो बड़ा गलत बात है ना यार, ये तो गलत बात है। आप गरीबों का भी तो कुछ ख्याल करना चाहिए, हम जैसे गरीबों का भी तो ख्याल करें।
2: कोरियर करवाने के लिए कहा था, वो बता दिया कि
0: हाँ ये तो बहुत बुरी बात है ना यार। अब पहली दफा अगर कह ही दिया मैंने कि यार आप मुझे भेज दें, तो आपने साथ ही ये कह दिया कि नहीं नहीं
2: वो इस्तेमाल हो जाते हैं
0: ना, इस्तेमाल हो जाते हैं, नहीं भेजूंगी। अली चांडियो साहब पाकिस्तान के झंडा भेज रहे हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ब्यूटीफुल मैसेजेस एंड नाइस शो गोइंग, थैंक यू वेरी मच। एंड कोई ना कोई हो किसी, किस को दें पिंक, मैं क्या ही कहूँ, उस पर कॉल ले रहा हूँ मैं। हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? हेलो जी जी, वालेकुम अस्सलाम,
3: कैसे आप?
0: मैं अच्छा हूँ, यकीन करें। शर्म आ गई?
3: नहीं।
0: अच्छा फिर यकीन नहीं आया मेरी बात? हेलो
3: जी
0: जी, बताएं जी मैडम, पिज्जा बर्गर क्या चीज लेंगी, ऑर्डर करें प्लीज। हेलो हेलो जी, बताएं, बोल लो नहीं बोल रहा,
3: मुझे कुछ भी ऑर्डर नहीं करने
0: हैं।
3: तो कुछ भी ऑर्डर नहीं करना,
0: कुछ ऑर्डर नहीं करना। हाँ चलें, फिर बताइए आपने कॉल किस लिए की है, खामोश रहने के लिए की है?
3: नहीं।
0: तो बोले ना कुछ।
2: हेलो, आवाज आ रही है आपको हमारी?
0: गलती से तो नहीं कॉल मिला दी, किसी और को मिलानी थी।
2: मैडम क्या कहना चाह रही हैं आप?
0: ये लड़कियां नॉर्मली करती हैं, जब अपने बंदों से लड़ी होती है ना, फोन करके खामोश हो जाती हैं। हेलो, फिर बाद में बोलती नहीं है।
3: आपका शो बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा, थैंक यू वेरी मच। कुड़ियां नॉर्मली ऐसे ही करती हैं, फोन करके ना चुप, बंदा बोलता रहता है। हाँ जी, बोल नहीं रही। मैं नाराज हूँ आपसे, पहले मुझे
2: जी जी मैडम अपना नाम बताइएगा।
0: दुआ अली कहाँ से बोल रही है?
2: चकवाल से।
0: चकवाल से बात कर रही है, चकवाल में मौसम कैसा?
3: चकवाल का मौसम बहुत अच्छा है,
0: आपकी तरह बहुत अच्छा है। हाँ हाँ हाँ, यकीनन बहुत खामोश होगा। हमारे इधर तो बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, बारिश हो रही है, यकीन करें यहाँ का मौसम हमारी तरह है।
3: हाँ हाँ, बहुत खूबसूरत है,
0: थोड़ी
3: थोड़ी बारिश हुई। अभी भी बादल।
0: आपको कलर कौन सा पसंद है?
3: मुझे ब्लैक कलर पसंद।
2: ब्लैक?
0: हाँ, मुझसे ना आप बात करें।
3: पहले पहले पहले मुझे बहुत ज्यादा पिंक कलर पसंद था।
2: ओके,
3: मैं पता नहीं क्यों आप मुझे पिंक कलर इतना अच्छा नहीं लगता।
2: अब आपको पिंक कलर अच्छा नहीं लगता? बिल्कुल ठीक है मैडम,
3: और कलर अच्छा लगता।
2: बिल्कुल ठीक है, और कुछ कहना चाहेंगे आप?
3: और आपका शो बहुत अच्छा होता है।
2: थैंक यू सो मच।
3: कॉल नहीं मिलती है।
2: ठीक है मैडम,
0: आज मिल गई है आपकी कॉल, जबरदस्त हो गया, दोबारा भी कॉल कीजिएगा।
3: ओके,
0: थैंक यू वेरी मच।
3: हेलो
0: जी जी,
3: अगर हो सके तो काले सूट के बारे में कोई सॉन्ग लगा दीजिए।
0: हाँ मैं अभी लगाता हूँ।
3: थैंक यू।
0: हाँ जी, ओके, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। इतनी खामोशी, इतनी खामोशी,
2: ये है? मुझे लगता है कहीं और कॉल कर
0: रही मतलब कॉल कर रही होंगी अभी किसी। सारा अली जई ने कहा आपको बड़ा तजुर्बा, मेरे पास बड़ा तजुर्बा। यकीन करें, मैं पैदा हुआ था ना जी, जब मुझे नर्स ने उठाया था, मुझे वो भी याद है, कितनी प्यारी थी यार। शी वाज सो प्रीटी यार, उसके दाएं गाल पे तिल भी था, हा हा हा, उसके लंबे लंबे बाल थे, चिट्टे रंग का दुपट्टा सी उदा।
2: वो तो उनका यूनिफॉर्म था ना,
0: दफे है तो सीन मुझे याद है मुझे याद है, मैं नहीं भूला। मुझे ये भी याद है जब मैं पहले दिन अपनी क्लास में गया था, स्कूल चेंज किया, ऐसे दोस्त है पुत्र के, आई वॉज इन द फर्स्ट क्लास, मैंने स्कूल चेंज किया और मेरी अम्मा मुझे छोड़ के आई थी, और राइट साइड पे जो थी ना, जो रो थी उसके अंदर मुझे जाकर ना सेकंड लास्ट में जो दरमियान वाली थी ना चेयर, उसके ऊपर बिठाया था मेरी अम्मा ने। मुझे ये भी याद है कि राइट साइड पे कौन कौन बैठा हुआ था, मैंने ये भी याद है मेरे मोहल्ले दियाँ कुड़ियाँ भी सामने थे यार मुझे याद है यार मैं सारा याद है,
2: बड़ी अच्छी मेमोरी है आपकी,
0: है ना, आई स्टिल रिमेम्बर। अच्छा जी, 447 के मैसेजेस पढ़ के फेसबुक की तरफ बढ़ रहा हूँ जी। पाकिस्तान जिंदाबाद, बुल्ला पाकिस्तान। जूनी ने मैसेज किया, उज़्मा जहाज है लाहौर से इस्लाम किया, और कह रही है आरजे डॉक्स वेरी नाइस शो, वेल डन, अल्लाह ब्लेस यू, आमीन, थैंक यू वेरी मच, पाकिस्तान जिंदाबाद। इंतजार सॉन्ग लगा दें प्लीज। अच्छा जी, आबिद अली मर्दान से ईरानी सॉन्ग प्ले कीजिए, अगली दफा शादी को अच्छा सा ईरानी सॉन्ग ढूंढ के रखना है, हमने वो भी लगाना है, ऐसे करते हैं यार, अच्छी सजेशन है। जिसको भुलाने के लिए रुख मस्जिद का किया था मैंने, जब दुआ होने लगी काबिले कबूल तो फिर उसी को मांग बैठे। मिर्जा नईम बेगलावरी जी, क्या बात है, छा गए आप, एम तलहा फ्रॉम लाहौर, नाइस शो सर, थैंक यू वेरी मच जी। फराह अफजाल साहिबा आई हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग जी। एंड नॉटी आज आई एम वेरी नॉटी, ये क्या नाम लिखा, फाज फ्रॉम लाहौर, अस्सलाम वालेकुम आरजे डॉक्स, वालेकुम सलाम, मैं आपको पिछले एक साल से सुन रहा हूँ, आपका शो FM 101 का सबसे बेहतरीन शो है, आपकी मेहरबानी है, आपको लगता है, अगर आपसे मिलना हो तो कैसे मुलाकात हो सकती है, मैं तो जुमेरात वाले दिन मिल लेता हूँ, कोई भी आए, नो इशू, आप विजिट कर सकते हैं जुमेरात वाले दिन, आई एम ऑलवेज हियर टू सी यू एंड मीट यू गाइस, टेंशन ही कोई नहीं, आप आ जाएं मैं मुलाकात कर लूँगा। और अभी हम पिंक कलर के बारे में बात कंप्लीट कर रहे हैं
2: जी जी,
0: यहाँ पे जो खूबियाँ बयान कर जाते हैं ना, और इनको क्या पसंद है, और उसको कंप्लीट करके नापसंद की तरफ बढ़ते हैं, फिर उसके बाद एक गाना लगाएं, फिर आके हम कंपैटिबिलिटी पे बात करते हैं।
2: बिल्कुल ठीक,
0: हंस लो लाइव पे, सारे हंसी जा रही है, आपको बड़ा याद है, आपको लड़कियां याद रह जाती हैं, शक्लें याद रह जाती हैं, अपनी क्लास फेलोज के नाम नहीं याद, नहीं मुझे बिल्कुल नहीं, मैंने याद नहीं, मैं दस दवा मैं क्यों बताऊं, अगली बच्चों वाली हो गई है नवा कट्टा खोल जाए मैं नहीं बताऊंगा। क्या ना पसंद होता है इन्हें, मतलब आप व्हेन यू आर इनसेंसिटिव दे डोंट लाइक इट, और इसके अलावा इन्हें झूठ नहीं पसंद, वैसे झूठ यूनिवर्सली किसी को नहीं पसंद, बोलना सारा को पसंद है, सुनना किसी को नहीं पसंद,
2: नहीं पसंद,
0: और डिच करना, धोखा देना इनको नहीं पसंद, वो भी सारों को नहीं पसंद, मुझे भी नहीं पसंद होता, और सख्त लहजा इनको नहीं पसंद, इफ यू आर टॉकिंग टू देम इन्हें आपने डांटना भी बड़े प्यार से, कितनी गलत बात कहती हो तुम्हें, तो शर्म नहीं आती, बड़े प्यार से डांटना, आपने सख्त लहजे में नहीं डांटना, ये क्या किया तुमने, ऐसे नहीं कहना, आपने कहना ये क्या कर, हाँ नहीं, आपने गुस्से से डांटना, आपने कहना ये क्या कर रही हैं आप, ऐसे मत करें, या ये क्या कर रहे हैं आप, जो बंदे हैं उन्हें पे उन्हें भी इस तरह हैंडल करना। अच्छा, और इंसल्ट किए जा रहा बिल्कुल नहीं पसंद, टॉक्सिक किस्म के रवैये इन्हें नहीं पसंद, और बेवफाई तो किसी को नहीं पसंद, और लव साइकोलॉजी के बारे में बात की जाए, इनके लिए बहुत अहम होता है इमोशनल सिक्योरिटी एंड लॉयल्टी, वो ऐसे पार्टनर की तलाश में होते हैं जो इन्हें अहमियत दे और रिस्पेक्ट दे, ओके, दिस इज व्हाट दे वांट ऑलवेज। एंड मैं जाते जाते लाहौर वाले चैनल के मैसेजेस पढ़ जाता हूँ जी, मरीना बिलाल ने सलाम किया, वालेकुम सलाम, उस्मान बिन इमदाद बड़े अरसे के बाद आए हैं, आप जद्दा से सुन रहे हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव, यार आते हुए खजूरें ले आना भाई, बड़े अरसे से कह रहा हूँ, अब ना लेके आए ना तो लड़ाई है ताड़ी मेरी,
2: ये तो हर शो में कहते हैं
0: ना,
2: रिमाइंड दे रहे हैं उनको।
0: पीरजादा गुलाम मुश्तबा शाह साहब हैं, 12 कोस से सुनते, बड़ी अच्छी पोइट्री भेजते हैं, मोहब्बतों में कुछ ऐसे भी हाल होते हैं, खफा हूँ जिनसे उन्हीं के ख्याल होते हैं, अच्छा है। मचलते रहते हैं जहनों में वसवसों की तरह, हसीन लोग भी जान का बबाल होते हैं, बस एक तू ही सबब तो नहीं उदासी का, तरह तरह के दिलों को मलाल होते हैं। सया रात में जलते हैं जुगनुओं की तरह, दिलों के जख्म भी मुश्तबा कमाल होते हैं। क्या बात है, छागे भाई छागे। ओके आज मिल गए, राव हमजा कह रहे हैं आज मिल गए ऑनलाइन, ढूंढ लिया हमने, बड़े शार हैं आप हैं। नजीर खोसो साहब हैं, हमारे फयाज साहब सुन रही हैं, खुश आमदीद कहा, थैंक यू वेरी मच। इस्लाम की अकबर खान साहब कराची से सुनते हैं, बड़े अच्छे लिसनर हैं, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया, आप सुन रहे हैं। और अहमदुल्ला चौधरी साहब कहते हैं दुआओं के फूल आपके नाम करते हैं, आपकी मुस्कुराहटों को सलाम करते हैं, बन जाए आपकी ज़िंदगी नेमतों से जन्नत, ये दुआ हम सुबह शाम करते हैं, बहुत शुक्रिया। मैं ठीक हूँ जी, बहुत शुक्रिया जी। किंग फजल काकड़ साहब हैं, अली अब्बास क्या बात है सर, थैंक यू वेरी मच, क्या बात है, पाकिस्तान जिंदाबाद। रोमान अरशद हैं, सलाम टू ऑल लिसनर एंड आर द डॉग्स, भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं, ठीक हैं, मिजाज अच्छे हैं, घर बार सब खैरियत है। बीजीएम अली अब्बास ने पसंद किया, थैंक यू वेरी मच जी। और इसके अलावा हमारे साथ मोहम्मद तुफैल अहमद तनोली हैं, अपनी शायरी उनवान जादू, आपकी अपनी शायरी है, पढ़े जाता हूं। जो देखता हूं अहले अहबाब को वो नजर नहीं आता, मुझे गुनाह में डाल कर भी उसे सबर नहीं आता। वो लिखता है क्यों अब मेरी सजा पर उनवान, वो अपने इस अमल से अब क्यों सुधर नहीं जाता। कोई आए तो निकाले मुझे गुनाहों के गढ़ से, बड़ी मुसीबत में हूं जादू का असर नहीं जाता।
2: अच्छा क्या बात है, क्या बात है।
0: अब ना जाने जन्नती भाई दोजख का रुख करे, दुनिया में जिसे अपने सिवा दूसरा नजर नहीं आता। बहुत अच्छा है यार, बहुत अच्छा है। 2019 में आपने लिखी और वक्त था, आपने 3:53 पे लिखी है, ये दोपहर के वक्त इतवार के रोज। सर छा गए आप, थैंक यू वेरी मच, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, आई लव दैट। एंड अहमदुल्ला चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया जी, एशमसी लिसनर क्लब की तरफ से आप सुनते हैं, थैंक यू वेरी मच। और इसके अलावा रोमान साहब ने भी इतने नाम टैग किए, बहुत शुक्रिया जी। एंड अहमदुल्ला चौधरी साहब, एंड उसके अलावा और कौन है हमारे साथ यहाँ पे, लेट मी सी, को मिस ना हो जाए नाम जी। और अहमदुल्ला चौधरी साहब बड़े अच्छे हमारे लिसनर है, पसंद करते हैं हर दफ़ा, थैंक यू वेरी मच फॉर लविंग एंड फॉर ऑल दोस ब्यूटीफुल मैसेजेस। नाजिया जुल्फिकार ने हमें इस्लामाबाद वाली पोस्ट पर मैसेज किया है, इस्लाम आर डॉग्स वेलकम फ्रॉम लाहौर, थैंक यू वेरी मच, आप खैरियत से हैं, ठीक हैं। हामिद चांद साहब हैं कुरंगी नंबर 2 कराची से सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। और शो हमेशा की तरह है, पसंद कर रहे हैं रुमान साहब, बहुत शुक्रिया। जलील मस्तोई साहब ने सलाम किया, रहीम यार खान से सुनते हैं, थैंक यू वेरी मच। और 4471 पे अभी मैसेजेस आए हैं, वो भी शामिल करते हैं। गाना यहाँ पे मैं प्ले करना चाह रहा हूँ लेकिन कौन सा गाना करूँगा प्ले, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। बताओ ना यार कौन सा गाना लगाएं, बता लें यार। अच्छा चलो फिर लब लेने हैं, चलो फिर एनजी कार लेने हैं अपन, हैं जी, यही ला दीजिए फिर,
2: यही चलाते हैं।
0: कौन सा,
2: ये जो आप चलाने लगे,
0: काला जोड़ा पा साड़ी फरमाइश ते, यही ला दीजिए,
2: यही चलाते
0: हैं। ओके, रंग कदे नहीं पाया पाए ना, गाना है कितने, ये तो बड़े बंदे आना है, ओरिजिनल वाला खेड़ा है। मैं चलाऊंगा कौन सा, सही वाला ना चला तो मसला ही ना ना हो जाए यार, बताओ ना भाई कौन सा है। ओके आई गेस आई गॉट इट, ओके देखते हैं यही है। ओए होए होए वो वीडियो सारी कुड़ियों ने काले पाए ने, आहो ये जान दे हो, इट्स 11:53। इस साज का नाम तो बताते जाओ, इस साज का। ओके सोमरो सोमरो हैदराबाद में, अच्छा आपके मैसेज पढ़ता हूँ, क्या हैदराबाद में हुआ है। एनीवेज एंजॉय द नंबर, डोंट गो एनीवेयर, आई विल कैच यू बैक आफ्टर दिस ट्रैक व्हेन आई लीव।

0: अरे जी, वेलकम बैक। वक्त हो चुका है 11:57 और अभी यहाँ पे 12 बजे बिल्कुल मेरा आपके साथ जो है ना नेशनल लेवल पर रब्ता मुनकता होने वाला है। तो मैंने कहा इससे पहले पहले मैं आपसे बात मुकम्मल करता जाऊँ। सारा अली जी कह रही हैं ओल्ड एवर रीमिक्स किया किसी ने, आप यहाँ पे लिंक भी मुझे शेयर करें। आई विल लिसन टू दैट सॉन्ग एज वेल। फर्स्ट पिंक कलर की अगर हम बात मुकम्मल करते जाते हैं, इनकी मोस्टली अट्रैक्शन रिसर्च के अकॉर्डिंगली किन कलर लवर्स की तरफ होती है, दैट इज वाइट, ब्लू, ग्रीन, पर्पल एंड रेड। ये 5 रंग हैं जिनकी तरफ इनकी जो है ना अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। और अगर कंपैटिबिलिटी की बात करें जी, पिंक प्लस रेड की कंपैटिबिलिटी 91% है और इनका बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का रोमांटिक किस्म का बॉन्ड बनता है। और रेड क्योंकि डोमिनेट करता है, थोड़ा एग्रेसिव होता है, पिंक जो है सेंसिटिव होता है, तो इस वजह से दोनों थोड़ा सा इस कन्फ्लिक्ट में आ सकते हैं। वाइट के साथ 90% कंपैटिबिलिटी है और इशू जो होता है वो सेंसिटिविटी की वजह से होता है। वाइट काफ़ी पीस गोइंग, ज़्यादा उस तरह से खुल के नहीं एक्सप्रेसिव होते जितना पिंक कलर एक्सप्रेसिव होता है। पिंक की अगर बात करें पर्पल के साथ 89% कंपैटिबिलिटी है, मूड स्विंग्स का बहुत ज़्यादा इशू आने का चांस होता है। ब्लू के साथ कंपैटिबिलिटी अगर चेक करें पिंक की तो दैट इज 86% और बड़ा अच्छा रिलेशनशिप इनका डेवलप हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मसला ये होता है कि ब्लू क्योंकि कम इजहार करता है, प्रोफेशनल अप्रोच प्रैक्टिकल है, पिंक के साथ वही प्रॉब्लम कि लेस एक्सप्रेसिव होने वाली। ग्रीन जो है ग्रीन के साथ कंपैटिबिलिटी 85% है और दोनों अपनी ज़रूरत से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखते हैं, ये एक बड़ा इशू है। ब्लैक के साथ कंपैटिबिलिटी 80% है और ऑपोजिट अट्रैक्शन इज रियली गुड और ब्लैक इजहार पसंद करता है और पिंक कभी कभी रिवर्ट हो जाता, थोड़ा टिल्ला पड़ जाता है इजहार करने में ना। और ऑरेंज के साथ 79% है और दोनों की सेंसिटिविटी वाली जो है डिफरेंट डायरेक्शन में टकराव आने के चांसेस होते हैं। येलो के साथ 82% है और गैर संजीदा और बेफिक्री की वजह से येलो के साथ कन्फ्लिक्ट आ सकता है। ओवरऑल द पिंक कलर इज रियली गुड और हमेशा खुश और रोमानवी साइड नहीं होती। ऑलवेज रिमेंबर दिस के पिंक कलर लवर हर वक्त रोमांटिक हैं, हैप्पी हैप्पी आपको नजर आएंगे। इनके अंदर से जो है ना मोहब्बत और तवज्जो की कभी कभी आपको कमी भी महसूस होती है, दूसरों का ख्याल रखते रखते खुद को भूल जाते हैं, इस वजह से इस तरह की थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको इनकी तरफ से देखने को मिल सकती है। इट इज़ जस्ट लाइक दिस। और मैं जाते जाते मैसेजेस 4471 के मैसेज पढ़ जाता हूँ। मेहर कहती है इंडियन गाना आपने चलाया नहीं है, पाकिस्तानी सिंगर का है, वो हम चला सकते हैं, वो जहाँ पे भी गाया हो वो हमारा सिंगर है, वो हम चला सकते हैं। फातिमा कहती है डॉक्स भाई जया अंजुम को बोले आई मिस यू, आप वेडनेसडे को क्यों नहीं आए, तो आप खुद क्यों नहीं बोलती उन्हें। लाहौर सना से अस्सलाम वालेकुम आरजे कैसे हैं आप, मुझे पिंक कलर पसंद है, कोई मैडम नूरजहां का कोई मिली नगमा लगा दें। अच्छा फिर आगे कौन है जी, मुझे अपनी एक बात समझ नहीं आती, मुझे जिस जो कलर अच्छा लगता है मैं वो बहुत कम यूज़ करती हूँ, किसी ख़ास मौका पर पहनती हूँ। अच्छी बात है। आसमा है जब खूबी वो खूबसूरत शख्स, जब कभी वो खूबसूरत शख्स आईना देखता है मुझे डर है खुद को नज़र ना लगा बैठे। अल्लाह पाक आपकी स्माइल सलामत रखे, हमेशा खुश रहें। पिंक कलर पसंद है, आई लव यू असद इब्रार, मेरा चांद दीवानी आपकी। बड़ी देर से मैसेज किया आज आपने, थैंक यू एरिमा जी, अपना बहुत ज़रा ख्याल रखें। और परवेज़ अहमद साहब इस्लामाबाद से पाकिस्तान आर्मी से आज डॉक्स, लव यू ब्रो, लव यू टू, शो इज़ नाइस, मैं बहुत शौक से सुनता हूँ सर, थैंक यू वेरी मच। ज़ारा है लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम आज डॉक्स कैसे हैं आप, मैं ठीक हूँ। और आतिफ असलम का रफ्तार रफ्तार गाना लगा दें, पिंक का ब्लू के साथ मैंने बता दिया क्या परसेंटेज होती है और आपने मेरा ख्याल है यहाँ पे सुन ली होगी पिंक की ब्लू के साथ परसेंटेज। बहरहाल जी अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दिस इज़ आज़े डॉक्स, 12:01 हो गए हैं, इट्स टाइम टू लीव। की ख्याल है, चलिए फाइन, यहाँ आपको देखना है किसी कॉल शॉल लेनी है आपने जाते जाते। हेलो
1: हेलो,
0: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है?
0: अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप कौन, कौन है हमारे साथ?
1: हमारे साथ मोहम्मद मलूक शाह दरबार अल्लाह जिला खानवाल।
0: ओके, बिल्कुल ठीक है, कुछ कहना चाहेंगे?
1: हाँ जी, प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा होता है, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे।
0: सर थैंक यू,
1: और आपकी लिखी लिखी आवाज होती है, बहुत दिल को सुकून आ जाता है, आपकी आवाज सुन के बहुत दिल खुश होता है।
0: सर बड़ी मेहरबानी, आपकी मोहब्बत है सर
1: जी। अल्लाह पाक सलामत रखे तमाम सुनने वालों को, मेरा सलाम हो।
0: वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।
1: बस याद किया करें आप
0: जी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच,
1: थैंक यू,
0: अल्लाह। जी प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, फटाफट बोले और वहाँ पे जिशान नासिर आ चुके होंगे इस्लामाबाद से। एनीथिंग यू वांट टू से मोहसिन जाते हुए?
2: सर जाते हुए यही है कि इस महीने को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सेलिब्रेट करें, और इन अ पॉजिटिव वे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। इसके अलावा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आपसे अगले जुमेरात को मुलाकात होगी। बाय बाय, टाटा।
0: ओके दैट्स ग्रेट जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें और इन्जॉय करना सीखें। आपने इन्जॉय करना है, और किसी ने मेरे से सवाल पूछा था खुशी क्यों नहीं मिलती, खुशी के लिए खुशी कैसे मिल सकती है? खुशी आपके अपने अंदर होती है, अपने अंदर आपको तलाश करनी है। इधर उधर टकरे मारने से आपको खुशियाँ नहीं मिलती। अगर आप समझते हैं कि इधर उधर टकरे मारेंगे, एफर्ट करेंगे तो खुशियाँ मिलेंगी। यू हैव टू फाइंड इट विद इन यू, आपके अंदर है कहीं। अब आप उस पर किस तरह से जाते हैं और किस तरह से नहीं, यह आप पर डिपेंड करता है। आप कहीं पे ख़ुद को रोक लेते हैं और कहीं पे ख़ुद को टोक लेते हैं, और कहीं पे बिला वजह उन चीज़ों के पीछे दौड़ते हैं जो आपके लिए तकलीफ़ का बायस है, जो आपको मैसर है उन पे पहले खुश हों, फिर आगे बढ़ना सीखें। दिस इज़ आज डॉग साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली बुध जुमेरात को। एंड यस, अगले मंगल और बुध को सुबह के टाइम भी हमारे यहाँ पे इंटर्न्स के शोज होंगे कंटिन्यूसली, वो भी सुनिएगा।

गए जी, आ गए जी, आ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तान जनाब, क्या हाल है? ठीक ठाक हुई बात? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, जहाँ होंगे हमारे साथ साथ होंगे। हमें कहते हैं FM 101 चैनल पाकिस्तान, मुझे कहते हैं जीशान नासिर, रावलपिंडी इस्लामाबाद, सरगोधा साहिवाल, AJK मरियाजाद, कश्मीर पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर, इनफैक्ट पूरी दुनिया में www.radio.gov.pk के थ्रू, जहां जहां पर आप हमें सुन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ट्यून इन करने के लिए। और प्रोग्राम का नाम 101 इंटरनेशनल है, यानी कि फेम ईम हिक्स हिक बैन अलवामी। क्यों हम इसको कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि इस वक्त हम सुने जा रहे हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद, सरगोधा साहिवाल, AJK मरियाजाद, कश्मीर, और उसके अलावा अगर हम यूरोप की बात करते हैं तो इटली, रोम, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स की बात करते हैं तो शिकागो, टेक्सस, वॉशिंगटन, बाल्टीमोर, मैरीलैंड। अगर हम बात करते हैं मिडल ईस्ट की, यानी कि दुबई, अमान, अजमान, अबू धाबी, और जहां जहां पर आप हमें सुन रहे हैं थ्रू इंटरनेट, जमीन के ऊपर, आसमान के नीचे, जिस कैफियत, जिस हालत में आप हमें सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज को अपनी समातों के बाद दिल से कबूल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। 12:09 और 45 सेकंड पाकिस्तान का मियारी वक्त, जुमे का दिन शुरू हो चुका, 7 अगस्त 2026।

का ठीक अब से लेकर देखते हैं कब तक रहता है वो सब कुछ जिसका आपको इंतजार है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा लाफिंग मटेरियल है, बहुत सारा सोचने वाला मटेरियल है, बहुत सारा आंख के वजू के लिए मटेरियल है और बहुत सारा मुझ पे तनकीद करने के लिए भी मटेरियल है। नो वरीज एट ऑल। वो कहते हैं ना कि व्हेनेवर लाइफ पुट्स यू इन डिफिकल्ट सिचुएशन नेवर से व्हाई मी। अगर आप सुबह उठें, मैं अगर अपनी बात करूं, अगर हम सुबह उठें और उस दिन हमें कोई चैलेंज नजर ना आए, हम कहते हैं यार वेस्ट है लाइफ, बिल्कुल वेस्ट है, या आज का दिन बिल्कुल वेस्ट है। खैर, अगर आप मुझे कॉल करना चाहें तो मोर देन वेलकम टू कॉल मी अप ऑन 051-111-0101 या फिर 051-9025-40। इसके ऊपर आप हमें रब्ता कर सकते हैं और

तुम्हें अगर उसके होने पर यकीन है तो फिर किसी भी शय के होने की खुशी या ना होने का गम बेमानी है। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। तुम किसी दिन जो चमकता हुआ देखो मुझको, जान लेना ये जरेश की ताबानी है। मेरे शब्दों में अगर अपना सरापा देखो, सोच लेना ये नमे हैजर की हैरानी है। किसी दरबार की आमीन भरी खिलवत में ऐन मुमकिन है तुम्हें मेरा पता मिल जाए। ये भी हो सकता है मैं तुमको मिलूं या ना मिलूं, लेकिन इस खोज में खुद तुमको खुदा मिल जाए। अपने टेरेस से नजर करना कभी मशरकी समत, नफ्स गुम करदा नजारों में मिलूंगा तुमको। और शबे कद्र तलाशो तो मुझे भी तकना, ताक रातों के सितारों में मिलूंगा तुमको। सख्त बुजदिल है कि जो इश्क में थक जाते हैं, मैं तो हां तुमसे बिछड़ कर भी तुम्हारा रहूंगा। सांस बन जाऊंगा हर घुटते हुए सीने की, हर दुखे दिल के लिए एक सहारा रहूंगा। क्या कलीमी से भला इश्क कलामी कम है, बादशाही न सही दिल की गुलामी कम है। क्या ये कम है कि तुम्हें देखूं दिखे कुल दुनिया, क्या ये कम है कि लिखूं इश्क पढ़े कुल दुनिया। यारे मन इश्क तलब इश्क में सब इश्क सनद, जज्बे मन इश्क अजल इश्क अबद इश्क हद। इश्क दरबार भी सुनकार भी सरकार भी इश्क, इश्क तलवार भी आजार भी दिलदार भी इश्क। इश्क हो जाए तो कुछ और कहां होता है, कुछ नहीं होता वहां, इश्क जहां होता है।

तीसरा तरीकेकार, आप हमें कॉल कर सकते हैं 0421100101, हमारे और आपके दरमियान रबते का नंबर। प्रोग्राम में पहला गीत शामिल करने का दिल चाह रहा है, जवाद की खूबसूरत आवाज, पाकिस्तानी फिल्म से गीत, काफी लंबे अरसे के बाद दिल चाह रहा है इसको सुनने का। रात भी है, माहौल भी है, तुम भी हो और ये समा। हमेशा बहुत सी बातें कहने का, करने का दिल चाहता, गांव के किसी खेत में पगडंडियों पे चलते हुए, हल्की हल्की बारिश के दौरान ये ट्रैक अच्छा लगता होगा। लाहौर और इसके गिर्दो नवा में सुने जाने वाली आवाज का नाम रहमान अनवर। ये प्रोग्राम है अधूरी बातें।

जिंदगी बड़ी ठीक ठाक चल रही होती है, बहुत जबरदस्त, पूरे तसलसल के साथ, जैसे बहुत सारी चीजें आपके लिए बनाई गई हैं, जैसे बहुत सारी चीजें आपके लिए तख्लीक की गई हैं, आप उन तमाम चीजों में फिर भी कोई अपनी मर्जी का कोई एक हिस्सा निकालते हैं, अपनी मर्जी का कोई एक सिरा ढूंढ लेते हैं और आप फिर जीने लगते हैं। एक ऐसे वक्त में, एक ऐसे लम्हे में कोई एक एहसास कहीं बहुत दूर से जन्म लेता है, खौफ का एहसास, डर का एहसास, जो पहले कभी नहीं था, पहले कभी ऐसा एहसास महसूस नहीं हुआ था, लेकिन एकदम से अचानक आपकी वो जिंदगी जो पूरे तसलसल के साथ, बगैर किसी प्रॉब्लम के, बगैर किसी परेशानी के, बगैर किसी खौफ के चल रही होती है, उसमें अचानक डर आ जाता है, खौफ आ जाता है। क्या वजह हो सकती है उसकी, किस वजह से ऐसा दिल के अंदर एहसास पैदा होता है, ऐसा ख्याल पैदा होता है, क्या वजह हो सकती है इसकी? क्या वो डर किसी को खो देने का होता है? क्या वो डर किसी के दूर चले जाने का होता है? दरअसल हम अपनी जिंदगी के तजुर्बात से, अपनी जिंदगी के मुशाहिदात से बहुत सारी चीजें अखज़ करते हैं, बहुत सारी चीजें हम अपनी जिंदगी से लेते हैं। और ये एक आम सी बात भी है, एक कॉमन बात है, हम जिंदगी में जो चीजें सीखते हैं हम वही चीजें ज्यादातर अपने सामने रखते हैं, और बाकी जिंदगी का जो मुशाहिदा है, तजुर्बा है, हम अपनी उस गुजरी हुई जिंदगी, उन तजुर्बों से मुशाहिदात लेते हैं, उस कैनवस के ऊपर, उस स्केल के ऊपर हम दुनिया के बाकी तमाम मामलात भी तोलते हैं। इस सिचुएशन में बाज़ोकात एक अजीब सी सूरत हाल पैदा होती है, क्योंकि हमने जिस तरह से जिंदगी बिताई होती है, या हमने जिस तरह से किसी इंसान को, किसी चीज को हमने चाहा होता है, हमने जिस तरह से अपनी जिंदगी के अंदर उन मामलात से अपने अपने तरीके से जुड़े होते हैं, वही तमाम चीज़ें, वही तमाम चीज़ें हम दूसरों की जिंदगी पर भी इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो मुशाहिदात हैं, हमारे जो तजुर्बात हैं, उनसे ही सारी चीज़ें सही हो सकती हैं, उनसे ही हम तमाम चीज़ें जान सकते हैं, सीख सकते हैं। डर का जो मामला है वो बड़ा पेचीदा होता है।

छोटा सा सवाल, 15 मिनट के लिए हम इस सवाल को आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। किसी को खो देने का जो खौफ होता है, किसी को खो देने का खौफ, क्या आपने कभी महसूस किया है? किसी के दूर चले जाने का खौफ, किसी के दूर हो जाने का डर, क्या कभी आपने महसूस किया है? ऐसी सूरत हाल में होता क्या है?

मसला जानते हैं क्या है, बाकी तमाम जगहों से इंसान गुजरता रहता है अपने तजुर्बात अपने मुशाहिदात की सूरत में, लेकिन ये जो नामालूम का खौफ होता है ना, डर होता है ना कि आगे क्या होने वाला है, अभी हुआ नहीं होता लेकिन दिल कहीं ना कहीं बड़ी तेजी से धड़कने लगता है, उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है, कोई ना कोई वजह जरूर होगी कि वो दिल बहुत तेजी से धड़कता है और ये एहसास करवाता है कि जैसे कुछ दूर होने वाला है, कुछ जाने वाला है, कोई बहुत खास, कोई बहुत अपना, कोई बहुत गहरा, जिसके साथ ताल्लुक की बहुत सारी सदियां बीती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सारे जन्म उसके साथ गुजरे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे किसी और कायनात में भी हम मिले हैं, लेकिन यहां से अचानक जो खौफ शुरू होता है, अचानक से दोबारा वापसी होती है किसी एक खास नहज पे, किसी एक खास मुकाम पे पहुंचने के बाद जब वापसी होती है तो डर सताने लगता है, डर लगने लगता है कि अगर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, मालूम नहीं होता ना। जहां इल्म खत्म होता है वहां से खौफ जन्म ले लेता है। बहरहाल हम इस बात को डिस्कस करेंगे आपके साथ, आप हमें कॉल कर सकते हैं 0421100101, हमारे और आपके दरमियान रबते का नंबर। ये लोकल प्रोग्राम होता है लाहौर और इसके गिर्दोनवा में सुना जा सकता है, लेकिन दुनिया में रहते हुए कहीं पे भी, मुल्क के किसी भी शहर में, किसी भी हिस्से में आप हमें सुन सकते हैं www.radio.gov.pk। लाहौर कनेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे तो मेरी आवाज़ आपको सुनाई देगी। बहरहाल आपके पैगामात मुझे मौसूल होने लगे हैं 4471 पर भी, और फेसबुक के ऊपर भी आपके जो पैगामात हैं मेरी पोस्ट के ऊपर भी वो आने लगे हैं, मैं उनको भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा, ज़रूर बनाऊंगा। लेकिन अभी फुल वक्त के लिए एक और बहुत खूबसूरत सा ट्रैक है जिसको मैं प्रोग्राम का हिस्सा बनाना चाह रहा हूँ। पता नहीं क्यों

मुझे ऐसा लगता है यू वुड लव दिस ब्यूटीफुल रैकेट. आई वुड लव टू लिसन दिस. आई लव्ड इट.

जी हाँ, एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं तमाम सुनने वालों को। ये रेडियो पाकिस्तान FM 101 का बराह रास्त लाहौर का स्टूडियो है और मेज़बान रहमान अनवर आपके साथ साथ हैं। अभी मुझे ये बताया गया है कि पेशावर भी हमारे साथ कनेक्ट है और फ्रीक्वेंसी पे पेशावर में 101 पे आप हमें सुन सकते हैं। इस वक्त ये प्रोग्राम लाहौर और पेशावर में सुना जा रहा है।

ज़िंदगी में बहुत से खौफ होते हैं, बाज़ औक़ात लोग अंधेरे से डरते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे लाइट्स ऑफ करके प्रोग्राम करता हूँ। और ये बहुत पुराना स्टूडियो है, ये याद रखिएगा। यानी ये इमारत बहुत पुरानी है, ये जगह बहुत पुरानी, और मुझे अच्छा लगता है इस तरह से आपसे बात करना। डर नहीं लगता ऐसी किसी भी चीज से। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऊंचाई से डरते हैं, कुछ लोग नाकामी से डरते हैं, कुछ लोग बीमारी से डरते हैं, कुछ लोग गुर्बत से डरते हैं, लेकिन ये जो डर है ना, ये कहीं ना कहीं मादूम हो जाते हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर उम्मीद एक पैदा कर देते हैं कि शायद ये खौफ खत्म हो जाएगा, अंधेरा छट जाएगा, रोशनी आ जाएगी, ऊंचाई से हम दोबारा से अपनी उस जगह पे आ जाएंगे जो हमें पसंद है। नाकामी से कामयाबी तक का भी सफ़र किया जा सकता है, बीमारी से भी सेहतमंद हुआ जा सकता है, गुर्बत से भी अमीर हुआ जा सकता है, लेकिन एक ऐसा खौफ होता है जिसका कोई मदावा नहीं होता। आप अपनी तरफ से उसका कोई हल नहीं निकाल सकते, वो किसी को खोने का खौफ होता है, या फिर ऐसा करें कि हो सकता है कि वो खो चुका हो आपको उससे पहले। जैसे बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी और मैंने ये चीज़ें नोटिस भी की हैं, बाज़ औक़ात कुछ नागहानी आफात अगर आनी होती हैं तो जानवरों को पहले इल्म हो जाता है, उनको पहले से पता चल जाता है, बच्चों को भी पहले से इल्म होना शुरू हो जाता है, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनको बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हमारी आंख पे पड़ता होता है वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा गहरा दबीज होता चला जाता है और ज़्यादा मोटा होता चला जाता है, उसके ऊपर मुख्तलिफ कवर और आते चले जाते हैं, और फिर हम बहुत सारी चीज़ें इस दुनिया में दूसरी मखलूकात की सूरत में नहीं देख सकते, हमारी आँख के सामने एक पर्दा रखा गया है। शायद हमारे अंदर वो चाबियाँ मौजूद हैं, हमारे अंदर वो की मौजूद है कि हम किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई एक ताला खोल सकते हैं, शायद एक के बाद दूसरा भी खोल सकते हैं, तीसरा भी खोल सकते हैं, फिर शायद इस जहां से किसी दूसरे जहां में अगर सफर मुमकिन है तो वो भी कर सकते हैं। बहरहाल इसको किसी और दिन के लिए बचा रखेंगे, जब हम तीनों बैठ के प्रोग्राम्स किया करते थे, मैं, डॉक्स और ज़ियान जुम, तो इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस करने का सोचा था। बहरहाल अभी वो प्रोग्राम्स नहीं हो पा रहे, बहुत जल्द इंशाल्लाह कहीं ना कहीं वो शुरू होंगे तो फिर हम करेंगे, लेकिन तीनों एक साथ करेंगे, दो नहीं कर सकते, एक नहीं कर सकता, तीन कर सकते हैं। अच्छा, ये जो खो देने का खौफ होता है, क्या कभी आपने महसूस किया है? बहुत सारी बातें हैं जो मैं करना चाहता हूं इस टॉपिक के हवाले से। ये नहीं पूछा कि कौन सा डर है, ये पूछा है कि ये जो किसी को खो देने का डर है, क्या कभी आपने ये महसूस किया है? मान लें अब इस बात को, इस बात से कितना मुंह फेरेंगे आप, कितना मुंह छुपाने की कोशिश करेंगे आप। पहला जो इस दुनिया में भेजा जाने वाला जोड़ा है वो मियां बीवी का जोड़ा है, लड़का और लड़की का जोड़ा है, तो इस चीज से आप डिनाई नहीं कर सकते। अखलाकियात के दायरे को मद्देनजर रखते हुए आप हर बात कह सकते हैं, हर बात कर सकते हैं। किसी ने मुझे कहा था कि मोहब्बत की बात करते हैं आप तो शर्मिंदगी का एहसास नहीं होता आपको। मैंने कुछ जवाब दिया था उसको, लेकिन यहां पे नहीं बता सकता। ये आसमान मोहब्बत है, ये जमीन मोहब्बत है, ये निजामे शमसी मोहब्बत है, सूरज मोहब्बत है, चांद जो जमीन के गिर चक्कर लगा रहा है, ये मोहब्बत है, ये कशिश मोहब्बत है। हर सेकंड में 230 किलोमीटर का फासला तय करते चले जा रहे हैं, ये भी मोहब्बत है।
जिस जगह पे पिछले सेकंड में थे अगले सेकंड में वहां पे नहीं है, उससे 230 किलोमीटर 40 किलोमीटर आगे पहुंच चुके हैं, इतनी तेजी से ये सफर कर रही है निजामे शमसी। बहरहाल एक बज चुका है और एक ट्रैक मैं आपके लिए प्ले करने वाला हूँ। कॉल्स मेरा लेने का कोई मूड नहीं है आज, बिल्कुल कोई मूड नहीं, बिल्कुल मेरा दिल नहीं है। लेकिन इस्लाम तुमने मेरा दिल बहुत होश किया है। इस्लाम हमारा बहुत प्यारा सा इंटर्न है, बहुत प्यारा सा भाई है। इस्लाम ने मुझे एक गिफ्ट किया है और मेरी जो पोस्ट है उसके कमेंट सेक्शन में उसने मुझे एक पोस्ट गिफ्ट की है बनाकर, बहुत खूबसूरत पोस्ट बनाई है इस्लाम। मैंने देखा तो मुझे बहुत मज़ा आया इसको देखने का, बहुत जेन्युइन, बहुत खूबसूरत। थैंक यू वेरी मच इस्लाम, हमेशा खुश रहो। इस्लाम गुजर बहुत खूबसूरत तरीके से गुफ्तगू करने वाला लड़का, आज मैंने उसकी गुफ्तगू सुनी। और यहाँ पे इस इंटर्नशिप ट्रेनिंग जो प्रोग्राम में मैंने बच्चे देखे हैं, उनमें बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो ये कैपेबिलिटी उनके अंदर मौजूद है कि वो यहाँ पे बैठकर दो घंटे बात कर सकते हैं। उनका कैनवस इतना वसी है, गुफ्तगू को लेके चलने का हुनर है, बात को आगे बढ़ाने का हुनर है, ओवरलैप नहीं करते, खामोशी से अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं, साथ लेकर चलते हैं एक दूसरे को। ये मैं देखना चाहता था। मैं जेलेसीज को देख चुका हूँ, मैं एक दूसरे को पीछे हटाने को देख चुका हूँ। एक दूसरे से आगे बढ़ जाना, किसी तरीके से दिल में ज़्यादा जगह मेरी बन जाए ये सोचना, ये सब चीज़ें मैं देख चुका हूँ। बहुत से लोग मुझे ये कहते थे कि आप बदले में जवाब क्यों नहीं देते, कि आपके पास जवाब होते नहीं। हर किसी के पास जवाब होते हैं, हर इंसान जवाब दे सकता है, लेकिन कुछ लोगों को बोलने का दिल नहीं चाहता। अगर वो ये देखते हैं कि इसको मुझसे आगे बढ़ने की जल्दी है या इसको मुझे क्रॉस करने का दिल चाह रहा है, मुझसे ज़्यादा इसको ये चीज़ चाहिए, मैं वो अता कर दिया करता हूँ, दे दिया करता हूँ अगर मेरे पास वो मौजूद है, चाहे वो रास्ता हो, चाहे वो माइक हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। मैं लड़ा नहीं करता इन छोटी चीज़ों के लिए, मैं आगे बढ़ने के लिए मैं जुस्तजू नहीं करता, मैं आगे बढ़ने के लिए मुख्तलिफ रास्ते इस्तेमाल नहीं करता, ओवरलैप नहीं करता, कभी नहीं किया। इसलिए बहुत अच्छा लगता है अपने साथ बैठ के यहाँ पे प्रोग्राम करना। आप सब लोग मोहब्बत देते हैं, प्यार देते हैं, बहुत अच्छा एहसास मिलता है। जंग कभी भी किसी दूसरे से नहीं होती, अपने आप के साथ होनी चाहिए, अपनी जात को इम्प्रूव करने के लिए होनी चाहिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए होनी चाहिए। सो इस्लाम याद रखना मेरी ये बात, खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू वेरी मच इस पोस्ट के लिए, बहुत शुक्रिया मेरे भाई। एक ट्रैक प्ले करने वाला हूँ और दोबारा से एक एडले का ट्रैक है और मेरा दिल चाह रहा है, पता नहीं क्यों आज मेरा इस तरह के ट्रैक सुनने का दिल चाह रहा है। इसके बाद जब वापस आऊंगा अफसाना शामिल करूंगा। आज का अफसाना वैसे सुनने वाला है, बड़ा खूबसूरत है।

0: FM 101, the sound of new millennium.
1: सरल संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
0: FM 101, the sound of new millennium.
1: सरल संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

रात बीत रही है और मैं अभी तक ये फैसला नहीं कर सका कि खत लिखूं तो किसे लिखूं। आज दिन भर धुंध छाई रही। हम अपने अपने कैबिनों में घुसे अखबार और तस्वीरों वाले रिसाले देखते रहे। चाय आज मामूल से एक बार ज्यादा तकसीम हुई। बाज़ औकात ऐसी बेकायदगी बड़ी अच्छी लगती। मैं अपने कमरे से खरामा खरामा दो दफा कंट्रोल गया, लेकिन वहां कुछ ऐसी मसरूफियत थी कि वो लोग ठीक से मेरी बातों का जवाब नहीं दे सके। मौसम खराब था और लासल की पैगाम अच्छी तरह समझ में ना आते थे। इतना महसूस होता था हमारे सारे लड़ाका तैयारे सलामत हैं। मैंने एक दफा पीटर की आवाज पहचानने की कोशिश भी की, मगर नाकाम रहा। फिर मैं इस तरह रास्ते की हर उभरी हुई कील और बड़ी हुई लकड़ी को ठोकरें मारता हुआ वापस आ गया। जेब से च्युइंगम्स की एक टिकिया निकली, पता नहीं ये कब से वहां पड़ी थी। कपड़े की मुसलसल रगड़ से इसकी खांड उतर चुकी थी। मैंने उसे मुंह में डाला तो तुम याद आ गई। अब अंधेरा छाया हुआ है, समुंदर बिल्कुल साकिन है, जहाज में अब वो हटकोरे नहीं। अर्शा घर का सहन लगता है, जहां हम सब ईंटें खड़ी करके हॉकी से क्रिकेट खेला करते थे। और तुमने मुझे खास तौर पर हिदायत कर रखी थी गेंद ईंटों की सीध में ना फेंकूं, लेकिन मेरी छह फेंकनियों के बाद जेदी तुम्हें पहली बार आउट कर दिया करता था। ये तो बताओ, मैंने कभी ऐसी जुर्रत की थी? मेरा जी चाहता था तुम कभी भी आउट ना हो पाओ। मैं तुम्हें कभी आउट ना होने दूं, और तुमने भी यही कहा था, मेरा भी जी यही चाहता है तो मुझे खिलाते ही रहो। लेकिन अब खुद ही तुमने मुझे इतनी दूर भेज दिया है। यहां ना तो कोई तुम्हारे जैसा है, ना तुम्हारे देश का। अंग्रेजी खाने खा खा कर मैं तंग आ गया। उर्दू में बात किए तकरीबन डेढ़ महीना बीत चुका है और तरबंगेज लम्हा तो शायद एक भी नहीं आया। पानी में जिंदगी बसर करते आज 25वां दिन है, और पता नहीं कितने दिन इसी तरह आसमान के नीचे और सागर की छाती पर गुजर जाएंगे। कल रात पीटर कैबिन में आया और देर तक बैठा रहा। वो मार्गरेट को खत लिखता आया था। फिजाई हमला करने से पेशतर हर अमेरिकन हवाबाज अपनी जाने तमन्ना को एक लंबा चौड़ा खत लिखा करता है। पीटर की शक्ल अब तक मेरी आंखों में घूम रही है। वो मेज के कोने पर बिल्कुल गैर फौजी अंदाज में फसुकड़ा मारकर बैठ गया और मार्गरेट की बातें करने लगा। उससे मुतालक हर बात शुरू करने से पेशतर वो मुस्कुराकर ये जरूर कहता, भला तुम किसी दूसरे की दास्तान उल्फत में क्या दिलचस्पी लोगे? लेकिन तुम इतने अच्छे हो कि अगर दुनिया में मार्गरेट ना होती तो मैं सिर्फ तुम्हारी दोस्ती के सहारे जिंदगी बसर कर लेता। फिर प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की हल्की सी तमहीद के बाद वो तैरने के उस तालाब का जिक्र जरूर करता जहां पहले पहल उनकी मुलाकात हुई थी।

काम लेने लगे। एक दफा जब मैं तुम्हारे छोटे भाई के साथ तुम्हें कॉलेज से लाने के लिए चचा अब्बा की मोटर लेकर आया तो तुम कार में बैठते हुए अपने भाई से बोली थी, अरशद तुम मत चलाना। उस दिन मुझे तुम्हारी नजरों में अपनी बर्तरी का एहसास हुआ। तुम मुझे और अच्छी लगने लगी, बहुत अच्छी, बहुत बहुत बहुत अच्छी, सबसे अच्छी। ऐसे ही एक दिन जब मैं एक लिफाफा जिसकी फ्लैप की गूंद तकरीबन उतर चुकी थी पानी लगाकर बंद कर रहा था तो तुम हंस पड़ी थी और लिफाफा मेरे हाथ से झपट कर कहा था, ये ऐसे बंद नहीं होगा, जकड़ने वाली चीज उखड़ चुकी है, यहां तो वही पुराना तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। और फिर लब लगाकर लफाफा बंद करके ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर रख दिया था। लेकिन मैंने फौरन वहां से ये कहकर खींच लिया था कि ठहरो ठहरो, मुझे भी तो ये तरीका सीखने दो। खुदा मालूम फिर कितने ही ऐसे लिफाफों से पाला पड़े। लिफाफा फिर खुला, जुबान दोबारा फेरी और फिर उसी तरह डिक्शनरी के नीचे दबा दिया गया। लेकिन फिर तुमने भरपूर निगाहों से मुझे नहीं देखा, ऐसे ही जुगनू सी चिपकाती रही और उठकर चली गई। बाज़ोका तुम्हारी रहबरी भी चूकड़ियां भूल जाया करती थी। अक्सर ऐसे भी हुआ कि तुमने अपनी पसंद पर मेरी मर्जी को कुर्बान कर दिया और मैंने पता नहीं क्यों कुर्बान होने दिया। मैं बालों में टेढ़ी मांग निकालता था लेकिन तुमने कहा मुझे दरमियान में पसंद है। मैंने कंघी तुम्हारे आगे बढ़ा दी तो तुमने कहा मैं खुद नहीं निकालूंगी। पता नहीं कैसे फिर मेरी मांग खुद ब खुद सीधी निकलने लगी, पर उन बालों को हसरत ही रही कि कभी तुम्हारे हाथों से मिन्नत पजीर शाना होते। एक बार जब मैं किराए की नई साइकिल लेकर सारा दिन इधर उधर घूमता रहा था और शाम को दुकान बंद हो गई थी और मैं साइकिल लेकर घर आ गया था तो रात को खिली हुई चांदनी देखकर तुम्हारा जी चुराया है ना, याद है? तुम साइकिल बरामदे से बाहर गली में निकाल कर ले गई, लेकिन चलाता कौन? उस वक्त अगर मैं ना होता तो पता नहीं तुम कितनी देर ऐसे ही खड़ी रहती। फिर मैंने ही तुम्हें आगे बिठाकर गली के उस सिरे तक सैर करवाई थी, लेकिन ऊंचे नीचे गड़ों वाली जमीन पर साइकिल उछलती रही और मेरी ठोड़ी तुम्हारे सर से टकराती रही। और वापसी पर जब मैंने ये राय दी कि दुकानों की कतार का चक्कर काट कर अपने घर के पिछवाड़े जा उतरेंगे क्योंकि वो रास्ता हमवार था। यार अफसाना पढ़ रहे हैं।

एक बार जब मैं किराए की नई साइकिल लेकर सारा दिन इधर उधर घूमता रहा था और शाम को दुकान बंद हो गई थी और मैं साइकिल लेकर घर आ गया था, तो रात को खिली हुई चांदनी देखकर तुम्हारा जी चुराया था। तुम साइकिल बरामदे से बाहर गली में निकाल कर ले गई, लेकिन चलाता कौन? उस वक्त अगर मैं ना होता तो पता नहीं तुम कितनी देर तक ऐसे ही खड़ी रहती। फिर मैंने ही तुम्हें आगे बिठाकर गली के उस सिरे तक सैर करवाई थी, यहां थे, लेकिन ऊंचे नीचे गड़ों वाली जमीन पर साइकिल उछलती रही और मेरी ठोड़ी तुम्हारे सर से टकराती रही। और वापसी पर जब मैंने ये राय दी थी कि दुकानों की कतार का चक्कर काटकर अपने घर के पिछवाड़े जा उतरेंगे, क्योंकि वो रास्ता हमवार था, तो तुमने मेरी तजवीज रद्द कर दी थी। अगर इस तरह एक बार फिर मेरी ठोड़ी तुम्हारी मांग को छूती रही थी तो मेरा क्या कसूर? जब तुम कॉलेज से दोपहर को घर आती थी तो मैं अपनी खिड़की खोले हुए बैठा होता। हमारे घर के ऐन सामने एक छोटी सी खाई थी जिसे तुम हमेशा फलांग कर गुजरा करती थी। तुम्हारे

साथ और दो तीन लड़कियां भी होती, मगर वो कभी इस तरह से नहीं गुजरी थी। या तो उससे कतरा जाती या एक पांव उसमें उतार कर दूसरा अगले किनारे पर रख देती। मैं यही नजारा करने के लिए खिड़की के पट खोले रखता था। थोड़े अरसे बाद वो खाई पुर हो गई, लेकिन तुमने अपना अंदाज ना बदला। तुम उस ताजा ढली हुई मट्टी पर से उसी तरह गुजरती रही जैसे खाई पर से गुजरती थी, और वो नशे पर होने के बावजूद मेरी खिड़की के बंद बंद नहीं हुए। जब मैंने खुदा को मानना छोड़ दिया था और औरों के साथ, तुम्हें भी रंज हुआ था। भाईजान से मेरी लंबी लंबी बहस सुनकर तुमने मुझसे पूछा था, आखिर आप खुदा को मानते क्यों नहीं? तो मैंने कहा था, उसके मानने या ना मानने से इंसानी जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ता। तो तुमने जवाब दिया था, मैं तो समझती थी फलसफा तुम्हारा दिमाग रोशन कर देगा, पर रोशन ही तो हुआ है, मैंने कहा था। जब वक्त वक्त और फासला मैं कुछ नहीं समझती। तुमने बात काट कर कहा, आज से खुदा को माना करो, लेकिन कुछ नहीं, मैं जो कहती हूं खुदा है। पर अच्छा, तो जाकर अपनी खिड़की बंद कर लो, समझ लो आज से वो खाई पुर हो चुकी। मैं तुमसे तो शायद ना डरता, लेकिन तुम्हारी धमकी से डर गया था। और उस दिन मुझे हर शय में खुदा का जहूर नजर आने लगा। कल रात पीटर मेरे पास आया था और देर तक बैठा रहा था, मगर आज नहीं आया। मैंने कहा ना, वो बड़ा जज्बाती है, एल्बम दे गया है जिसे अब तक मैं कई बार देख चुका हूं। अब भी वो मेरे सामने खुला पड़ा है। 3 बजे शब तैयारों ने टेक ऑफ किया। हम उस वक्त मजे से सो रहे थे। सुबह सुबह मैं कंट्रोल गया, लेकिन वहां हद दर्जा मसरूफियत थी। चंद मिनट तक पीटर के पैगाम का इंतजार करने के बाद मैं अपने कैबिन में वापस आ गया। दोपहर को हमें विंग कमांडर ने बुलाया। देर तक नक्शा फैलाए हम इधर उधर निगाहें दौड़ाते रहे, और फिर एक खाका मुरतब हुआ और हमें पोजीशन समझा दी गई। मैं फिर आकर पीटर का एल्बम देखने लगा, जिसके आखिर में मार्गरेट की एक तस्वीर थी, जहां वो पीटर की पी कैप पहने हुए हंस रही है। 8 तैयारे वापस आ गए, मगर पीटर नहीं आया। कंट्रोल ने प्याम दिया, मगर कोई जवाब ना मिला। हम सब अर्शय जहाज पर निकल आए और आसमान की तरफ निगाहें उठाए इंतजार करने लगे। तश्वीश बढ़ती गई, विंग कमांडर मायूस हो गया, लेकिन हम लौटकर अपने कैबिनों में नहीं गए। समुंदर मुतलातम हो गया था, दूर दूर तक नीला नीला पानी बिल्कुल स्याह हो गया और जहाज डोलने लगा। बड़ी बड़ी लहरें उठती और जहाज से सर मारने लगती। बहुत सी ऊंची ऊंची लहरें अर्शाय जहाज पर आकर फैलने लगी। हमारे बूट पानी में डूब डूब जाते और पतलूनों के पैंचे टखनों से लिपट जाते, लेकिन सबकी निगाहें सिर्फ आसमान में गड़ी हुई थीं। फिर अचानक स्याह बादल उमटा और तेजी से हमारी तरफ फैलने लगा। हमारा तैयारा आ रहा था, अपने पीछे धुएं का एक दबीज बगौला छोड़े। उसका एक पर जल रहा था और उसमें लंबे लंबे शोले निकल रहे थे। सब एक तरफ हो गए और तैयारा गोया अर्शा पर आकर गिर पड़ा। हमने रबड़ के नलों से उस पर पानी की बोछाड़ कर दी और फिर उसकी अधजली चिता पर पल पड़े। मैंने कॉकपिट खोलकर जब पीटर को बाहर निकाला तो उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें धुंधला गईं। स्ट्रेचर मंगवाया और उसे ले गए। तोपची का पता ना था। पीटर ने अपने नातमा हाथों से मेरा हाथ लेकर कहा, जरा मेरा एल्बम तो लाओ। हार्लोव मेरे पास खड़ा था, मैंने उसे कहा, और जब वो ले आया तो पीटर ने कहा, आखिरी तस्वीर निकालो। माँ ने मार्गरेट की वही तस्वीर निकाली। पीटर ने उसे अपनी धुंधली निगाहों से देखा और बोला, इसे मेरे करीब तो कर दो। जब मैंने उसे करीब कर दिया तो बोला, जरा और नजदीक। उसके बाद उसने कहा, मार्गरेट ने कहा था मर्द फौज में भर्ती होने के लिए पैदा होते हैं। देखो मेरी टोपी पहनकर किस कदर खुश नजर आती है। इसे हवाई फौज से बहुत उंस था। इसकी तमन्ना थी कि मैं एक अच्छा पायलट बन सकूं। मैं पायलट तो बन गया, मगर शायद अच्छा नहीं। ये अक्सर कहा करती थी, जब तुम वर्दी पहनकर प्रिंसटन की गलियों में चला करोगे तो हर बर्री और बहरी फौजी हमें सलाम किया करेगा। काश उसकी आरज़ू पूरी हो सकती। शाम को हम सब ने पीटर को उसके जले हुए जहाज में डाल दिया और टोपियां उतार कर उसके सामने सर झुकाकर खड़े हो गए। अमरीकी ने उन्हें नहायत दर्दनाक मगर ऊंचे सुरों में वही मशहूर गीत गाना शुरू कर दिया। फिर उसके जहाज को आहिस्ता आहिस्ता धकेल कर हमने समुंदर में फेंक दिया। एक बड़ा सा भंवर पैदा हुआ और फिर तैयारे की जली हुई दुम उसमें गर्क हो गई। विंग कमांडर ने कहा, एक अच्छे हवाबाज को कितना अच्छा ताबूत मिला है।
आज सुबह मेरा टेक ऑफ है और हम उसी अरशा से उड़ेंगे जहां कल रात एक अच्छा हवाबाज उड़ा था। लेकिन इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, हॉर्लव बहुत अच्छा निशानची है, उसका निशाना कभी खता नहीं गया। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, मैं तो अभी तक ये फैसला नहीं कर सका कि खत लिखूं तो कैसे लिखूं, मैं अभी तक ये फैसला नहीं कर सका।

0: झूठ बोल रही हो तुम।
1: साहब मैंने आपसे कहा ना, जिसने मेरी जान बचाई वो एक मसीहा था, मैं उसको पहचानने में गलती नहीं कर सकती।
2: एक बात बता।
0: डिटेल्स।

सरोर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101। FM 101, the sound of new millennium.

0: ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کا براہ راست لاہور کا اسٹوڈیو ہے, میزبان رحمان انور اور میرے ساتھ موجود ہیں آج ڈاکس. ویلکم بیک.
1: تھینک یو ویری مچ.
0: کیسے مزاج ہیں ڈاکس؟
1: اچھے مزاج ہیں.
0: اچھا, تھکاوٹ میں نا انسان کی آواز اور زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے, کبھی آپ نے یہ نوٹس کیا؟
1: نہیں, میں نے نہیں کیا.
0: اب یہ سننے والے سارے نوٹس کر لیں گے آپ تھکے ہوئے ہیں, آپ کی آواز خوبصورت لگ رہی ہے.
1: اچھا, آپ کو لگ رہی ہے.
0: آج آپ میرے لیے چائے کیوں نہیں لے کے آئے؟ اچھا, میرا نا واقعی دل کر رہا تھا, گلا میرا بالکل
1: پلان ہی سارا تتر بتر ہو گیا. میں تو باہر ہی بیٹھا رہا, تو آپ موسن بیٹھے ہوئے تھے.
0: اچھا اچھا اچھا, ٹھیک ہے, میں نے بھی بلا لینا سی. جی ڈاکس, سنائیں کیسے چل رہے ہیں آج کل؟ اچھا, آج میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں. آج میں پھر یہاں پہ انٹرنز ٹریننگ جو پروگرام ہے اس میں میں آیا ہوا تھا یہاں پہ.
1: کیوں؟
0: میرا دل چاہ رہا تھا یہاں پہ آنے کا.
1: اچھا اچھا,
0: نہیں مینو پائن کیا سا پروڈیوسر نے کہ تھی بھی آنا. خدیجہ مراد صاحبہ نے مجھے کہا آنا ہی پینا. میں کہا جو تو پروڈیوسر کہہ دیں پھر جانا پہنتا ہے. تو مجھے آج سننے کا اتفاق ہوا, آپ نے جو وہ ایک ڈیسیجن لیا تھا کہ ان کو مائک یہاں پہ آپ آنر. اچھا, مجھے ایسا لگتا تھا وہ مائک ایسے ہوگا کہ ایک کار جو بیٹھا ہوا ہوگا وہ بات کر رہا ہوگا ان سے نا, لیکن آج میں نے ایک ڈفرینٹ چیز دیکھی کہ وہ سب لوگ 15-15 منٹ کے اپنے پروگرام ڈیزائن کر کے لے کے آئے ہوئے تھے, چار چار کے پینل میں.
1: ہاں جی,
0: اور وہ بہت بہت زبردست طریقے سے پرفارم کر رہے تھے. ان میں سے کچھ تو اتنے بہتر تھے,
1: بہت اچھا, بہت
0: اتنا زبردست. اچھا, کچھ تو اتنے انٹرٹیننگ تھے کہ یقین کریں ایک انسان. اچھا, کچھ ٹی وی چینلز کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ہنسنے کے لیے اسپیشل لوگ رکھے ہوئے ہوتے ہیں, انہوں نے پیسے دے کر ہر بات پہ ہنسنا ہے, چاہے وہ پھکی گال ہے چاہے وہ جیسی بھی ہے, لیکن آپ نے ہنسنا ہے, آپ کا کام ہے اگر وہاں سے کوئی لافٹر آپ نے دینا ہے فوراً سے, تاکہ وہ نا ایک اچھا امپریشن جائے. یہاں پہ جینوئن لافٹر آ رہا تھا, جینوئن ہنسنے کا دل کر رہا تھا ان باتوں پہ, اور ہم کھل کے ہنس رہے تھے. بچے جو پہلی مرتبہ جن کو مائک ڈلیور کیا گیا ہے اور وہ اتنے اچھے طریقے سے پروگرام کو ڈیزائن کر کے 15-15 منٹ کا, مجھے یہ نظر آیا کہ کیا محنت ہوئی ہے یہاں پہ.
1: میں ایکچولی باوجہ مجبوری میں نہیں آ سکا,
0: اور میں نے یہاں پہ آ کے کہا, میں نے کہا آج دوسرا دن ہے میں آ رہے ہیں تو آج ڈاکس نظر نہیں آ رہے, یہ غلط بات ہے.
1: اگر میں ہوتا نا یہاں پہ تو شاید چیزیں اور طرح سے چل رہی ہوتی, اور مختلف چلاتا میں,
0: اور بہتر طریقے سے ہو رہا ہوتا,
1: اور انہیں لبرٹی دیتا میں.
0: ہاں ایسا ہو سکتا تھا,
1: اور زیادہ لبرٹی دیتا.
0: یس,
1: اور آئی اسٹرانگلی بلیو کہ جب آپ مائک پہ آتے ہیں تو جو آپ کا فطری رویہ ہے وہ باہر ہونا چاہیے.
0: بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی,
1: آؤٹ آف یور ہارٹ, آؤٹ آف یور ایموشنز آپ کی بات ہونی چاہیے. جو آپ فیل کر رہے ہیں اس کا کھل کے اظہار کرے, جیسے اب وہ بڑے سنجیدہ رہے. میں سن رہا تھا کال, میں نے ذکر بھی کیا, شہزاد صاحب نے کال کی.
0: ہاں جی, شہزاد نے کال کیا
1: اور انہوں نے بتایا کہ میں جھنڈے کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ اس کی ایک وجہ ہے, پھر جب وجہ بتائی انہوں نے کہ میرے پردادا کا نام جھنڈا تھا. میں سن رہا تھا اور میں نے کہہ کے مار دیا
0: یار. اچھا اچھا اچھا,
1: میں سن کے بہت میں خوش ہوا, اور آج میں نے آ کے کہا بھی اگر ان کی کال آئے بڑا مزہ آئے گا. جب میرے ذہن میں سچویشنز بننا شروع ہو گئی نا, میں نے پہلے بھی شیئر کی کہ یار اب انہوں نے یہ نام بتایا نا تو بندہ اکثر وہ لگا ہوتا, میں کہہ رہا ہوتا یار یہ چنڈا اتلا آیا.
0: اب مجھے بھی یہی ریکال ہوگا,
1: میں گا پھر میں سوچنے لگ پیا اچھا یار اب میں کہوں گا او ہو چنڈا نہیں جھنڈا صاحب,
0: جھنڈا صاحب. Exactly یہی لفظ میرے ذہن میں, جھنڈا صاحب یہ اوپر ان کو ٹانگ دے. نہیں صحیح ہے یار, آپ ہمیں. اچھا, کالز آنی شروع ہو گئی فوراً سے, ہم کال ریسیو کرتے ہیں آپ کی. جی, لائیو کال پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون. السلام علیکم. اچھا جی, ڈسکنیکٹ ہو گئی, آپ کال کر سکتے ہیں 0421-1100-101 ہمارے اور آپ کے درمیان رابطے کا نمبر. السلام علیکم جی.
2: السلام علیکم.
0: جی وعلیکم السلام, کون بات کر رہے ہیں جی؟
2: میں
0: جی احسن صاحب, آر جے احسن بات کر رہے ہیں. अरहम अरहम अरहम अरहम, ठीक है जी। अरहम कैसे मिजाज हैं आपके? आप खैरियत से पाए ना, क्यों नहीं ऑन हो रहे
1: क्या जी?
0: ये स्पीकर आपके लिए ऑन करूँ ना, आपको आवाज़ आए। एक मिनट अरहम जरा ठहरना यार, ये इस तरह से नहीं आ रही। अरहम जरा बोलो जरा। जी वालेकुम अस्सलाम अरहम,
2: कैसे मिजाज?
1: मुझे आ रही है आवाज़? मुझे
0: आ रही है। ओके डन। अरहम बोलो यार अरहम।
2: हाँ जी हाँ जी,
0: प्रोग्राम स्टार्ट कर दे ये वाला। हाँ अरहम प्रोग्राम स्टार्ट कर दे। नहीं नहीं वो मैं, मुझे पता है ना कोई इधर से बटन का कोई इशू है। अच्छा नहीं छेड़ता। ओके ओके ओके ओके। हाँ अरहम अब बताओ मुझे, वो हेडफोन लगा लिए, क्या क्या क्या हाल है तुम्हारे? खैरियत से हो? ठीक हो?
2: मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताएं सर खैरियत
0: से? सब अल्लाह का करम है एहसान। हाँ
2: ऑन एयर है? ऑन एयर है
0: जी जी, बिल्कुल ऑन एयर है। आपको लाहौर और पेशावर में सुना जा रहा है।
2: पेशावर में पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो।
0: डॉक्स कह रहे हैं कि ऑफ एयर है, मैं दोबारा से करेक्ट करता हूँ, ऑफ एयर है आप। अच्छा अब बताओ क्या कहना चाह रहे हैं?
2: पहले तो मुबारकबाद हो पूरी टीम को, पूरी इंतजामिया को, रेडियो पाकिस्तान की।
0: उन्होंने
2: नौजवानों के लिए एक इतना,
0: ऐसा लग रहा है जैसे बहुत दूर से बात कर रहे हो। और हम जरा माइक को करीब करो या हैंड फ्री लगाइए तो उसको उतार दो।
2: जी जी अब आ रही है।
0: बिल्कुल बिल्कुल ठीक आ रही है, बिल्कुल ठीक आ रही है।
2: हाँ जी मैं कह रहा हूँ कि आज जो डॉक्स और पूरी रेडियो पाकिस्तान की टीम को जो है मुबारकबाद।
0: बिल्कुल ऐसे ही,
2: के लिए इतना अहम कदम उठाया और ये बहुत जरूरत थी हमें और हमारे नौजवानों को। और इसके साथ ये कि आपका प्रोग्राम बहुत बेहतरीन है, जो सुन रहा हूँ, और हमेशा की तरह बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। और वेरी गुड, और डॉक्स को सलाम।
1: वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम
2: सर, आप कैसे हैं? खैर खैरियत?
1: अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनाएं, आप ठीक हैं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह आपका भी प्रोग्राम सुना मैंने। और
1: क्यों
0: नहीं सुना? क्यों
1: मतलब रीजन होना चाहिए ना, देयर इज ऑलवेज अ रीजन।
2: फिलोसफिकल आपकी
0: मतलब दिल दिन नहीं से गुजर रहा है, उन्हें क्या चलो आ लाके सुन लेने दिल नहीं लग रहा उन्हें क्या, इधर की आवाज अच्छी है ना सुनते
1: हैं। नहीं टाइम किल करने के लिए जरूरी था मैं सुन लू है।
0: हाँ
2: मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है, मुझे मेरे ना मोहल्ले में तीन चार लोगों ने कहा है।
0: तुम्हारे मोहल्ले में तुम्हें क्या कहते हैं?
2: बड़े बड़े वो कह रहे हैं कि बड़े लोगों की जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो भी शुरू होना चाहिए, उसके ऊपर भी आना चाहिए।
1: और वो कह रहे कि आप इसमें उम्र की कोई कैद नहीं होनी चाहिए। सानू पता है।
0: थैंक यू वेरी मच अरहम, बहुत मजा आया तुमसे बात करके।
1: और कोई बात ही सुना दो आज आई गई।
0: अरहम तुम आ गए हो तो यार कोई बात ही सुना दो यार, डॉक्स कह रहे हैं।
1: खरी खरी सुनाओ
0: बात सुनाओ बात सुनाओगे तुम मतलब आगे बोलोगे?
2: मैं मतलब ये कह रहा हूँ ना कि सर जो है
0: थैंक यू वेरी मच अरहम।
1: इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी कोशिश है हम अच्छे काम करके लेगेसी छोड़ के जाएं।
0: यस
1: और आगे एक इनिशिएटिव
0: छोड़ के जाएं,
1: इवेंचुअली जाना ही होता ना आपने कहीं ना
0: जो आया है उसने चले जाना।
1: तो अभी ये है कि आगे एक और कोशिश है प्लान एग्जीक्यूट करने की, अगर अल्लाह करे वो कामयाबी से कर पाए हम विद द हेल्प ऑफ माई टीम एंड ऑल द मैनेजमेंट, तो मैं यहाँ पे हुआ ना हुआ आप मैं हम जहाँ पे भी हुए ये एक इंडस्ट्री बन जाएगी दोबारा से, और यहाँ से कंटिन्यूसली प्रोडक्ट्स बन के निकलती रहेंगी
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
1: ये दुआ है। थैंक यू वेरी मच।
0: थैंक यू वेरी मच अरहम, बहुत शुक्रिया, सलामत रहे आप। बात
2: नो प्रॉब्लम, थैंक यू जी,
0: अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच। कॉल कर सकते हैं आप 0421100101 हमारे और आपके दरमियान रابطے का नंबर। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम
0: जी, कौन बात कर रही है जी?
3: इंसान ने कहा था बाद में बात करेंगे।
0: हाँ निमरा, क्या हाल है आपके? आप खैरियत से हैं? आप ठीक हैं? उस वक्त अफसाना में पढ़ने लगा था। आप इस वक्त ऑफ एयर नहीं है, ऑन एयर है। आप जो भी कहना चाहें कह सकती हैं, आरजे डॉक्स भी आपको सुन रहे हैं।
1: वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन, आप बताएं।
0: एक्साइटेड है वो, उसको खुशी हो रही है इतनी कि आज मेरी डॉक्स से और रहमान से बात हो रही है।
3: आज
0: मैं क्या करूं, किधर जाऊं?
1: थैंक यू निमरा, थैंक यू वेरी मच।
0: यार इन्हें फिर सर ना कोई प्रैंक तो नहीं कर रही हो निमरा जी? है वो प्रैंक तो नहीं कर रही? वैसे
1: कुछ भी हो सकता
0: है, हो कुछ भी सकता है। ऐसी ऐसी ऐसी
3: मैं कोई प्रैंक नहीं कर रही, क्योंकि मैं ना 3 साल से रेडियो सुन रही हूँ। ठीक है, आरजे डॉक्स मुझे बहुत पसंद है, मेरे फेवरेट टाइम।
0: वो भी तकरीबन 3 साल पहले ही आई सी रेडियो से, दस रहे दोबारा। ठीक है, ठीक है जी निमरा, कहें क्या कहना चाह रही।
3: जब आप अफसाना सुना रहे थे ना, आपने अफसाना सुना के बंद किया, ठीक है, फिर एक सॉन्ग लगा। मैं ना चांद को देख रही थी, तो मैंने ना जेन में घूम रहा था, मैंने कहा यार आज ये डॉग्स ही आ जाए। अच्छा,
0: अफसाना सुन के जब मैंने सॉन्ग लगाया तो वो चांद को देख रही थी और उसका जहन में यार मैं दोबारा रिपीट करना चाहता था मुझे दसन वास्ते इसी तरह सुनी थी गल।
1: मैं
0: अच्छा तुम ज्यादा अच्छे तरीके से सुन,
1: मैं उसकी आवाज सुनना चाह रहा हूँ। आप अपनी आवाज सुना सुना के ना वो
0: जो
1: रस घोलती आवाज का मजा है वो खराब कर देते हैं। आप चुप कर दे,
0: अब मैं
1: जी निमरा आप बोलो।
0: ए ना मेरा प्रोग्राम
1: निम्रा बोलो बोलो जी, बोलो, बोलो।
3: अच्छा मैं ना चांद को देखी थी, तो मैंने ना आज डॉक्स का प्रोग्राम नहीं सुना, वो इसलिए क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स घर आ गई थी और वो मुझे घसीट रही थी कि आज तुमने कुछ नहीं सुनना, आज हमारे साथ टाइम स्पेंड करो। तो मैं चांद देखी थी, चांद देखते देखते जेन में आया यार आज डॉक्स की आवाज सुने, मेरे कान सुने पड़े एकदम से इनकी आवाज में, इतनी खुश हुई इसका भी सुना दी।
1: क्या करती हो आप, पढ़ती हो?
3: जी।
1: कौन सी क्लास में?
3: मैं एट में।
1: किसमें?
3: एट क्लास में।
1: एट क्लास में हो, यू टू यंग। तो मेरी फिर आप मेरा प्रोग्राम सुनती हो, मेरे प्रोग्राम में तो बातें नॉर्मली बड़े लोगों की हो रही होती हैं, और स्कूल गोइंग तो मैंने कभी टारगेट नहीं किया आइंदा से, बल्कि मैं जहन में रखूंगा ये बात। अच्छा किया आपने बताया मुझे।
3: मैं आप लास्ट प्रोग्राम जो मैंने आपको वेडनेसडे थर्सडे को जो सुना था ना, उसमें आपने लव लैंग्वेज की बात की थी। ओह माय गॉड, आरजे डॉक्स आपको किसी से हुआ?
1: वी वी वी वी लुक एट यू, यू आर इन 8th क्लास एंड यू आर आस्किंग सच अ मैच्योर क्वेश्चन।
0: दसो जवाब देना।
1: इंसान की जिंदगी में ना
0: हाँ
1: कोई ना कोई तजर्बा आपको हो जाता है, और फैंटेसी जो होती है ना
0: हाँ,
1: जो आपकी लव लैंग्वेज की मैंने बात की है, ख्वाहिशात होती हैं। जैसे मेरे अंदर एक ख्वाहिश है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बारिश हो रही हो, एक लंबी सड़क हो जिस पे हल्की हल्की सी रोशनी हो, जिसके अतराफ में दरख्त हो, और मैं खामोशी से चलता रहूं। अब ये फैंटेसी है, ये कहीं पे है नहीं। हाँ इससे मिलते जुलते मनाजर मुझे मिल जाते हैं, इस्लामाबाद जाऊं या कहीं और, लेकिन जिस तरह एक्चुअली मैं चाहता हूँ उस तरह का नहीं मिलता। तो इस तरह फैंटेसीज होती है ना आपकी, आप सोचते हैं चीज़ों को, वो चीज़ें तो आप भी बहुत सारी सोचती हैं, मैं भी सोचता रहा हूं। मैं भी सोचता था स्कूल में मैं बड़ा हो जाऊंगा, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। अब मैं सोचता मैं स्कूल में वापस क्यों नहीं जा सकता, इस तरह ही होता है।
3: आज ये डॉक्टर मैंने आपसे एक क्वेश्चन करना है कि बंदा जब यंग एज में जा रहा होता है, ठीक है, तो वो क्यों इस इश्क मशूके में पड़ जाता है, व्हाई वजह?
1: वो कहाँ से लेके आ रही है ये सवाल?
3: मेरे जेन में है यार। मैं आप इसका जवाब दे फिर मैं आपको बताती हूँ ये मैंने आपसे सवाल क्यों किया। जवाब दे।
1: Look at you. अच्छा आपके लिए नहीं, बाकी सुनने वालों के लिए भी है, सारों के लिए, और जो स्कूल कॉलेज में है उनके लिए भी ये देखें कुछ चीज़ें होती हैं आपकी जिबिलत में, जिन्हें कहा जाता है जब आप पैदा होते हैं ना, आपके अंदर वो चीज़ें आ जाती हैं,
0: आ जाती हैं।
1: अपोजिट जेंडर है उसकी तरफ अट्रैक्शन होना, उसको समझना, देखना, और फिर आप माशरे में अपने इर्द गिर्द चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले आप घर में देखते हैं, मेरे माँ बाप हैं, दे आर मैरिड और दे आर हैप्पी, दे आर सेटल्ड, दे लव ईच अदर। तो आपके अंदर एक ख्वाहिश पैदा होती है कि मेरी ज़िंदगी में भी कोई एक मेरा साथी ऐसे होना चाहिए जिसके साथ मेरा ऐसे रिलेशनशिप हो, ताल्लुक हो, अच्छा हैप्पी रिलेशनशिप, कट्ठे रहें, लाइफ को एंजॉय करें। तो वहाँ से फिर आपके अंदर ये एक फील ट्रिगर होती है, फिर होता ये स्टार्ट फाइंडिंग समवन फॉर योरसेल्फ। आप अपने लिए किसी को ढूंढना शुरू करते हैं। उस ढूंढने के चक्कर में बहुत सारी गलत जगहों पे गलत किस्म के लोगों से मुलाकात हो जाती है, कभी कोई अच्छा मिल जाता है, कभी कोई गलत मिल जाता है।
0: बिल्कुल।
1: तो उसी से फिर जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया इश्क मशूकी वाला, वो फिर सिलसिला चल पड़ता है। बहरहाल आप अभी एट्थ में, आपने ऐसी बातें किया करो, आप बातें किया करो केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, कंप्यूटर शंप्यूटर इस तरह की।
3: नहीं, मैं एक मेरी खत्म होने वाली है और उसके बाद मेरी इर्द गिर्द जो दोस्त रहती है वो काफी इस चीज में है और आगे आप समझ आ रहे हैं।
1: चलो ठीक है लिम्रा, कोई और बात?
3: मैं आपको एक शेर सुनाना चाहूंगी।
1: जी सुनाओ।
3: पक्का?
1: जी जी सुनाओ सुनाओ।
0: लप रही है, लप रही
3: है। मत करना बहुत बेकार जाती है।
1: क्या?
3: वफा की जंग मत करना बहुत बेकार जाती है। जमाना जीत जाता है, मोहब्बत हार जाती है। हमारा तस्वीरा ना छेड़ो, हम ऐसे लोग हैं जिनको, हमारा तस्वीरा ना छेड़ो, हम ऐसे लोग हैं जिनको नफरत कुछ नहीं कहती, मोहब्बत मार जाती है।
1: हुए हुए हुए हुए हुए हुए। लगदा रही है ठवी जे।
0: नहीं नहीं
1: है ना। चलो इमरा, मुझे हैरान कर दिया आपने। बार तीन साल से सुन रही हो, फिफ्थ क्लास में थी तब सुनती थी मुझे। ओ माय गॉड। अच्छा
3: यार, आज उस बात को सुने
1: सुना।
0: बाहर जाके कमरा बंद कर दो।
1: सुनाए सुनाए।
3: मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं एक अकेले बंद कमरे में ही खड़ी होकर बात कर रही हूँ।
1: जी बताओ। बताओ बताओ।
3: बात ये है कि मैं
0: इन्हें कोई गल कर देनी है, मैं तुम्हें दस रहा।
1: बताओ बताओ सुन लो।
3: एक बॉय है, नाम है फुरकान।
1: सुल्तान?
3: फुरकान।
1: फुरकान, ओके। हाँ,
3: वो मुझे अच्छा लगता है।
1: ओके,
3: ठीक है। और कहानी बहुत अच्छा लगता है।
1: ओके,
3: और उसने मुझे ये बात की क्योंकि मेरा ना एक मसला है।
1: हाँ जी।
3: मैं उसके घर भी बहुत ज्यादा जाती हूँ, वो अब नहीं ऐसा है, वो पहले से ही था। मैं बहुत ज्यादा उसके घर जाती थी, सब लोगों के घर जाती थी। उसने मुझे ये बात की है कि मैं उनसे 3 हफ्ते बाद मिला करूंगा, तब तक मैं किसी को अपनी शक्ल नहीं दिखानी, ना तुमने खेती में आना है, बस तुमने घर नहीं बंद रहना है, ठीक है, ना तुम्हें ऊपर जाना है, ना तुमने गली में जाना है, ना तुम्हें मेरे घर आना है। तो आप ये बताएं ये सब क्या है यार?
1: ये आपको पता है, उसे पता है।
0: हाँ,
1: ये इस पे मैं क्या ही कह सकता हूँ। ये आपका उसका जाती सा मामला है। ऐसे ही मैं कमेंट करूँ या रहमान
3: करे? नहीं, आप भाई करें कमेंट।
1: अब देखो आपकी एज पता है, आपने बताई आप एट्थ में हो, बड़ी दुनिया इस वक्त सुन रही है आपको, सारे मैच्योर किस्म के लोग सुन रहे हैं आपका। एक बात जा रही, सिर्फ आप नहीं है यहाँ पर, सुनने वाले बेशुमार लोग हैं। और मेरी ये सजेशन है कि इस एज में आपको चाहिए, इंसान को बहुत सारा एक्सपोजर मिलता है, अच्छा लगता है आपको किसी से बात करना, कोई चेहरा कोई शख्स, सोशल मीडिया की वजह से आपको अर्ली एक्सपोजर हो जाता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मेरी ये आपसे भी और बाकी सबसे भी रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट ख़ुद को होल्ड करके रखें, स्कूल लाइफ गुजर जाए, उसके बाद चीज़ें आपको बेहतर अंदाज में समझ आती हैं कि क्या मुझे डिसीजन लेना है और क्या नहीं लेना, अपने लिए किसको चुनना है किसको नहीं चुनना, और कौन एक्चुअली मेरे साथ लॉयल है और कौन मुझे कैद करना चाहता है। ये चीजें आपको फिर आगे जाके समझ आएंगी।
3: लेकिन अगर मैं आपको ये बात कहूँ ना, उसने जो ये कैद वाली बात की ना, बाद में मैंने अपनी फ्रेंड से ये चीजें डिस्कस की, तो ये बात हुई कि वो तुम्हारा ख्याल ही कर रहा है, क्योंकि मैं बाहर जाती हूँ, वो कहता है कि तुम्हें और लोग देखते हैं और लड़के देखते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। बट
1: देखें ये ना, अभी बहुत छोटी उम्र में है आप लोग, इस एज में आई बिलीव कि आप लोगों का फोकस स्टडी पे होना चाहिए। आप ठीक है चीज़ें लर्न करते हैं, बहुत सारा आप सोशल मीडिया पे इधर उधर देख के हर तरह से लर्निंग कर रहे हैं, बट आई इंसिस्ट फरकान है, आप हैं, जो भी है, आपका अभी फोकस ये होना चाहिए कि आप अपनी स्टडी को कंप्लीट करें, कम से कम अपनी स्कूल लाइफ कंप्लीट करें। ठीक है जो भी है, आपकी फीलिंग्स वैलिड है, मैं या रहमान या कोई और इनवैलिडेट नहीं करता, लेकिन कंसिडरिंग द एज आपको अपनी स्कूल लाइफ कंप्लीट करनी चाहिए, उसके बाद फिर आपके डिसीजन इजी होते हैं।
3: मैं 8 में हूं, मैं 8 में हूं, वो 9 में है, मैं 17 इयर्स की हूं, वो 18 इयर्स है।
1: आप 17 साल की हो?
3: जी हां, वो 18 साल का।
1: इस 8वीं 9वीं से बड़े बड़े बच्चे कितों आ गए?
3: बस देख ले, आ गए ने। मेरा ना असल में लेट एडमिशन हुआ था, तो फिर एकदम से मैं 8 में जंप।
1: चले खुश रहें,
3: जैसे ये कहते हैं आप अपने शो में कहते हैं ना, जब तक जैसे अपने शो में कहते हैं ना, जब तक रहमान भी नहीं आएगा तब तक हमारा डांस नहीं होगा, तो समझ ले मेरा भी ऐसे ही काम होगा।
1: चलो निम्रा अपना ख्याल रखो, इस पे फिर किसी दिन इस तरह का मौजूद हुआ तो उस पे डिस्कशन मैं जरूर करूंगा, ठीक है? फिर आप सुनना, ठीक है? ओके, थैंक यू।
0: सलाम अलैकुम।
4: वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है
0: जी, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? खैरियत से? आप ठीक हैं?
4: अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र, और सफेद फाट
0: जी, सब फिट फाट लगा कर रहा है। आप बताएं।
1: हैरान परेशान।
4: अल्हम्दुलिल्लाह निशान बहुत करन लाहौर से।
0: जी जिशान, क्या कहना चाहेंगे?
4: फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये बच्ची की दुआ सुनी कुछ।
0: यार आपकी आवाज में दरअसल आप बहुत ज्यादा माइक के करीब आकर बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रही।
4: चलिए अब ठीक है?
0: अब बिल्कुल ठीक है।
4: मैंने कहा
1: जी जिशान भाई,
4: जी जी बच्ची की आवाज सुनी मैंने, बच्ची के टॉपिक जो सुना है। तो इस लाइफ में तो ये चीज होना बेटर है, मतलब होती है, ये बेटर नहीं है, होती है ये चीज।
1: बेटर है, मैं भी डर गया, मैं कहे कि हो रहा बेटर है इस लाइफ में होना।
4: नहीं नहीं,
0: जिशान और कोई बात कहना चाह रहे?
1: नहीं, वो टॉपिक एक डिस्कस कर रहा है, वो कह रहा है कि इस एज में ये होती है चीज। आपकी बात वैलिड है, अट्रैक्शन आपको डेवलप होना शुरू होती है, और समझाने वालों का काम होता है समझाना। एंड मतलब आप मैं हम सारे स्टेज से गुजरे हैं।
4: हां जी, मुबारक है, सुन्नत है, सुन्नत कह रहा हूं। अभी क्या है, 13 साल की बच्ची जो है वो नानी और दादी बनी।
0: यार एक पहले कहता बेटर होने का था, सुन्नत है यार, की कर रहे हैं यार?
4: नहीं नहीं नहीं,
0: अच्छा
4: बड़ा सुनना शो गया था, शो सुनता है।
0: अरे तुम अपने परेशान ना हो, इजी होके बात करो।
4: नहीं नहीं,
0: हां
4: मैं सो गया था कि शो सुनते हुए ना, मैं काफी देर से वेट कर रहा था।
0: अच्छा,
1: आपने आज का शो सुना है रहमान भाई का?
4: कुछ सुना है और कुछ
1: क्या आज आपके आपको आज के शो में
4: नहीं पता
1: क्या चीज जितना सुना है उसमें
0: क्या चीज
1: पसंद आई?
4: फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनका अंदाज जो है ना किसी को भी गाइड करने का भाई का दूसरे ठीक है रहमान भाई नहीं है जो भी बोल रहे थे
1: जी जी
4: फर्स्ट ऑफ ऑल इनका अंदाज किसी को भी गाइड करने का बहुत अच्छा
1: है ना
4: जी
1: यकीन करें इसलिए मैं बैठा हूँ यहाँ पे
4: हाँ रहमान भाई का काम है सिर्फ हंसना
0: हाँ इस रही है थैंक यू वेरी मच जिशान बहुत बहुत शुक्रिया खुश रहो आबाद रहो
1: कुछ कहना चाहिए
4: इसके अलावा बच्चों को ये कहना चाहूंगा कि आप जो है ना ऐसी लाइफ रख के आप दूसरा तो दूसरी चीज पे घर पे फोकस ज्यादा करें
1: बिल्कुल सही जिशान भाई बहुत अच्छी बात अपने
4: माँ बाप की बातों को सुने उन्हें देखे और क्या कह रहे हैं चलिए ठीक है अल्लाह हाफिज
1: थैंक यू जिशान भाई
0: बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज कॉल कर रहे हैं जी आप 0421100001 अस्सलाम वालेकुम
5: जी वालेकुम अस्सलाम सर क्या हाल है लाहौर से इरम बात कर रही
0: हूं जी इरम
5: जी सर कैसे हो
0: अल्लाह का बहुत करम है बहुत एहसान है क्या कहना चाहेंगी
5: असद भाई सर आपका क्या हाल है
1: अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्लाह का शुक्र आप बताइए
5: माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम रहमान भाई आपका वो आप गाना भी सुना था और अभी जो बात हो रही थी वो भी सुनिए
0: जी
5: और मैं यही कहना है कि ये जो लड़की को बच्ची को ये कहना है कि ये सब छोड़ो पढ़ाई पे फोकस करो कहते हैं कि दुनिया के इश्क को छोड़ो शायर कहता है कि काश मुझे इश्क खुदा से होता काश मुझे खुद इश्क खुदा से होता न डर बेवफाई का न खतरा जुदाई का होता
1: सही कह रही है लेकिन शायर ने ये साथ ये भी कह दिया कि उसे हुआ नहीं
5: जी सर
0: और बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच इरम खुश रहें आबाद रहें अच्छा तो मैं यहाँ पे हंसने के लिए आता हूँ आ इम्प्रेशन तुसी मेरा बनाया
1: मैं
0: ठीक है यार अस्सलाम वालेकुम कौन बात कर रहे हैं
1: मैं बस बात कर
0: नहीं कोई बात नहीं कौन बात कर रहे हैं
6: बात कर रही
0: है जी ये आपसे बात करने के लिए आई हैं
6: मुझे आपसे ही बात कर
0: जी बताइए बिस्मा क्या कैसे मिजाज हैं खैरियत से आप ठीक हैं क्या कहना चाहेंगी
6: मैं ठीक हूँ अभी जो लड़की की कॉल आई मैं सुन रही थी और मुझे आइडिया हो रहा था कि ये 14 ईयर की नहीं हो सकती मतलब 13-14 साल की नहीं लग रही अपना एक और याद
0: नहीं 17 साल की है उन्होंने बता दिया था
6: हाँ आपको मुझे लग रहा था ये ना बड़ी एज
0: हाँ हाँ ऐसे ही
6: मुझे अपना दौर याद आ गया ये ना जब मैं थी 9th क्लास में ना मेरी फर्स्ट टाइम कॉल मेरी थी ये जो कि 100 के वहाँ एक आगे होते थे वो बॉबी नाम राणा बॉबी
0: बहुत बहुत अच्छे आरजे हैं बहुत प्यारे दोस्त हैं बिल्कुल ऐसे ही
6: हाँ वो फर्स्ट टाइम जिंदगी में पहली दफा उनके बात में
0: अच्छा
6: वो ना मैंने इतनी कॉल्स की जैसे मैंने लास्ट शो उनका सुना ना नेक्स्ट शो में जब वो आए बोलना शुरू हुए मैंने कॉल्स करना शुरू कर दी एक मोबाइल से मतलब एक मोबाइल होता पापा का तब मैंने पकड़ा हुआ था बटनों वाला
0: सही
6: है मैं भी कॉल भी करूँ पूरे 2 घंटे एंड पे जाके मेरी कॉल में मैंने उन्हें बोला मतलब मैं लड़ना ही शुरू हुआ मुझे कॉल ही नहीं एक तो बड़ी हार्ट की तेज हो जाती है ना मेरी तो प्रॉब्लम में चीज दिन शुरू हो गया सारा सिस्टम काम करना शुरू हो गया उस काम की मैंने उनसे लड़ जैसे बंदा लड़ता नहीं आपको नजर नहीं आ रहा था इतनी कॉल की मैंने और आपको जरा दिखाई नहीं दे रहा जान पूछ के इग्नोर जो बंदा उठा ही लेता है कि एक बंदे ने 100-150 कॉल कर दिए कौन है किस हालत में मतलब लगता है ये आप किस तरह के लोग बोलना शुरू हो बोलना चुप करके सुनते रहे बाद में कहते कि यहाँ हमें नहीं पता होता कि इस तरह मैंने सारा उन्होंने बताया
0: नंबर शो नहीं हो रहा होता दरअसल और साथ में लाइट ब्लिंक हो रही होती है कभी उस पे नजर जाती है कभी नहीं जाती
6: मुझे कहते मुझे पनिशमेंट दो मुझे पनिशमेंट दो मैं जुबान पर निकाल के खड़ा हो जाऊँ हाथ ऊपर करके मैं नहीं
0: ठीक है,
1: और सूट करना था उस पर,
6: मुझे पता नहीं था। उसके बाद पूछा कि आप कौन सी, आप क्या करती हूँ, मैंने कहा मैं पढ़ती हूँ, मैं नाइन्थ क्लास में हूँ। फिर उन्होंने पूछा आप फीस क्या, मैंने कहा 14 ईयर्स। अच्छा तो आप क्या मतलब पढ़ते नहीं हो क्या, सुनती ऐसा नहीं सुनते हो आप, मैंने कहा हाँ मैं ना मुझे ना गाना सुनाना है। वो ना गाने सुनते थे मतलब सिंगिंग जैसे कॉम्पिटिशन होता था ना, वो गिफ्ट हैम्पर्स देते थे, तो मैंने गाना सुनाया वो वाला, सुनी नहीं जमाने तेरी मेरी कहानियाँ तेरा वो प्यार याद आ गया। ठीक है वो मैंने सुनाया, तो फिर उन्होंने कहा कि आपकी आवाज़ बहुत प्यारी, आपने बहुत अच्छा से गाया, आपको गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। वो आज तक गिफ्ट हैम्पर मुझे नहीं मिला, मुझे वहाँ पर फंसा हुआ है, मुझे सदमा उस चीज़ का है, वो कब आएगा। तो मैंने ना बहुत, मैंने आहिस्ता बाद में बात कर थी मेरे पापा ने सुन लिया होगा कि रात के 2 बजे किससे बातें कर रही थी जिसमें, तो ना मम्मा को शुक्र है सुबह मैंने खुद ही बता दिया मम्मा को कि मम्मा मेरी ना मैं FM पे मैंने कॉल की और मेरी आजी ने कॉल पिक कर ली, मेरी बात हुई, मैं बड़ी खुश। ऐसे जैसे बंदा बड़ा एक्साइटेड होता है, मम्मा को पूछे तुमने क्या बात की, मैंने कहा मैंने गाना सुनाया, मुझे गिफ्ट मिलेगा, आपको गिफ्ट हैम्पर आएगा। वो उन्होंने मेरा नंबर भी लिया था, गिफ्ट नहीं आया। मैंने कहा देखिए क्या बात है, कैसे दे देंगे, क्या होगा, मैं जीती हूँ, मेरी आवाज़ अच्छी लगी उनको, ये वो। तो इतनी एक्साइटेड उसके बाद पापा ने बताया कि पता नहीं किसी गुस्से बातें करी थी, रात को 2 बजे लगता है शायद बातें करी थी, शायद खुद से। मम्मा कहती हाँ हाँ खुद से घर से थी, मैंने पहले बता दिया था मम्मा को। तो ये थी ना जब इस लड़की की बातें सुनी मुझे ये याद आ गया, मैंने कहा मैंने तो कभी भी ऐसे बात नहीं की मतलब यार करके, और मतलब मैं तो ऐसे डरी और बस मैं गुस्सा, मुझे आदत है मेरी गुस्सा करने वाली, बहुत गुस्सा करती हूँ मैं। उस दिन मैं आपसे पूछ रही थी ना कि गुस्सा मतलब जिनको बहुत आता हो वो क्या मतलब करें, तो आपने ऐसे प्रैक्टिस बताई। आप मुझे सुन रहे हैं?
0: जी।
6: नहीं,
0: मैं आपकी बात बड़े गौर से सुन रहा हूँ।
6: अच्छा आपने मुझे जो प्रैक्टिस बताई थी ना 15 मिनट के लिए चुप कर गए आप जब गुस्सा आए,
0: बिल्कुल ऐसे ही
6: 15 मिनट के लिए कौन चुप करता है, 15 सेकंड के लिए कोई सोचता नहीं।
0: हाँ उस वक्त नहीं सोचता, इसी चीज की तो ट्रेनिंग करनी है, इसी चीज की तो प्रैक्टिस करनी है।
6: 15 मिनट में हमें कोई मार मोड़ के वो चला जाए,
0: हाँ ऐसी सिचुएशन है तो फिर ऐसे चुप नहीं करना। सिचुएशन पे डिपेंड करता
6: है। रहमान भाई सही है, आपने इसी जगह पहुंचा दिया हमें, 15 मिनट चुप रहे हैं तो कब्र में आंख खुल रही है। ऐसे वो बोलना 15 मिनट, कोई और तरीका बताएं।
0: आप चुप ना रहा करें, आप बोला करें।
1: मैं गुस्सा आता है इसके लिए तरीका ये होता है, जैसे ये आपका थॉट ट्रैवल प्रोसेस होता है, आप कोई आवाज़ सुनते हैं उसके बाद एक थॉट ट्रिगर होता है, थॉट ट्रिगर होने के बाद इट डायरेक्टली गोज इनटू योर ब्रेन और ब्रेन आपका फिर वहाँ से आपको रिएक्शन आगे से सजेस्ट करता है। वो जो सजेशन आपको आ रही होती है ना उसमें कहते हैं 3 सेकंड का आपने पॉज लेना, जो भी आपको रिएक्शन आ गया, जो भी फॉरन रिएक्शन आ गया ना, साइकोलॉजी सेज कि आपने खुद को कहना है कि ओके मैं ये रिएक्शन देना है लेकिन मैं 3 सेकंड का पॉज लूंगी। वो 3 सेकंड का पॉज जो है ना वो आपके रिएक्शन को चेंज कर देता
0: है। सही है,
1: जब आप गिनते हैं ना।
0: लेकिन आपने उनकी बात गौर से नहीं सुनी, वो ये कह रही है कि अगर सामने से कोई मारने के लिए आ जाए तो उस वक्त क्या मैं 15 मिनट तक सोचूंगी या 3 सेकंड तक सोचूंगी?
1: नहीं, मारना
0: चाहे 1 सेकंड के लिए भी कोई सोच ले
1: उस वक्त
0: तो फिर तो खत्म हो गया ना।
1: उस वक्त तो या तो आपने दौड़ना है,
0: हाँ उस वक्त तो या तो आपने मारना है या दौड़ना है। सिंपल सी बात है, इसमें तो आप 15 मिनट के लिए ना नहीं ना सोच सकती।
1: नहीं फिर आपका
0: इसके लिए जरा मुश्किल है आपके लिए, आपके पास भी एक आध कोई ऐसी चीज होनी चाहिए। बहरहाल आपकी कॉल हमें रिसीव हो रही है 0421100101। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम,
7: मोहम्मद आसिफ लाहौर से।
0: जी आसिफ भाई क्या कहना चाहेंगे?
7: हजारों साल में अर्गस अपनी बेनूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आज
0: दीदावर
7: रहमान भाई
0: जी बहुत खूबसूरत।
7: आज के डॉक्टर साहब से मुझे गिला है बहुत बड़ा।
1: जी सर करें
0: गिला बताएं।
7: शो में मैंने जब भी कॉल किए कभी कॉल लगी नहीं।
1: सर माजरत कबूल करें,
7: ये पहली दफा हुआ है, जो पहले भी सुनता रहा हूँ कि इतना लॉन्ग टाइम मुझे वेट करना पड़ा, नहीं तो पहली कॉली पे ही हो जाता है। सर टॉपिक क्या था कि मैं तो कॉल मंगलाने में लगा रहा हूँ।
1: टॉपिक ये था कि कॉल मिलाने के तरीके बताएं।
7: कॉल मिलाने का, एक से बिजी जा रहा है, फौरी काट के दोबारा दियो, फौरी काट के दोबारा।
0: उसके लिए दो मोबाइल रखने चाहिए, एक से कॉल मिलाए, फिर दूसरे से मिलाए, फिर तीसरे से मिलाए, फिर ऐसे हो जाते हैं।
7: मान भाई एक खरीद के दे दो मुझे।
1: इसका तरीका ये होता है, आप कॉलर को सुन रहे होते हैं ना, कॉल चल रही है, आप नंबर डायल अप पे रखते हैं, जैसे ही वो कॉलर कहता है ना ओके जी अच्छा है, आरजे ने कहा ओके जी अपना ख्याल रखें, जैसे ही ये बात हुई उसी वक्त मिलाते हैं, क्योंकि जैसे कॉल कटती है उसी वक्त आपने लेनी है लाइन।
7: मेहमान भी आपके लिए एक दो लाइनें।
0: जी जी सुनाइएगा, आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो,
1: लाइनें ढूंढने गए हम।
0: 0421100101 हमारे और आपके दरमियान रबते का नंबर, आप कॉल करना चाहें कॉल मिलाइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। जी कौन बात कर रहे हैं जी, क्या नाम है आपका? हेलो।
1: हर कदर इस कदर खाम ख्याली क्यों है?
0: वाह, इस कदर खाम ख्याली क्यों है?
1: हर कोई फर्द सवाली क्यों है?
0: वाह वाह वाह।
1: खुशी का रंग है क्यों उतरा हुआ? गम के चेहरे पे ये लाली क्यों है?
0: वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत। गम के चेहरे पे लाली क्यों?
1: थॉटफुल है,
0: बहुत खूबसूरत।
1: खुशी का रंग है क्यों उतरा हुआ?
0: वाह।
1: गम के चेहरे पे ये लाली क्यों है?
0: वाह वाह।
1: रोने से चेहरे लाल हो जाते हैं, आंखें भी लाल हो जाते हैं,
0: ऐसे
1: है ना। इसमें डाला ही नहीं इश्क अगर,
0: इसमें डाला ही नहीं इश्क अगर,
1: उनके चेहरे पे ये लाली क्यों है?
0: वाह वाह।
1: रोने से चेहरे लाल हो जाते हैं, आंखें भी लाल हो जाते हैं,
0: ऐसे
1: है ना। इसमें

0: है उसका।
1: इसमें डाला ही नहीं इश्क अगर फिर भला चाय उबाली क्यों।
0: वाह वाह वाह बहुत खुश।
1: इस कदर खाम ख्याली क्यों है, हर फर्द सवाली क्यों है, खुशी का रंग है क्यों उतरा हुआ गम के चेहरे पे ये लाली क्यों है। इसमें डाला ही नहीं इश्क अगर फिर भला चाय उबाली क्यों है।
0: वाह वाह।
1: कैद करना है तो पर काट मेरे,
0: कैद करना है तो पर काट,
1: कैद करना है तो पर काट मेरे, ये तेरे हाथ में जाली क्यों है।
0: ठीक है। अच्छा ठीक है, मतलब कि वो कैद करना चाह रहा है लेकिन पर काटे बगैर,
1: पर काटे बगैर और जाली
0: जाली है उसके पास।
1: मतलब मुझे सांस तो लेने दे।
0: हाँ सांस तो लेने दे। वाह वाह
1: बहुत। हिलने तो दो मुझे।
0: हाँ
1: इतनी तो आजादी होनी चाहिए।
0: वाह वाह बहुत।
1: कैद करना है तो पर काट मेरे, ये तेरे हाथ में।
0: बहुत अच्छा है ये, बहुत अच्छा शेर
1: है। ये इब्लीस और खुदा का झगड़ा।
0: अच्छा
1: है ये
0: इब्लीस और खुदा का झगड़ा।
1: खुदा का झगड़ा, सर पे ये दुनिया उठा ली क्यों है।
0: हाँ बहुत अच्छा है, बहुत।
1: सजदा जब कर ही रहे हो रब को, सजदा जब कर ही रहे हो रब को, फिर ये इखलास से खाली क्यों है।
0: हाँ बहुत खूबसूरत, बहुत।
1: इस कदर खाम ख्याली क्यों है।
0: बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अच्छा जी, आपके कुछ मैसेजेस हैं जी, कॉल लेते हैं आपके। 0421100101। अस्सलाम वालेकुम जी।
2: वालेकुम सलाम रहमान भाई, वो रह गया था कॉल कट गई थी।
0: जी जी क्या कहना चाह रहे थे आप। हेलो। हाँ नहीं, मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। हेलो
3: जी,
0: रहमान बात कर रहे हैं। आरजे डॉक्स बात कर रहे हैं, दोनों बात कर रहे हैं।
3: मैं फुरकान बात कर रहा हूँ।
0: जी फुरकान।
3: सर मैं आरजे डॉक्स से बात करना चाहूंगा।
0: आपसे बात करना चाह रहे हैं
1: फुरकान
3: जी। सर
1: जी करें।
3: सर क्या जादू किया है आज।
1: किस पे
3: से बात कर रही थी
1: आप दोनों, पास बैठ के बात कर रहे थे।
3: नहीं
1: फिर
3: वो कुछ बताया नहीं।
1: मुझे तो लग रहा है कि फरकान भी लड़की है।
3: मेरी मेरा करने वाली है।
1: मेरा भी गला खराब है इसलिए मर्दाना निकलती है। अच्छा बात बताओ। हाँ बताओ।
3: सर आपने उससे क्या जादू किया मुझे आप ये बता दे। वो पावन की बच्ची खुशी के मारे वो फूले नहीं से मारे
1: कुड़ी है। पागल की बच्ची फूले नहीं समारी, देखना ज्यादा फूल ना जाए।
0: मैं आज देखना चाहता किन्ने को कॉल रामदेव साहब
1: फूल ही ले जाए, ज्यादा वेट ही ना हो जाए, फिर डाइटिंग करवानी पड़ेगी।
0: हाँ फिर मुश्किल हो जाएगा उसके लिए।
3: यार मैं आपको
1: इतना फैन नहीं कर सकती। हाँ निकल आई ना कर सकती। देखा। हाँ जी कौन बोल रहा
3: है। कौन बात कर रही हूँ अभी आप बताएं। मैं उसकी दोस्त बात कर रही शामिल।
1: अब दोस्त उसके साथ बैठी थी।
3: जी जी मैं उसके साथ ही बैठी हुई थी और वो
1: रात के इस पहर में दोस्त बैठी है साथ। ओह माय गॉड तुसी तो मुंडे है ना लो भी अगे लंग गई हो।
3: सर जी नया जमाना आ गया।
1: हम बड़े पुराने लोग हैं, मेरे कपड़े भी पुराने हो गए ने, जगह जगह तो पाटे पे ने।
3: अच्छा बताएं सर आपने क्या उस लड़की पे जादू किया है, क्या वाल से जादू किया है, बताएं सही कुछ।

0: मैं ना जब भी कॉल उठाता हूँ उससे पहले एक मंत्र पढ़ता हूँ, वो मंत्र पढ़ने की वजह से ना जादू हो जाता है, मैं करता नहीं खुद ही हो जाता है।
1: इसका मतलब मैं भी कॉल कट करूंगी तो मैं भी ऐसे पागलों की तरह छलांगे मारूंगी।
0: वो तो अभी मार रही हो आप?
1: नहीं
0: नहीं मार रही।
1: नहीं
0: चलो कोई बात नहीं,
1: अगर वो जरूर मार रही है
0: वो आप पे, मैंने जादू ये किया आप छलांगे ना मारो।
1: अच्छा
0: हाँ
1: अच्छा, रहमान भाई ने टॉपिक रखा था।
2: जी जी, क्या टॉपिक रखा था मुझे बताइएगा जरा, आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा जी, एक और कॉल है।
0: जवाब में चारागरी नहीं आती, मैं मान
2: कॉल आई, एक कॉल आई, कॉल रिसीव
0: नहीं आती।
2: अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम
2: जी, कौन बात कर रहे हैं?
0: जो आ रहे हैं वादे के हो जी, आज कॉल आ रही है, मैं परेशान
2: जी। कौन बात कर रहे हैं जी? आपकी आवाज कट रही है, क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम चल रही है?
0: ये किस किस्म की कॉल आ रही है? आई सीरियसली वंडर,
2: सीरियसली
0: वंडर।
2: मैं भी
0: मतलब अच्छा यार,
2: स्कूल में
0: बच्चे भी सुन रहे हैं।
3: सलाम, आसिफ लाहौर से बात कर रहा
2: हूं। जी आसिफ,
3: अब तुझे याद न करूं तो बदन टूटता है।
2: अच्छा,
0: हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय,
2: वाह वाह,
0: दोबारा आए, दोबारा आए,
2: वाह वाह वाह वाह, दोबारा आए जरा आसिफ।
0: अब तुझे याद ना करूं तो बदन टूटता है। हेलो हाँ। यार भाई चेक करें बाहर तो नहीं ली पाई,
2: कोई मसला तो नहीं है? कोई मसला तो नहीं? हां नहीं, आ गई आ गई आ गई। अस्सलाम वालेकुम।
0: बार बार क्यों कट रही है? हेलो,
3: उम्र बीत गई है तेरी।
2: वाह वाह वाह, ये है, ये जल्दी है।
3: रहमान भाई अगर हो सके तो जाते जाते गुलाम अली की एक गजल प्ले कर जाना, इतना टूटता हूँ कि छूने से बिखर जाऊंगा।
2: चले मैं ये लाजमी प्ले करता हूँ, लाजमी प्ले करता हूँ,
0: बहुत शुक्र के छूने से बिखर जाऊंगा।
2: फरहा अफजाल हमारे साथ,
0: तो किधर जाऊंगा?
2: आप एक गजल सुनाने लगे।
0: मैं तो दरिया हूँ, समंदर में बढ़ जाऊंगा।
2: हाँ कॉल, अस्सलाम वालेकुम।
0: हेलो
2: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम
2: जी, कौन बात कर रहे हैं जी?
3: जी मैं मोहम्मद अली बात कर रहा हूँ पिशावर से।
2: जी अली, कैसे मिजाज हैं? कल भी आपकी कॉल आई थी, मुझे याद आ गया।
3: कल भी आई थी, चलो शुक्र है अल्लाह का आपको याद आ गई बात।
2: जी क्या कहना चाहेंगे अली?
3: यही कहना चाहेंगे कि आपको एक, दोनों को एक मशवरा मैं देना चाहता हूँ।
2: जी जी बताइएगा मशवरा मुझे। हेलो
0: भाई, तार इसकी चेक करें, एक दफा वो हिलाएं,
2: प्रॉब्लम है भाई, एक बार
0: इधर वायर वायर एक दफा हिला ले,
2: एक दफा यहाँ से ना वो देखते हैं, बल्कि वो इंजीनियर सुन रहे हैं, वो यहाँ पे आके ना जरा देख लेंगे। अच्छा जी, टेलीफोन लाइन पे एक और कॉल, नहीं कोई प्रॉब्लम है। अच्छा आपके मैसेजेस की जानिब आते हैं जो
0: कर लें, एक आखिरी कॉल फिर इजाजत लेते हैं।
2: चलें जी एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी।
3: वालेकुम अस्सलाम
2: जी, कौन बात कर रहा
3: है? तार का मसला नहीं है।
2: हाँ किस चीज का मसला है?
0: सुखन के बाब में चारागरी नहीं आती।
2: हाँ
0: मैं मानता हूँ मुझे शायरी नहीं आती।
2: हाँ तो गल मननी पड़नी खूबसूरत है, अच्छा है,
0: सच्ची गल कह रहे हैं, मान लो।
2: अब तो मान ली है पान। हाँ
0: तानुआ दी।
2: हाँ
0: अच्छी बात है,
2: सुनाए।
0: सुखन के बाब में चारागरी नहीं आती, मानता हूँ मुझे शायरी नहीं आती, लेकिन फिर भी शेर सुना देता हूँ मैं आपको।
2: हर बंदा सुना सकता है। हर बंदा सुना सकता है।
0: सुनाता हूँ मैं।
2: हाँ
0: किसी
2: को सुना,
0: अपने नहीं किसी के।
2: हाँ हाँ नहीं मैं भी किसी के ही सुनाता हूँ।
0: तो सुखन के बाब में चारागरी नहीं आती, मैं मानता हूँ मुझे शायरी नहीं आती, लेकिन कोशिश करता रहता हूँ।
2: हाँ करनी चाहिए, करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, कोशिश ही तो है हमारे हाथ में से।
0: तो याद हुआ आपको कि सुखन के बाब में?
2: हाँ पता नहीं
0: चारागरी नहीं आती, मैं मानता हूं कि तुझे शायरी नहीं आती।
2: अच्छा ये नहीं याद हो रहा कि मुझे आती है। अच्छा नहीं अब मुझे याद हो गया,
0: याद हो गया,
2: याद हो
0: गया। शायरी
2: नहीं आती,
0: नहीं आती ना आपको ना मुझे,
2: नहीं मुझे आती है। नहीं मुझे आती है।
0: मेरे लहू में हमेशा
2: शायरी ताजा जमानों की है, मैमार फराज, ये भी एक सिलसिला है, कुन फयकूं है, यूं है। तो ये शायरी जो है ना ये
0: नहीं आपकी, नहीं है सर।
2: हाँ
0: ये फराज की,
2: फराज की है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको ये सिलसिला है, कुन फयकूं है।
0: दो तीन तो मुझे भी शेर आते हैं।
2: हाँ नहीं मुझे ज्यादा आते हैं।
0: अच्छा
2: हाँ
0: मैंने कोई दो तीन ही बांध के रखे हुए थे।
2: मैंने खुले छोड़े होते हैं।
0: अच्छा, सुखन के बाब में चारागरी नहीं आती, मैं मानता हूँ मुझे शायरी नहीं आती, मेरे लहू में हमेशा से ही बगावत है।
2: हाँ, यहाँ आए हैं, मेरे लहू में हमेशा
0: से ही बगावत है, मैं क्या करूं कि मुझे बंदगी नहीं आती। मैं अपने दिल की बात अपने दिल में रखता हूँ, ऐ मेरे दोस्त मुझे दोस्ती नहीं आती।
2: वाह वाह,
0: जो जिंदा दिल थे सभी कैद हैं या मारे गए। जो जिंदा दिल थे सभी कैद हैं या मारे गए, वो जी रहे हैं जिन्हें जिंदगी नहीं आती।
2: वो जी रहे हैं जिन्हें जिंदगी नहीं आती। बहुत अच्छा,
0: ये बात गहरी है, बचो।
2: अच्छा, ये बात गहरी है, बचो
0: हराम ईंधन से।
2: हराम ईंधन से
0: जले चराग भी तो रोशनी नहीं आती।
2: जले चराग भी तो रोशनी नहीं आती। बहुत अच्छा,
0: मुझे तो ये भी गमे रोजगार याद नहीं
2: बाबा,
0: कि कई रातों से अब नींद ही नहीं आती।
2: कि कई रातों से अब नींद ही नहीं आती। बहुत खूबसूरत, बहुत कमाल,
0: क्या बात, क्या बात,
2: क्या बात है। बहुत ज़बरदस्त आपके फेसबुक के पैगामात हैं, वो प्रोग्राम का हिस्सा बना रहे हैं। देखते हैं कि किस किस ने हमें मैसेज किया है। यस,

0: अच्छा जी, मुझे यहाँ पे इजाजत है रहमान भाई, थैंक यू वेरी मच जी, और
1: बहुत बहुत मजा आया, थैंक यू वेरी मच,
0: अच्छा लगा जी, और हैरान कुन कॉल्स थी तो काफी
1: हैरान कुन कॉल्स थी
0: दोनों कॉल से।
1: हाँ,
0: और अभी यहाँ पे इजाजत चाहूंगा, जाते जाते मैं ये कहूंगा कि आपने मेरी पसंद का एक और गाना लगाना
1: है,
0: पाकिस्तानी सिंगर है
1: डन,
0: और उन्होंने भी एक मूवी में गाना गाया था, वो वाला है
1: जी
0: जुदाई सॉन्ग था, चार दिन आधा, पता नहीं क्या है, चार दिन आधी, चार दिन आधा प्यार ओ रब्बा, इस तरह।
1: हेलो, तो ये उन्होंने भी गाया ना
0: मैडम, क्या नाम उनका,
2: रेशमा,
0: यस यस एग्जैक्टली।
2: अस्सलाम
0: वालेकुम। वालेकुम सलाम जी,
2: कैसे सर?
0: तुसी सो भी जाया करो, साड़ी ते नौकरी है,
2: क्यों
0: तानू पैसे लब दे ने सुनन दे,
2: अल्लाह भी ना
0: जान से, अब मैं लगदा है मैं ही
1: नहीं लब दे हैं, वैसे ना मैंने दस यार ने 2-3 हज़ार जीत चुकी है आपके प्रोग्राम में,
2: फोर्ड कंपनी,
0: आहो
1: हाँ
0: है ना,
2: हाँ वैसे वाकई हैरान कुन चीजें हो रही थी, है ना, और क्या,
0: मतलब देखें बात ये नहीं है कि पसंद तो उस वक्त हमें भी कोई ना कोई आ ही जाता था,
2: हाँ,
0: ये बात नहीं है कि ऐसी हाजी सी, मतलब एकेडमी जा रहे हो ना, बस्ता टंगया होया है, शी इज माइन शी इज नॉट, शी इज माइन शी इज नॉट, मेरी है नहीं है, मेरी है नहीं है, मतलब हम इस फेज से गुजरे, हैरान कुन ये है कि हम कह नहीं थे पाते, वो कह लेते हैं और वो आगे से कहते हैं यार मेरी बात समझे ना, फर्क ये और कोई नहीं है, और ये एक फितरी अमल है, होता है, लेकिन इसमें उस वक्त हमें भी समझाया यही जाता था, और अभी हमारा भी फर्ज यही बनता है, हम ये कहें कि थोड़ा सा जब आप मिच्योर हो जाएं, वो बाद में उन्होंने बताया कि हाँ जी ऐसी इनफ मिच्योर है, मैं 17 साल की हूँ, वो 18 का, मैं अच्छा फिर लगे रहो, फिर सानू की पूछते पे तुसी आप से आने हो,
1: हाँ,
0: मतलब वेयर यू फील के ओके यू आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन, देन हम तो दुआएं दे सकते हैं अल्लाह आपके लिए बेहतर करे, और आपके लिए आपके डिसीजंस अच्छे साबित हो, बस दैट्स इट।
2: वो कहते अम्मी अब्बू सो गए होंगे ना तो बच्चों को फुर्सत मिली होंगी है ना आजादी दे ना,
0: सानू तो फुर्सत लभदी सी, अम्मा अब्बा सोंदे सी, असीं तो गड्डी कढ के बर्गर खान जांदे सी, अम्मी अब्बा सो गए, अब्बा की गाड़ी निकालो बर्गर खाओ, अब्बा सो गए हैं जाके ये कर रहा हो, अब्बा सो गए हैं जाके शो मार रहा हो दोस्तों से,
1: हाँ
0: भाई आज मैं गड्डी से आया
2: है, गाड़ी भी कैसे निकालो, तक्का मार के,
0: तक्का तुक्का मार के कड्डो, दोस्तों ने शो मार ली, ले भाई आज मैं अब्बे की गड्डी लेके आया, हाँ तो इस तरह करते थे, बाहर लड़कों का और होता है,
2: हाँ,
0: लड़कियों का और होता है।
2: जो एडवांस माहौल चल रहे
0: ये तो खैर वो होना ही होना है जी, उनकी हो सकता है,
2: चल नहीं है, बाकी अल्लाह ताला बेहतर करे, अल्लाह सबको हदायत दे, अच्छा करे, सबके लिए बेहतर करे, और
0: चले बहुत अच्छा लगा आप दोनों के शो में आना मुझे, आरजे रहमान एंड आरजे अनीला, थैंक यू वेरी मच जी, मुझे आप इजाजत दें और आप दोनों कंटिन्यू कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच,
1: नहीं लेकिन मुझे तो लोग ये कहते हैं कि आप सिर्फ फंसने के लिए आते हैं यहाँ पे मैं यहाँ पे आरजे थोड़ी स्पोर्ट हूँ मैं,
0: आप नहीं, आप गलत बात,
1: सच कह रहा हूँ मैं आपको
0: यार,
1: सच कह रहा हूँ मैं,
0: किसी एक बंदे के
1: लोगों को ये लगता है, नहीं नहीं नहीं नहीं ये इंप्रेशन जाता है,
0: मैं यहाँ पे अर्ज करता जाऊँ अगर किसी को लगता है तो, रहमान क्योंकि भाई है मेरा, बातों को एंजॉय करता है, महसूस हो रहा होता है, हंस रहा होता है, उसकी बेशुमार बातों पे मैं भी हंस रहा होता हूँ, महसूस हो रहा होता हूँ जब बैठे होते हैं ना आप, एक ग्रुप बैठता है दोस्तों का तो उसमें रूल ऑटोमेटिकली डिफाइन होते हैं कि एक बंदा आ गया, अब जो है ना ये बोला बाकी सारे एंजॉय कर रहे हैं, अब वो आ गया वो बोला सारे एंजॉय कर रहे हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें सारे कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, किसमें एक कर रहा होता, सो दिस इज रोल स्विचिंग ऑटोमेटिक एक किस्म का बना होता है आपका, और इसमें रहमान है, मैं हूँ, ज़िया है, कभी ये होता है हम तीनों बैठते हैं, ये रहमान बहुत ज्यादा बोल रहा होता है, उस वक्त मैं चुप करके सुन रहा होता हूँ, सो सम टाइम हर बंदे का अपना अपना रिएक्शन सिचुएशन के अकॉर्डिंगली होता है, हर रहमान की अच्छी आदत यह है कि जब आके मैं बैठा हूँ या ज़िया बैठा है, गपशप लगा रहे, पूरा बोलने का मौका देता है, और जो हंसता है एंटरटेन करता है वो इसलिए कि आप ये ना फील करें कि आप उसका शो आके खराब कर रहे हैं, इसलिए आपकी मेहरबानी है,
1: नहीं नहीं
0: आप आते हैं
1: बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बात यह है कि सोच की ना एक सतह होती है हर इंसान की, हर इंसान का जहन सोचने का जाविया डिफरेंट होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों का अपना एक जहन है, अपना एक सोच है। बहरहाल अमीना साहब आप क्या कह रहे
0: हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं रहमान भाई हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हैं।
1: नहीं मुझे खुद को मैं नहीं अच्छा लगता था रास्ता हुआ,
0: मजा तो आपको ज़र्फ़े नज़र है।
1: नहीं सच्ची बात सच्ची बात जी अनिला साहबा क्या कहना चाह रही
2: हैं, यूं करेंगे ना आप हंसते आते हैं बकौल लोगों के, हंसाने आते हैं बकौल लोगों के।
1: हाँ
2: हेलो डॉक्टर
1: ऐसे ही
0: मुंडा नाराज हो गया जी।
1: नहीं नहीं नहीं
0: साडा मुंडा नाराज हो गया, मैं जा रहा हूं।
1: एड्डी छोटी रह गई नाराजगी एड्डी छोटी चीज दे उत्ते, नहीं नहीं नहीं ऐसी कोई गल नहीं है। ये दरअसल ना पता की गल है, बाज औकात इस तरह होंदा है कि तुसी किसी नूं लिवरेज दिंदे हो ना, गल करन दा मौका दिंदे हो, अगला बंदा कॉल ते आके उन्हूं लगदा है कि जिस तरह वो सब कुछ जानदा है, ऐसा नहीं है, ऐसी चीजें नहीं होती। अच्छा चले चले ठीक है जी, अनिला साहबा क्या कहना चाहती हैं लास्ट में।
2: मैं ये कह रही थी कि नो डाउट कि आप भी हंसते हुए अच्छे लगते हैं, अच्छा शुगर भी लग रहा होता है, अच्छा भी लग रहा होता है, लेकिन अभी जो अफसाना आपने पढ़ा ना बहुत खूबसूरत पढ़ा,
1: बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।
2: उस वक्त आप वाकई नहीं लग रहे थे कि आप ये वाले रहमान
0: है ना
1: जी, शुक्रिया थैंक यू बहुत टाइम हो गया अनिला साहबा, 2:40 हो गए,
2: नहीं बैठे अब हंसे खेलने बैठ के,
1: बहुत हंस खेल लिया
2: जो आप अफसाने के साथ म्यूजिक साथ दे रहे होते हैं ना पीछे बीजीएम चल रहा, बहुत खूबसूरत
1: बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
2: सुना सर डॉक्स आपने सुना बहुत अच्छा लग रहा होता है जब ये आगे,
0: नहीं रहमान अच्छा, रहमान
1: नहीं शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू सो मच,
0: रहमान की उर्दू, रहमान की अदायगी, रहमान की गुफ्तगू बहुत अच्छी है।
2: मैं ज्यादा चाहूंगी, थैंक यू
1: बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी कुछ मैसेजेस हैं वो मैं ऑनियर कर दूं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी आप मैसेजेस नहीं पढ़ रहे,
0: यार मुझे इजाजत नहीं पाए तुसी गुस्सा कर,
1: नहीं पाए मैं क्यों गुस्सा सोचा नहीं पाए, इस तरह की कोई गल नहीं है, कोई ऐसी ऐसा कोई मसला नहीं है। एक कॉल आ रही है, लिए और अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम
3: अस्सलाम, रहमान भाई
1: चलो जी बस कॉल हम ड्रॉप करते हैं, चलें जी अब मैसेजेस की तरफ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, मैं मोहम्मद नासिर बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद खुश आमदेद, बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच लाहौर से। अच्छा आपके मैसेज आपकी आवाज़ खींच लाई है, दम मस्त कलंदर अली अली अगर आप प्ले करें, ये मैं कोशिश करूँगा, लेकिन आखिर में जाते हुए आरजे डॉग्स का एक सॉन्ग मैंने प्ले करना, और आरजे डॉग्स आ रहे हैं, अच्छा अच्छा ठीक है। और भाईजान मुझे आज के सवाल बता दें, मौजम शादरा से लाहौर से, अब तो टाइम खत्म हो गया। अस्सलाम वालेकुम आरजे रहमान भाई, कैसे हैं आप, कमाल का सॉन्ग है ये आपका, बीजीएम मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, पीसफुल एंड आपका अंदाज भी पुरसकून ही लगता है, बहुत शुक्रिया, तभी आपकी फीलिंग स्टाइल और आपका नाइस स्टाइल है, नाइस थैंक यू वेरी मच, वेरी नाइस, खुश रहें आप, बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच।

डॉक्टर राबिया मेरे साथ हैं, यूके से मुझे सुन रही हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अफसाना आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, उसके बाद मैंने अभी कुछ देर पहले फिर दोबारा से ट्यून किया था, तो इशारा काफ़ी होता है रहमान। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया राबिया, सलामत रहें, आबाद रहें। डॉक्टर अलीना हमारे साथ हैं, थैंक यू वेरी मच अलीना, आपका मैसेज मैंने पढ़ लिया। बहरहाल थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके कंसर्न का, आपकी मोहब्बत का, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।

मलिक जुनेद डीएचक्यू हॉस्पिटल फैसलाबाद से मेरा बहुत प्यारा भाई है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। सबा मुझे गुजरांवाला से सुन रही हैं, मरीना बिलाल सुन रही हैं, अजीम जट सुन रहे हैं, सल्फिया बहुत शुक्रिया, अजर हम्बर्ट थैंक यू वेरी मच, आपकी कॉल आई बहुत अच्छा लगा। अनीस जट बहुत खूबसूरत सिंगर हैं, फैसलाबाद से ताल्लुक़ है, मुझे सुन रहे थे, बहुत शुक्रिया। वसीम अवान हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू वेरी मच। खदीजा मुराद साहिबा 101 की प्रोड्यूसर हैं, बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू वेरी मच। आतिफ अब्बासी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर जिशान मेरे साथ हैं, रहमान मज़ा नहीं आया, उसके बाद किरकिरा हो गया, कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा अक्सर। एक बार वो शेर सुना दें, डॉक्टर राबिया का मैसेज दोबारा आया, पहले ये रब्त मेरी जरूरत बनाओगे और फिर कहोगे राबता मुमकिन नहीं रहा। अच्छा जी, टाइम इजाजत लेने का आन पहुंचा, कोई बात बुरी लगी हो तिफले मकतब समझ कर, ये सोच करके अभी सीखने के अमल में हूं, दरगुजर कर दीजिएगा या फिर माफ कर दीजिएगा, बड़े लोग हैं आप। लेकिन अगर कोई एक बात किसी एक इंसान के लिए भी मशाले राह हो गई तो प्रोग्राम करने का यहां पे आने का मकसद पूरा हो जाता है, हो गया है पूरा, जाना चाहिए मुझे। मैं जमीन से एक दिन आसमां को आऊंगा, तुम पहले आसमां पे मेरा इंतजार करना, अल्लाह हामी व नासिर। ये ट्रैक असद इब्रार की फरमाइश पर उनके लिए मैं प्ले कर रहा हूँ, डॉग्स के लिए, सो इसको सुनिएगा, एंजॉय कीजिएगा। अल्लाह हामी व नासिर।